मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदानुसार 8 जून 2026, सुबह के 5:57 हुए हैं। मीडियम वेव और FM पर आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग

को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी रामपुर में आयोजित वॉकेथन 2026 का सीधा प्रसारण।

0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन रामपुर। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रसारण में। माना कि आपसे रोज़ मुलाकात नहीं होती, आमने सामने बात नहीं होती, मगर हर दिन आपको दिल से याद कर लेते हैं। आपके बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। आज मौका बहुत ख़ास है, दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हम और आप एक दूसरे के साथ हैं। आज 8 जून है और 8 जून का ही वो दिन है जब 1936 में आकाशवाणी का ये सफ़र शुरू हुआ। आज आकाशवाणी अपनी गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। इस विशेष अवसर पर हमने एक कार्यक्रमों की विशेष श्रृंखला तैयार की। कुछ विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया और आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष सुरमयी शाम के रंग बिखरे। इसी क्रम में आज आकाशवाणी रामपुर द्वारा वोकेथन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आज आप आकाशवाणी रामपुर के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं और हम तैयार हैं उन श्रोताओं को इस यात्रा से जोड़ने के लिए जो हमें इस समय रेडियो पर सुन रहे हैं। इस मौके पर हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अपर्णा सक्सेना, रेणु यादव, अपर्णा सक्सेना, आकांक्षा सक्सेना और रोहित कुकरेती। आकाशवाणी परिसर से चलकर स्टार चौराहा से होते हुए आकाशवाणी परिसर तक की पैदल यात्रा हम और आप मिलकर तय करेंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं वोकेथन 2026 में।
1: जन की वाणी, मन की वाणी, हम सभी का एक प्रयास जो आज वोकेथन के रूप में हम सब निकल पड़े हैं आकाशवाणी परिसर से। इतने सारे लोग, इतने सारे श्रोता, इतने सारे परिवारजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल है।

0: सब उत्साहित हैं, बेहद उमंग के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ललित जो कि बैनर थामे हुए हैं अपने हाथों में, और जसमिंदर जी उनका साथ दे रहे हैं, दोनों ही लोग सबसे आगे पहल करते हुए, सबको लीड करते हुए। और मैं अपने सहयोगी आकांक्षा और रोहित कुकरेति के साथ,
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को। 90 वर्षों से गूंज रही विश्वासों की वाणी है, हर दिल तक जो पहुंच सके वो अपनी आकाशवाणी है। इस गौरवमय यात्रा को शत शत नमन, शत शत प्रणाम, यूं ही गूंजे युगों युगों तक आकाशवाणी नाम। आज हम सभी इस गौरवमय यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और इस खूबसूरत पल को सामने से देख पा रहे हैं, और अपने सभी श्रोताओं को बहुत सुंदर तरह से बयां करने के लिए अब बस हमारे साथ हैं अपर्णा मैम।
0: बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए, 90 वर्षों से ये रीत निभाए, हर घर तक पैगाम पहुंचाए।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
0: आकाशवाणी से, और आज समय है कि हम आकाशवाणी के लिए कुछ करें, तो वही प्रयास हम सभी का वॉकथन के जरिए। आज हम सब निकल पड़े हैं आकाशवाणी रामपुर के परिसर से और जल्द ही पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थल तक, और फिर देखते जा रहे हैं कि आकांक्षा यहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं।
1: और हमारे साथ इस समय कमांडेंट ऑफिसर भी है हमारी, हमारे पूर्व कार्यक्रम निदेशक मंदीप मैम है हमारे साथ। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस गौरवमय पल पर।
0: बेहद खूबसूरत पल है ये हमारे जीवन के, आकाशवाणी 90 साल पूरे किए हैं और हम आपके साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है, हमारे सारे एंकर हैं, हमारे सारे लोग हैं, DIG हमारे CRPF के DIG सर हैं जो इस समय हमें लीड कर रहे हैं, हमारी इस पूरी टीम को हमारे साथ है। DIG CRPF से मुलाकात कराते हैं आपको।
4: जी हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक्स टू आकाशवाणी रामपुर, एंड इट्स रीइंफोर्सिंग द मैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिट इंडिया एंड क्लीनलीनेस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी। थैंक यू
1: सर। और मैं सभी श्रोताओं को बता दूं, इसके अलावा हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हमारे आकाशवाणी रामपुर के भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे साथ हैं सुनील सक्सेना। सर, क्या विचार हैं, क्या कहेंगे प्यारे से पल के बारे में?
5: बहुत गौरव के पल, और आकाशवाणी जो आज जून यानी कि आज के दिन अपने पूरे 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, और इस समय रोड पर एक ऐसा लग रहा है कि जैसे सैलाब सा बढ़ गया है आकाशवाणी के, इस पर बहुत अच्छा लग रहा है। आकाशवाणी हमेशा श्रोताओं के साथ रही, और आकाशवाणी ने हमेशा श्रोताओं को प्यार दिया, श्रोताओं ने हमेशा आकाशवाणी को प्यार दिया है। आज हम सभी लोग 90 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, और उस पल का इंतजार रहेगा कि जब हम सभी लोग 100 वर्ष का जश्न मनाएंगे।
1: और हम सभी श्रोताओं को बता दें कि बैनर लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित सक्सेना सर खड़े हुए हैं, क्या कहें
6: बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी से जुड़ने का अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, और जिस मनोरंजन के साधन को और ज्ञान के साधन को संयुक्त रूप से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसके साथ जुड़कर भी अच्छा लगा, और ये अनुभव और बहुत बहुत बधाई हमारे श्रोताओं को भी, क्योंकि ये श्रोताओं के बिना कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। ये सफर आज 90 साल का है, जरूर किसी न किसी दिन हम आगे भी 100 वर्ष भी मना रहे होंगे, 125 वर्ष भी मना रहे होंगे और 150 वर्ष भी मना रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को,
1: और अब इसी कार्यक्रम को आगे जोड़ते हुए मेरी सहयोगी अपर्णा सक्सेना मैम को मैं साथ लेना चाहूंगी और अगली आवाज उनकी होगी।
7: बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, और देखिए कितने उत्साह के साथ लोग हमारे साथ मिलकर चल रहे हैं, कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, और हमारे साथ सिर्फ आकाशवाणी परिवार के ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र से हर जुड़े हुए हैं। अभी आपने मनदीप मैम से बात करी है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे साथ और कौन। हमारे साथ हैं रामपुर रजा लाइब्रेरी से श्री अरुण सक्सेना जी। अरुण जी, आज आपने वॉकेथन में हमारा साथ दिया है, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
8: बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को 90 साल के सफर पूरा करने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे खुशी का एक क्षण है कि मैं साथ हूं। यस, तो हम लोग इसमें मैं इसका एक साथी बना हूं और इसलिए मैं पूरे आकाशवाणी को इसके लिए बधाई देता हूं। भारत सरकार का बहुत एक अच्छा कदम है कि सब लोग स्वस्थ रहेंगे इस तरह से वॉक हम करके। थैंक यू,
7: बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और
0: अब आकाशवाणी के लिए जय घोष, जन जन की वाणी आकाशवाणी, हमारे श्रोता जो रेडियो सेट पर इस वॉकेथन से जुड़े हुए हैं वो सुन रहे होंगे कि किस तरह से आकाशवाणी का जय घोष हो रहा है और लोग पूरे उत्साह के साथ आवाज मिला रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बड़ा ही सुंदर संगम हो रहा है आवाजों का। और सड़क पर जो भी लोग जा रहे हैं, जो राहगीर हैं, वो भी हमें देख रहे हैं,
9: सेवा की है, समाज की सेवा की है, किसान हो, विज्ञान हो, खलिहान हो, हर जगह आकाशवाणी

0: हमारा अपने सहयोगियों से फिलहाल संपर्क टूट गया है। इस समय आप सुन रहे हैं वॉकेथन 2026, जिसमें हम और आप कदम से कदम मिलाकर एक साथ चल रहे हैं आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा को मनाने के लिए, उसका उत्सव मनाने के लिए। हम ये एक प्रयास कर रहे हैं एक विरासत को सहेजने का।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सभी साथ में चल रहे हैं और इतने सुंदर मौसम में इतने सुंदर संकल्प के साथ हम चल रहे हैं। एक बहुत सुंदर संदेश हम दे रहे हैं कि हमें स्वस्थ रहना है। देखिए स्वस्थ जीवन स्वस्थ भविष्य का आधार है, तो हम सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। और इसी प्रकार जैसे आज हम उठे हैं और साथ में चल रहे हैं, तो ये तो बहुत एक सुंदर संदेश है कि हमको साथ में चलना चाहिए, सभी को समस्त लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। एक बहुत सुंदर भारत हमेशा जाना जाता है अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए, और हम देख रहे हैं आज हर कौम का व्यक्ति हमारे साथ कदम से कदम मिला के वक्फ़ोन में शरीक हो रहा है। कदम से कदम मिलाएंगे, आकाशवाणी का कौरव बढ़ाएंगे। एक बार सब साथ में बोलेंगे, मैं कहूंगा कदम से कदम मिलाएंगे, आप कहेंगे आकाशवाणी का गौरव गाएंगे। कदम से कदम मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे,
1: आकाशवाणी का गौरव गाएंगे।
0: कदम से कदम मिलाएंगे,
1: आकाशवाणी का गौरव गाएंगे।
0: देश की धड़कन, देश की शान, 90 वर्षों से आकाशवाणी महान। तो आप सभी कहेंगे 90 वर्षों से आकाशवाणी महान। देश की धड़कन, देश की शान,
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी महान।
0: देश की धड़कन, देश की शान,
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी महान।
0: देश की धड़कन, देश की शान, देश की धड़कन, देश की शान, निशान आप कहेंगे आकाशवाणी। 90 साल बेमिसाल, 90 साल बेमिसाल।
1: हम सभी श्रोताओं को एक बार बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय कार्यक्रम में फिजिकल महाविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमील सर। आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं।
2: ये आकाशवाणी का 90 साल पूरे हो गए हैं और ये हमारे हिंदुस्तान की पूरी जनता के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है। और आकाशवाणी ने पूरे भारत की जनता को बहुत कुछ दिया है, क्योंकि ये सभी विषयों पर आधारित अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, जो कि हिंदुस्तान की जो पूरी जनता के लिए बहुत ही उपयोगी हमेशा रहा है। और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि ये आकाशवाणी हिंदुस्तान की जनता को इसी तरह से लाभ पहुंचाता रहेगा।
1: और इसी के साथ मैंने अपने आप के साथ और इस माइक्रोफोन के साथ अब जोड़ रही हूँ हमारे हम सबके चाहते असीम सक्सेना सर को। सर
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोता हूँ, आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर भी लाइव सुन रहे हैं और आकाशवाणी रामपुर एक वकथन का आयोजन कर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सभी आयु सभी वर्गों के लोग हैं। फरज खान साहब हमारे साथ हैं। फरज भाई, आकाशवाणी ने जिस उद्देश्य के साथ ये वाकथन आयोजित किया है, क्या कहना है आपको, कैसा है ये प्रयास?
3: देखिए आकाशवाणी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आकाशवाणी के सितारे हैं वो आज धरती पर धरती माँ पर आ चुके हैं। तमाम ही युवा वृद्ध और बाल बालिकाएं इस संदेश के साथ कि आकाशवाणी की जो किस्मत है वो हमेशा पूरे देश के लिए रही है। और हमारी आकाशवाणी तो विदेशों में भी बहुत मशहूर है, क्योंकि जहां पर भी हिंदी भाषित है वहां आकाशवाणी है। तो आकाशवाणी की बहुत बहुत 90 साल पूरे होने पर बधाई।
1: बॉक्टन में हमने अपने कार्यक्रम प्रमुख विक्रांत सर को जोड़ रहे हैं अब सर।
4: धन्यवाद आकांक्षा जी, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, वो इसलिए क्योंकि आज आकाशवाणी अपने 90 वर्षों के प्रसारण की स्मृति में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। और आज ही के दिन 8 जून 1936 को आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम से प्रसारण शुरू किया गया। 90 वर्षों के इस इतिहास में अलग अलग केंद्रों पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी क्रम में हमने आज एक वॉकेथन का आयोजन किया है। हम ऑफिस से निकले हुए हैं और अच्छी संख्या में हमारे स्टाफ के लोग, हम इस समय लगभग अपने स्टार चौराहे के पास पहुंच गए हैं और कोशिश करेंगे कि अब

0: हम मुड़े या थोड़ी देर का विश्राम लें, जलपान का कुछ इंतजाम करें। जी आकांक्षा
1: जी, धन्यवाद सर कार्यक्रम से अब जुड़ने के लिए और इस वॉकथन में हमारा हिस्सा बनने के लिए। और अब मैं आपके साथ जोड़ रही हूँ अवधेश सर को। सर
2: थैंक यू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आकाशवाणी के 90 स्वर्णिम वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में एक वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इसी वॉकथॉन स्थल से, उसी वॉकथॉन यात्रा से हम आपके साथ जुड़े हैं और ये प्रमाण है आप सब लोगों के साथ का कि जिसकी वजह से आज आकाशवाणी इस स्वर्णिम पड़ाव तक पहुंचा है। आप सबका साथ का, आप सबकी कामनाओं का, आप सबके सपोर्ट का आज इस उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ के लिए बहुत बहुत आभार। और कामना यही रहेगी कि ये साथ जो आप सब लोगों का है, जो प्यार, जो स्नेह जो आपने आकाशवाणी को दिया है, ये आगे भी बना रहेगा। और आज जैसे हम 90 वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो आयोजन कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम 100 वर्षों का भी इसी प्रकार आयोजन होगा और सेलिब्रेशन करेंगे आप सब लोगों के साथ। शुभकामनाओं के साथ मैं अवधेश।
1: और अब मैं अपनी अगली आवाज के साथ जोड़ूंगी रोहित सर को।
3: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत है इस खूबसूरत सी सुबह में आकाशवाणी के द्वारा आयोजित इस वॉकथॉन में। और बहुत से लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं जो आकाशवाणी परिवार से, आकाशवाणी की तरफ से आयोजित जितने भी कार्यक्रम होते हैं जो बच्चों या महिलाओं के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट है सभी का, वो हमसे जुड़े हैं। और मैं भाव लेना चाहूंगा, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। मैं डॉक्टर शहनाज रहमान जी हमारे साथ हैं। मैम कैसा लग रहा है आज की वॉकथॉन में?
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष पूर्ण होने पर। मैं हमेशा से आकाशवाणी की बिल्कुल फैन रही हूँ और आज मैं यही नारा दूंगी, आकाशवाणी जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।
3: धन्यवाद शहनाज मैम। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इसी प्रकार आकाशवाणी से आप सभी का प्यार, आपका स्नेह बराबर आकाशवाणी को मिलता रहे, आप इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। मैं इस बच्चे से बात करूंगा और मैं सुनवाऊंगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है। बेटा आप सुबह सुबह आज आए हैं, वॉकथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
5: अंकल अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज भी हो गई।
3: क्या नाम है आपका?
5: सात्विक शर्मा।
3: आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं?
5: माउंट लिटराज स्कूल।
3: क्या आप आकाशवाणी के प्रोग्राम को सुनते हैं?
5: जी मैं एक दो बार आया भी हूँ।
3: आप एक दो बार आए भी हैं, चलिए बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी प्रकार से जैसे आप आते हैं, आते रहें आकाशवाणी में। ठीक है, थैंक यू। और हमारी वॉकथॉन स्टार चौराहे से एक बार फिर आकाशवाणी की तरफ चल दिए हैं हम। और मैं देख रहा हूँ कि उत्साह है लोगों में, बहुत उत्साह है यहाँ महिलाओं में, यहाँ के जितने भी कलाकार हैं। आकाशवाणी परिवार से एक और आवाज एमन, मैं जाना चाहता हूँ एमन कैसा लग रहा है आज?
6: बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बिल्कुल अलग सा एहसास हो रहा है और लग रहा है कि मतलब आकाशवाणी ने 90 साल पूरे किए हैं, तो 90 साल पूरे करना अपने आप में हमारे लिए प्राउड की बात है, फख्र की बात है। और हमारे लिए ये भी फख्र की बात है कि हम इस प्यारी संस्था से जुड़े हुए हैं और आज हमें ये मौका मिला है कि हम इसके इस वॉकथॉन में शामिल हो रहे हैं। और सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये सिलसिला चलता रहे और ये खूब लंबा सफर जारी रहे।
3: बहुत खूब, आपने सुना अमन को। और सब यही चाहते हैं, आकाशवाणी परिवार यही चाहता है कि आप सभी जिस प्रकार से अपना प्यार आकाशवाणी को देते आए हैं, इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहें कार्यक्रमों के माध्यम से, आपके पत्रों के माध्यम से। और उम्मीद करते हैं आकाशवाणी की ये पहल आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत सारे और लोग हैं, मैं चाहूंगा हमारे साथ कृषि जगत से बहुत सारे लोग हैं। और आइए अगली आवाज, भैया अपना नाम बताएं पहले।
7: मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं कृषि जगत कार्यक्रम पेश करता हूँ और

0: मैं अपने सभी सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि हमारे आकाशवाणी ने 90 साल जो पूरे हो रहे हैं उसमें किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। खेती में जो हमने प्रोग्रेस की है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने हम लोगों को सुझाया है, वो सारे अनुसंधान हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, इसमें आकाशवाणी रामपुर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और हम नई नई तकनीकी जो भी आती हैं वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को बताते रहते हैं। साथ ही साथ हम जो कृषि हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे बातचीत करके हम अपने किसान भाइयों को बताते रहते हैं। जैसे कि अब इस बार हमारी सरकार ने मिट्टी बचाओ अभियान शुरू किया है जो पूरे देश में चल रहा है, उससे संबंधित भी हम किसान भाइयों को अपने कार्यक्रम में समय समय पर जानकारी दे ही रहे हैं। और आज का जो हम बात करें तो आज हमारा देश जो आकाशवाणी का हमारे 90 साल पूरे हुए हैं उसको हम बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम अपने किसान भाइयों से भी यही चाहते हैं कि वो भी खेतीबाड़ी के जो भी हमारे काम है उनको सहयोग करें और काम में आगे बढ़ें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा काफिला आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ी उत्साह और उमंग के साथ लोग इस काफिले से जुड़े हुए हैं और कदम से कदम मिलाकर गीत गाते हुए आकाशवाणी के गौरव के निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फरीद भाई भी दिख रहे हैं, गुंजन भी दिख रही हैं, विक्रांत सर बहुत तन्मयता के साथ लगे हुए हैं। सर कैसा लग रहा है यह प्रयास आपका?
2: थैंक यू मैम। पहले तो मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा एक बार पुनः, और आपके सपोर्ट से ये आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है।
3: थैंक यू।
1: एक 2 साल की बच्ची भी वॉकथन का हिस्सा बनी है, सिया। हेलो बोले सिया।
4: हेलो
5: हेलो।
1: बहुत अच्छा लग रहा है कि मम्मी की गोदी में भले ही है लेकिन वॉकथन का हिस्सा तो जरूर बनी है। और अब आप सभी सुन रहे होंगे कि आकाशवाणी का गौरव गान हो रहा है, जय घोष हो रहा है। हमारे साथ सीआरपीएफ से भी काफी लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ समय के बाद हम सीआरपीएफ से आई हमारी एक मेहमान उनसे भी आपसे मुलाकात करवाएंगे।
6: आकाशवाणी जिंदाबाद,
1: आकाशवाणी जिंदाबाद,
6: आकाशवाणी
1: जिंदाबाद। और अब बात करते हैं सीआरपीएफ से आई हमारी इन मेहमान से। मैम आपका परिचय?
7: मैं देवगन हूँ, डिप्टी कमांडेंट ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज के आपके ये वॉकथन आयोजित किया है। मैं बहुत खुश हूँ इस आयोजन के उससे। 90 वर्ष जो आपके आकाशवाणी के बेमिसाल है, सदैव आकाशवाणी निरंतर प्रगति करता रहे और देश का गौरव बढ़ाता रहे। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। हमारा साथ जो आपके आज कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं हमारे लिए निश्चय ही प्रेरणादायक है और हमारे उत्साह को दोगुना करती है। आपकी जो ये शक्ति है, आपकी जो ये, और अब हमारे साथ बहुत सारे हमारे आकाशवाणी परिवार के लोग भी चल रहे हैं और साथ ही सबसे आगे मुजफ्फर भाई चल रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए चल रहे हैं कि किस तरह से वॉकथन को कामयाब बनाना है, किस तरह से हमें अनुशासन का पालन करना है। तो मुजफ्फर भाई
8: बहुत मुबारकबाद हमारे 90 साल पूरे होने पर। हमने ये एक आयोजन किया है, जब कदम मिलते हैं तो कारवा बनता है, जब लोग जागते हैं तो नया जहां बनता है। वॉकथन सिर्फ चलना नहीं, आज कुछ ऐसा कर जाएं, हर दिल में उम्मीद जगा जाएं, एक कदम अपने लिए, एक कदम समाज के लिए। अपर्णा प्लीज।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामपुर की हमारी साथी है, अपना परिचय दीजिए।
9: मेरा नाम मनु मिश्रा है और आज मुझे इस मैराथन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत अच्छा लग रहा है।

0: मैं चाहती हूँ कि आकाशवाणी ऐसे ही अपना कार्य आगे करती रहे। बहुत अच्छा इन्होंने अपना जो योगदान है, जो कार्यक्रम है, वो बहुत अच्छा इन्होंने किया है, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, ये ऐसे ही भविष्य में अपना कार्य करते रहे। थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका साथ ही हमारी प्रेरणा का हमेशा से स्रोत रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे सभी श्रोता इसी तरह से आकाशवाणी को यूं ही प्यार करते रहेंगे, सराहते रहेंगे। और अब हम पहुंच चुके हैं मुर्तजा कॉलेज के पास, और हमारा ये कारवां चलता जा रहा है, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। लोग हंसते मुस्कुराते आपस में बातचीत करते हुए वॉकथन में भाग ले रहे हैं। इस उत्साह को देखकर यकीनन बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है कि आकाशवाणी का 90 सालों का ये सफर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सफल है। और अब हमारे साथ एक मैम, आपका परिचय।
2: हाँ, मैं सुषमा कुमारन से चंद्र कौर हूँ, मैं यूसी सीआरपीएफ रामपुर से हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सभी को आकाशवाणी की 90 वर्षों की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और ये अच्छा प्रोग्राम किया है, इनिशिएटिव किया है, बड़ा अच्छा लग रहा है आके। हम सारे जितने भी आए यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ आए, हमारे वॉकथन का हिस्सा बने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आकांक्षा कुछ कहना चाह रही है।
3: जी, मैं अपर्णा मैम ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत देर से, जब से हमारी वॉकथन शुरू हुई है, तब से एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी का जो काम है वो निभाया है ललित सर ने, और साथ में हमारे कृषि जगत के भाई जसमेंद्र सर ने। तो जसमेंद्र सर, आप इतना खूबसूरत बैनर के साथ आज वॉकथन का आयोजन जो हुआ है हमारे यहाँ, क्या कहना चाहें?
4: मैम, यहाँ जो वॉकथन आज 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, बहुत ही गौरवमयी पल है, और मुझे बहुत ही एक गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे इतने जो बैनर पकड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आकाशवाणी का साथ हमारे साथ बना रहे, और बहुत बहुत धन्यवाद टीम का।
3: और हमारे साथ कार्यक्रम के और भी लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे उर्दू कार्यक्रम के जो सभी कार्यकर्ता हैं, आइए जानते हैं उनसे।
5: सबसे है प्यारा आकाशवाणी हमारा, यह समय हमारे आकाशवाणी की शान, जो आज हम 90 वर्ष के रूप में मना रहे हैं, यानी ये 90 साल आज पूरे हो रहे हैं, और हम इसको, इस पल को जी रहे हैं और खूबसूरत के साथ मना रहे हैं। हमारे सभी लोगों के साथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस पल को हम सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
1: बहुत ही गौरव का क्षण है हमारे और आपके लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके सीआरपीएफ के हमारे जो भी साथी हैं वो बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वॉकथन के आगे चलते हुए सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हैं, और निरंतर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं हंसते मुस्कुराते हुए। और अपनी, और अब बात करते हैं उन्हीं में से एक जवान से, जो निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं और अपने कार्य को पूरी तरह से निभा रहे हैं।
3: सर, अपनी पूरी,
6: सर है, सर बताइए,
3: आप बोलिए,
6: सर बताइए, सर
1: कोई नहीं, चलिए आपका, हमारे साथ आप लगातार बने हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं सर, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना है?
7: आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं, जो इनकी पहल है आकाशवाणी की, बहुत ही सुंदर पहल है, और अपेक्षा करते हैं कि इसी से जो है आगे भी जो है मनाते रहें। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब बड़ी देर से नवेदिया हमारे साथ चल रही है, कुछ कहना चाहती है पूरे होने पर? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के इस नारे के साथ आकाशवाणी 90 वर्ष से यूं ही आप लोगों को देश दुनिया की सभी सूचनाएं देता आया है, मनोरंजन कराता आया है, और ये आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।
8: बहुत बहुत शुक्रिया। और अब
1: की कारवा में हमारे साथ बड़े उत्साह के साथ चल रही है वंदना भटनागर। वंदना जी कैसा लग रहा है?
8: हम बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी के इस वॉकेशन में, बहुत मजा आ रहा है। सुबह सब सुबह ऐसी मॉर्निंग में उठे और ऐसे ही चले, बहुत अच्छा लगता है।
1: और साथ ही आकाशवाणी के जो ये 90 सालों का सफर है उसका जश्न भी मनाते रहे।
8: हाँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: और अब
1: कुछ बात करते हैं अलका जी, कैसा लग रहा है अलका जी?
9: बहुत मजा आ रहा है, सुबह उठने का मौका मिला वरना सब आराम से उठते हैं, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा रहा।
1: और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप भी आकाशवाणी के इस जश्न में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
10: रोहित, जैसा कि सभी श्रोता इतनी देर से सुन रहे हैं, सभी के भाव जितने भी लोग वॉकथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सुंदर पल है। आकाशवाणी का पूरा परिवार, वो सभी लोग जो तमाम रामपुर के आसपास और जितने भी लोग हमें सुनते हैं, वो सभी इस वॉकथॉन में आज जो आयोजित की गई है आकाशवाणी रामपुर के द्वारा, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं आकाशवाणी की अनाउंसर सुरेंद्र कौर। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं आज की वॉकथॉन को लेकर। सुरेंद्र जी
11: जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, और बड़े ही गर्व और हर्ष का विषय है कि हम सब एक साथ कदम मिलाकर आकाशवाणी परिसर की ओर बढ़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और आकाशवाणी रामपुर को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं ये 90 वर्षों की, और हम चाहते हैं कि ये 90 वर्षों का जो सफर है आकाशवाणी का और श्रोताओं का 900 साल तक चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और बड़े ही गर्व और हर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और श्रोताओं से हम ये आशा करते हैं कि ये आकाशवाणी की मधुर गूंज यूं ही गूंजती रहे। शुक्रिया।
10: थैंक यू सुरेंद्र जी। हमारे साथ हैं अखिलेश जी, आइए जानते हैं अखिलेश जी के क्या विचार हैं।
12: श्रोताओं नमस्कार, और मैं अखिलेश सक्सेना आप सभी से मुखातिब हूँ। और इस वॉकथॉन में बहुत ही आनंद आ रहा है, और ये आकाशवाणी के 90 वर्षों का एक खुशी है हमारे सभी साथियों के लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप सबके साथ 2002 से आकाशवाणी जुड़ा हुआ हूँ, और एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत श्रोताओं से आत्मीय संबंध बने हैं, और ये संबंध ऐसे ही बने रहें, इसी उम्मीद के साथ आपके सबके साथ जुड़े रहेंगे। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाइयां।
10: धन्यवाद अखिलेश जी। हमारे साथ बहुत से लोग हैं आकाशवाणी से जो एक अरसे से जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं यहाँ पे और उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे अनाउंसर्स हैं, बहुत सारे वाणी के भी कलाकार हैं। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं आज की वॉकथॉन को लेकर। तरुणा हमारे साथ हैं। तरुणा कैसे हो आप, और आज की वॉकथॉन को लेकर क्या विचार हैं आपके?
13: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, और वॉकथॉन में हिस्सा लेकर मैं और भी अच्छी हो गई हूँ। सुबह का जो माहौल है उसको एक्सपीरियंस करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, और शायद अब इसी चीज़ से मुझे ये मोटिवेशन मिली है कि मैं रोज आगे ऐसे ही सुबह जल्दी उठकर और वॉक पर जाया करूँगी।
10: तो जितने भी लोग इस वॉकथॉन में जिन्होंने हिस्सा लिया है, सभी का विचार है, सभी के मन में मैं देख रहा हूँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और एक अलग सी ऊर्जा सब नजर आ रही है, और वो सभी चाहते हैं कि इसी प्रकार से वॉकथॉन का आयोजन प्रतिदिन हो और हम सभी एक साथ इसी प्रकार से पूरा परिवार आकाशवाणी का मिलता रहे और साथ में हमें संदेश दें उन सभी लोगों को जो हमसे जुड़े हैं रेडियो के माध्यम से, कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, हमारे अपने लिए। चूंकि हम स्वस्थ हैं तो हम अपने अपनों का ख्याल रख सकते हैं। हमारे साथ एक और अनाउंसर है, और मैं चाहूंगा कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आज की वॉकथॉन में उनका क्या अनुभव है।
14: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को अनुराग सिंह राजपूत का अनुराग भाई नमस्कार। श्रोताओं जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज हम 90 वर्षों का ये बहुत ही सुख

0: नए समय मना रहे हैं, आकाशवाणी रामपुर ने पूरे 90 वर्ष किए हैं, तो आप सभी को भी शुभकामनाएं और आकाशवाणी के सभी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस 90 वर्षों के पूरे होने की। और इस वॉकथॉन के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग अच्छे से अपने जीवन शैली को जिए और भाईचारा निभाते रहें और अपने देश को एक जोड़ में बांध कर रखें। तो यही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार,
1: धन्यवाद। और अगली आवाज हम जाना चाहेंगे, अंकुर जी हमारे साथ हैं कि आज की वॉकथॉन में कैसा लग रहा है अंकुर भैया?
2: बहुत बढ़िया लग रहा है और आकाशवाणी ने इतना सब कुछ हमको दिया है और आज की जो वॉकथॉन है ये आकाशवाणी की बहुत अनूठी पहल है और सबसे बड़ी पहल है और हम इसमें बहुत मजा भी ले रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं और स्वस्थ जीवन का एक संदेश जो आकाशवाणी ने दिया है वो भी फैला रहे हैं।
1: आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत से लोग मुझे नजर आ रहे हैं, पीछे तक जहां तक मेरी निगाह जा रही है बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं जो इस वॉकथॉन में मैं देख रहा था कुछ देर पहले, जो था उत्साह वर्धन कर रहे थे, सभी वॉकर्स जितने भी लोग चल रहे हैं उनके लिए तालियां बजा रहे थे और उन्हीं में से किसी एक बच्चे से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका?
3: संजना।
1: क्या करते बच्चे?
3: हॉकी खेलते हैं।
1: बहुत अच्छा, आज इस वॉकथॉन में आपने पार्टिसिपेट किया, कैसा लग रहा है?
3: अच्छा लग रहा है।
1: अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं?
3: रोज 3-4 राउंड लगाते हैं।
1: बहुत अच्छा, क्या एक्सरसाइजेस भी करते हैं?
3: जी।
1: बहुत सुंदर, तो इसी प्रकार से एक्सरसाइज करते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें, है ना। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी कार्यक्रम कल्याण सुनते होंगे जो हर रविवार हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाता है और जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जॉनर के अलग अलग कलाकार आज हमारे साथ चल रहे हैं, आम जनता भी हमारे साथ चल रही है और मैं चाहूंगा जानना और लोगों के व्यूज, क्या नाम है सर आपके?
0: अंकुर राजपूत।
1: अंकुर जी कैसा लग रहा है आज की वॉकथॉन में पार्टिसिपेट करके?
0: बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये जो आकाशवाणी के बेमिसाल 90 साल पूरे हुए हैं आज 8 जून को और इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर जो आकाशवाणी का 600 से 700 लोगों की जो भीड़ गौरव बढ़ा रही है, बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया है उसको आज 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो बहुत ही एक क्या कहें कि आनंद की अनुभूति हो रही है और सबको इस तरह से साथ देखकर, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो शहर के लोग हों, सभी आज कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं।
1: बहुत सुंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वॉकथॉन को हमने शुरू किया था आकाशवाणी परिसर से और हम वॉकथॉन को अब समापन की ओर लेकर जा रहे हैं। हम आकाशवाणी रामपुर से स्टार चौराहे तक गए, वहां से लौटकर हम आए और हम अब गांधी समाधि के पास एकत्रित हुए हैं। मैं कार्यक्रम अधिशासी श्री विक्रांत चौधरी जी को माइक सौंपता हूं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं अभी तक की वॉकथॉन जो रही और आगे हम और क्या क्या आकाशवाणी इस प्रकार के संदेश देता रहेगा, आगे इस प्रकार की वॉकथॉन आगे भी होती रहेंगी, आइए जानते हैं उनसे।
4: धन्यवाद रोहित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार कवरेज आप और आपकी टीम पहुंचा रही है हमारे श्रोताओं तक और जिस प्रकार से हमने अनुमान लगाया था हमारा कार्यक्रम होगा लगभग उसी उसमें कार्यक्रम हम कर रहे हैं। कंक्लूडिंग की तरफ अब है, ऐतिहासिक स्थल महात्मा गांधी के निकट हम पहुंच गए हैं, अपने साथियों से हमने थोड़ा सा विश्राम करने को कहा है, इसके बाद हम वापस अपने कार्यालय पहुंचेंगे और सीआरपीएफ की टीम, पुलिस की टीम, मेडिकल से एम्बुलेंस की टीम हमारे साथ है, लगातार सबका बहुत बहुत सहयोग हमारे बीच में रहा है। माननीय डीएम महोदय, माननीय एसपी महोदय, सभी का बहुत बहुत सपोर्ट यहाँ रहा है, पुलिस का सपोर्ट रहा है लगातार और आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव है वो ये कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है, एक और जहाँ बहुत बड़ा एग्जाम भी है, इसी बीच प्रशासन के लोग लगातार हमारे बीच में रहे, हमारी सपोर्ट के लिए, हमारी सहायता के लिए रहे और शांतिपूर्वक पूरे जोश के साथ हमने नारे लगाते हुए लगभग अब हम कंक्लूजन की तरफ है तो रोहित जी एक बार

0: मैंने आपको माइक्रोफोन सौंपूंगा जी।
1: धन्यवाद विक्रांत जी। और आकाशवाणी आप सभी जानते हैं अपने गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव मना रहा है, और कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम आकाशवाणी की तरफ से रंगोली मंडप में आयोजित किया गया था हमारे 90 वर्षों के कंप्लीशन के लिए। और इसी प्रकार से हम उत्साह मनाते रहे, और हमारे सारे जितने भी श्रोता हैं इस समय हमसे जुड़े हैं या आकाशवाणी से वो जुड़े रहते हैं, हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें यही आकांक्षा रखते हैं। और इस माहौल को जो मैं देख पा रहा हूँ गांधी समाधि के बाद, इसको देख के जैसे लगता है कि ये कभी खत्म ना हो। इतना सुंदर माहौल है, इतने सारे लोग हैं जो हमें आज दिख रहा है आकाशवाणी के साथ कदम से कदम मिला के उस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं जो आकाशवाणी पूरे देश के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। और आकाशवाणी 2026 वॉकथॉन का समापन लगभग होने को है। गांधी समाधि में हम थोड़े समय के लिए रुके हैं, यहाँ पे सभी विश्राम कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं, हमारे साथ रिजवान हैं जो कि एक अनाउंसर हैं आकाशवाणी के, उनके विचारों को जानते हैं। रिजवान, कैसा लग रहा है इस वॉकथॉन में?
2: जी, आज वॉकथॉन में आके काफी बेहतरीन महसूस हो रहा है, क्योंकि ताजी सुबह और आप लोगों का साथ और श्रोताओं का प्यार काफी अच्छा महसूस होता है, और काफी गर्व भी महसूस होता है कि हम आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और आकाशवाणी को 90 साल आज पूरे हो चुके हैं, और काफी प्रोग्राम को लेकर भी और लोगों को लेकर भी काफी हमें अच्छा महसूस होता है।
1: चलिए, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से इस खूबसूरत अनुभव के साथ हम रहें सीआरपीएफ से, सीआरपीएफ परिवार से हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। एक बार फिर मैं चाहूंगा सीआरपीएफ से एक और हमारे श्रोता हैं और जो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, सर आपका शुभ नाम?
3: अवधेश पांडे, मैं स्टेंट कमांडेंट।
1: आज सर कैसा लग रहा है आकाशवाणी के इस वॉकथॉन में, इस उत्सव में शरीक होके? आपको
3: काफी अच्छा लग रहा है, और ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आकाशवाणी के साथ हम भी उनका जो 90 वर्षों का अभी तक का सफर रहा है उसका एक पार्ट है। और आप लोगों ने सोसाइटी में भी आकाशवाणी बहुत बड़ा रोल रहा है कि जो भी हमारी विश्व में चल रही गतिविधियां उनको लोगों के घर तक पहुंचाना, उस समय जब लोग उतने आर्थिक रूप से उतने स्ट्रांग नहीं थे कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, लेकिन हर किसी के गांव में जाके एक रेडियो होता था, सब लोग उस तरह के सुनते थे। तो एजुकेशन पहुंचाने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और बहुत अच्छा इसको बोल सकते हैं इनिशिएटिव है। और हम जब नेक्स्ट ईयर या उसके 10 साल बाद जब आपके 100 ईयर्स आकाशवाणी के होंगे, तो हम चाहेंगे हम दोबारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ फिर से कदम मिला के फिर से वक्त इनमें शरीक होंगे। और थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइज सच ए ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।
1: हम भी चाहेंगे सर, हमारा मन से ये भाव रहता है कि आकाशवाणी इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, और हम सभी आकाशवाणी के साथ आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऐसा लगता है कि सीखना बाकी है, जो आने वाले कुछ वर्षों में हम सीखेंगे और साथ मिलकर सीखेंगे। सीआरपीएफ परिवार से एक और पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका शुभ नाम?
4: माइसेल्फ अनुपम कुशवाहा।
1: अनुपम सर, कैसा लग रहा है आज इस खूबसूरत सुबह में जो आप आकाशवाणी वॉकथॉन में आपने हिस्सा लिया, कैसा अनुभव है आपका?
4: बेसिकली I was not aware about this anniversary because we are in 90th anniversary of All India Radio Akashvani Rampur. मैंने जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये ऐतिहासिक क्षण में हम लोग आपके साथ पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही गर्व की बात है। और मैं जहाँ तक याद कर पाता हूँ, मैं जब अपनी पढ़ाई करता था तो मेरे पास में मेरा एक फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, तो मैं कुछ ना कुछ आकाशवाणी पे सुनता रहता था, और वो मेरी पुरानी यादें कहीं ना कहीं आज ताजा हो गई। और मैं अपने साथी अवधेश से भी बात कर रहा था, तो ही वाज जस्ट शेयर्ड हिज व्यूज अबाउट आकाशवाणी समवेयर इन अल्मोड़ा बेसिकली। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ इसमें पार्टिसिपेट कर पाया, और सीआरपीएफ के हमारे पूरे साथी हर्षोल्लास के साथ आपके साथ पार्टिसिपेट किए। थैंक यू, एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट AIR रामपुर। थैंक यू सो मच
1: सर। जब आकाशवाणी की बात होती है, और मैं खुद अगर व्यक्तिगत तौर पे अपने बचपन की यादें अगर मैं याद करता हूँ उन सभी यादों को, तो मुझे याद आता है कि सुबह का समय होता था, हमारे माता पिता जो थे वो रेडियो ऑन करते थे, और एक आवाज आती थी, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। और इतनी

0: जानते हैं उनके व्यूज। सर आपका शुभनाम।
1: धन्यवाद रोहित जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल हम इस समय मना रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने एक वॉकेथॉन का आयोजन किया जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो पुराने लोग भी थे वो लोग भी आए, अपने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं आकाशवाणी के साथ, और लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया है आकाशवाणी के वॉकेथॉन के। सर धन्यवाद।
0: आप सुन रहे थे शेखर जी को, और अब अगली आवाज हमारे आकाशवाणी में जो गार्ड्स हैं वो भी इस वॉकेथॉन का हिस्सा हुए हैं, उन्हीं में से एक गार्ड हमारे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका?
2: रिंकू राजपूत।
0: रिंकू राजपूत, आज इस वॉकेथॉन में आपने भी हिस्सा लिया है, कैसा लग रहा है?
2: बहुत अच्छा लग रहा है सर।
0: और आज आकाशवाणी में जितने लोग आपको सुन रहे हैं रिंकू राजपूत, क्या कहना चाहेंगे सबसे?
2: बहुत क्या कहना चाहेंगे सर, हमें शुक्र
0: अच्छा आपको आपको अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बस ठीक है, ये जो अच्छा एहसास है, जो हमें अच्छा लग रहा है, ये इस कारण से है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साथ में चल रहे थे, और जैसा मैंने बताया इस वॉकथॉन का जो उद्देश्य है, जो मैसेज है, जो संदेश है, वो ये है कि हम सभी इसी प्रकार से जैसे आज निकले हैं, सभी को जितने हमारे श्रोता हमें सुन पा रहे हैं या हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, अपने घरों से निकला करें सुबह सुबह और वॉक किया करें, क्योंकि वॉक करना एक बहुत अच्छी आदत है और जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और स्वस्थ है कहते हैं ना हमारे उज्जवल भविष्य की जो नींव है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, और ईश्वर से कामना करते हुए कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, और आप सभी इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें आकाशवाणी से। हमारे कृषि जगत के बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, और आइए सुनते हैं कृषि जगत के एक ऐसी आवाज से जिससे आप रूबरू हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। भैया नाम बताएं अपना और बताएं कि वॉकथॉन में कैसा लग रहा है आज?
3: भैया मेरा नाम पंकज सक्सेना है और मैं कृषि जगत में हूँ, और बहुत अच्छा लगा आज। मतलब जो मेरे तो ज्वाइनिंग के बाद जो है पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी भीड़ है, और इसका हिस्सा मैं बना हूँ, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
0: बहुत सुंदर, ऐसे एक और आवाज हमारे साथ है जो कि कृषि जगत से। भैया अपना नाम बताएं और बताएं कि इस सुंदर सी सुबह में कैसा लग रहा है आपको इस वॉकथॉन का हिस्सा बनकर?
4: जी मेरा नाम दीपक कुमार, और मुझे वॉकथॉन की इस सुबह की वेला में बहुत अच्छा लग रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं, और मुझे लग रहा है जो युवा लोग हैं वो जो है इसके साथ जुड़े और सुबह में जो है टहलने अवश्य आए, ये मेरी अपनी ओर से अपील जी। और ऐसा है कि पहले के समय में आदमी के पास समय था, लेकिन समय निकालकर अपना ये एक घंटे का समय टहलने के लिए अवश्य दें, मेरी यही लोगों से बिल्कुल अपील है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बना रहे हैं 90 वर्षों के कंप्लीट होने का ये जो उत्सव है मना रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम एक और आवाज से आपको रूबरू कराते हैं जिससे आप वाकिफ होंगे, यू वाणी में आप अक्सर सुनते होंगे, और आइए जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है।
5: मेरा नाम मेघा ठाकुर है और मैं युववाणी की प्रेजेंटर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ वॉकथॉन में आके, और आज का ये दिन है और भी अच्छा हो गया, हमें आज सब साथ मिलके हमने आज वॉकथॉन करा है, बहुत अच्छा लगा सर मुझे।
0: आपके जैसे तमाम जो युवा हैं जो इस समय हम लोगों को लाइव सुन रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: कि यही कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी हमें जागरूक होना चाहिए, और आज हमने ये वॉकथॉन का जो आयोजन किया है वो इसी के लिए है कि हम लोगों को जागरूक करें और खुद भी अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो, सुबह को उठें, योगा आसन करें, क्योंकि अब थोड़े ही दिनों बाद योगा डे भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले हम रोज योगा आसन करें, अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहें।
0: बहुत सुंदर बात कही है। देखिए योग प्राणायाम एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं अर्ली मॉर्निंग, वो किसी ना किसी तरीके से हमको शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर मजबूत बनाने का काम करती है, और मुझे लगता है इस दौर में जहां हम सब इतनी व्यस्तताओं में घिरे हुए हैं, जब हमें काम भी करने हैं, परिवार की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, हमारे वर्क प्लेस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी ना कभी परेशान करती हैं, तो मानसिक तौर से हम लोगों को स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, और इस चीज के लिए जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें। इसी प्रकार से जैसे आज निकले हैं अपने घरों से, उसी प्रकार से हम हर दिन निकला करें, लंबी गहरी सांसें लिया करें इस खुले वातावरण में, क्योंकि ईश्वर खुदा या जिस भी नाम से उसे आप उस ताकत को पुकारते हैं, उसके द्वारा ये एक बहुत अनुपम भेंट है जो हवा है जो हमें मिली है।

0: पानी है जो हमें मिली है, अगर हम इसका सही से इनटेक करें और सही समय पर करें तो मुझे लगता है हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका?
1: सुखदेव मिश्रा।
0: सुखदेव मिश्रा जी कैसा लग रहा है स्वागत ऑन का हिस्सा बनके?
1: ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हमें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इसके द्वारा आयोजित जो वॉकेथॉन है उसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और न केवल यह जो है लोगों को फिट रखने में मदद करेगा बल्कि इससे आकाशवाणी के प्रति लोगों में और भी उत्साह पैदा होगा।
0: तो क्या करते हैं बताएं आप?
1: जी मैं, हम एक एजुकेशनल ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें हम बच्चों को फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं। हम 2015 से काम कर रहे हैं और अब तक 10,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा चुके हैं।
0: बहुत सुंदर, आकाशवाणी की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयां आपके इस पहल के लिए जो आप कर रहे हैं, और इसी प्रकार से आकाशवाणी से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
0: हमारे साथ एक और खूबसूरत सी आवाज जिसे आप जानते हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की वॉकथॉन में उन्हें कैसा लग रहा है।
2: आज की वॉकथॉन एक सफल कार्यक्रम है आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष, आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश हमें आकाशवाणी देता है वो घर घर तक पहुंचता है। और जिस तरह से सारे कार्यक्रम स्वास्थ्य से जानकारी से भरपूर होते हैं, इसी तरह आज की वॉकथॉन भी स्वास्थ्य फिटनेस सहयोग से सहयोग का हमें संदेश देती है।
0: बहुत सुंदर। अगली आवाज आकांक्षा की, जिन्हें आप जानते हैं सुबह से सुन रहे हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित सर, आपने सभी श्रोताओं के साथ मुझे एक बार फिर से जोड़ा है। और श्रोताओं को हम बता दें कि हम ये 90 वर्षों का सफर आज पूरा कर रहे हैं और अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रामपुर बस पहुंचने ही वाले हैं। और इस सफल वॉकथॉन का हम सभी श्रोताओं को और हमारे जितने भी जुड़े हुए साथी थे उन सभी को धन्यवाद कहेंगे। और अब हम सिर्फ आकाशवाणी रामपुर पहुंचने ही वाले हैं गांधी समाधि परिसर से। सर हम सबसे पीछे हैं, बताइए इस वॉकथॉन से अब ये सफल होने वाली है, बिल्कुल हम एक फिनिशर पॉइंट पे चले गए हैं, बताइए।
0: इतना सुंदर आयोजन रहा आकांक्षा, मतलब मन प्रफुल्लित हो गया, जो जो सोचा था उससे भी ज्यादा सुंदर देखने को मिला। जितने भी आकाशवाणी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं इतनी तादाद में जो यहाँ पर पहुंचे और सबने बहुत सुंदरता से, मतलब एक शांति व्यवस्था बनाते हुए एक प्रॉपर वे में वॉक किया। और अब हम समापन की ओर हैं, बहुत सुंदर लग रहा है।
3: ये समापन थोड़ा सा इसलिए भी जल्दी हो रहा है श्रोताओं क्योंकि आज जो है वो पुलिस भर्ती का एक पेपर है और जिसके कारण हम सिर्फ चार चौराहे से ही वापस आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये इतना सफल रहा है जिसमें हम सभी का कार्यक्रम प्रमुख हमारे विकांत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आज हम इस सफल वॉकथॉन को पूर्ण कर पाए हैं।
0: बिल्कुल सही आकांक्षा, तमाम लोगों का जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं उनका दिल से धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। वो चाहे युवा कार्यक्रमों से जुड़े हुए लोग हों, हमारी युवाणी से जुड़े हुए हमारे श्रोता हों, चाहे वो किसान भाई जो हमें इस समय सुन रहे होंगे और कृषि जगत और कृषि संकेत कार्यक्रमों के माध्यम से हमसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों जो आकाशवाणी से जुड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के बहुत सकुशल समापन के लिए।
3: आकाशवाणी ने 9 दशकों का तक सूचना शिक्षा संस्कृति और मनोरंजन के माध्यम से समाज को दिशा देने का एक कार्य किया है और आज का ये आयोजन उसी विरासत का उत्सव है। बहुत सारे प्रतिभागी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग मोबाइल कैमरों से खूबसूरत पलों को कैद कर रहे हैं और कोई एक ऐतिहासिक इस अवसर का गर्व बनाने का महसूस कर रहे हैं। और आज की वॉकथॉन के अंतिम चरण की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, प्रतिभागियों के कदम भले ही थक गए हों लेकिन उनका उत्साह अभी भी बरकरार है, यही जज्बा किसी भी सफल आयोजन की एक पहचान होता है।
0: नहीं वाह, 90 वर्षों का गौरवशाली सफर, सेवा समर्पण और विश्वास का घर, हर दिल की धड़कन मन की वाणी भारत की शान है अपनी आकाशवाणी। स्वरों का ये अनुपम संगम जन जन तक पहुंचा हर संदेश, 90 वर्षों की गौरव गाथा जिसने जोड़ा अपना देश, गीत गजल समाचार लेकर हर दिल में विश्वास जगाया, संस्कृति की अमर धरोहर बन भारत का गौरव बढ़ाया। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल एक संस्थान की उपलब्धि नहीं बल्कि करोड़ों श्रोताओं के प्रेम विश्वास और अपनत्व का उत्सव है और इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं आप सभी लोग। आकाशवाणी परिसर में हम पहुंच चुके हैं और मैं देख रहा हूं लोगों के चेहरे पे थकान भी है लेकिन एक फ्रेशनेस नजर आ रही है क्योंकि आज के इस सुबह में सब लोग जल्दी उठ आए थे और लेकिन मैंने जैसा बताया कि थकान है लेकिन उस चेहरे पे जो फ्रेशनेस है एक हल्की सी जो मुस्कुराहट है क्योंकि बहुत सारे पुराने श्रोता भी हमसे जुड़े थे, बहुत सारे पुराने लोग जो आकाशवाणी परिवार से बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं वो भी जो सिर्फ रेडियो के माध्यम से जुड़ते हैं हमसे वो आज रूबरू हुए, अनाउंसर्स रूबरू हुए क्योंकि कार्यक्रम लगभग लगभग समाप्ति की ओर है। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते हम विक्रांत जी जिनका एक बहुत अहम योगदान है आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं।
4: धन्यवाद रोहित जी एक बार पुनः आपका और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं जिस प्रकार से क्योंकि मौसम भी उतना अनुकूल नहीं है, हालांकि हमने सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करने की कोशिश की, हम कामयाब भी रहे सफलतापूर्वक इस आयोजन को करके हम वापस अपने स्टूडियोज में पहुंच गए हैं और कुछ आखिर की फॉर्मेलिटीज है, कुछ लोगों को सम्मानित करना है और फूड पैकेट शादी का वितरण करना है, उसी के लिए अब आगे की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। रोहित जी आपको, अपर्णा जी को, आकांक्षा जी को, स्टूडियो में रेणु जी को, आप सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा जिस प्रकार से आप लगातार जुड़े रहे क्योंकि चलना भी था और डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई नॉइज ना हो, उससे भी आप को जूझना था, साथ ही साथ अच्छे से संचालन भी करना था, सभी चीजों को आपने बहुत अच्छे से निभाया, एक बार पुनः आपका धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद विक्रांत सर। और अब एक बहुत खूबसूरत सी आवाज जिससे आप एक अरसे से आकाशवाणी पर सुनते आए हैं, आदरणीय असीम सक्सेना जी, मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन पे आपके आशीर्वचन हम सभी लोग जो है सभी श्रोता जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें मिले। सर
5: रोहित बहुत बहुत धन्यवाद और ये सबका समन्वित प्रयास था क्योंकि एक टीम वर्क के साथ आकाशवाणी ने हमेशा से काम किया है, चाहे वो कार्यक्रमों की बात हो चाहे वो प्रसारण की बात हो, कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक एक टीम उसके साथ ना हो। आकाशवाणी रामपुर का सौभाग्य है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो दिल से आकाशवाणी को प्यार करते हैं और कार्यक्रमों की बात हो तो भी दिल से अपने श्रोताओं तक पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं और इसी माध्यम के रूप में जो हमें इनाम मिला है, हम इसे कुदरत की देन कहेंगे, ईश्वर का उपहार कहेंगे कि जो उसने हमें इस क्षेत्र में चुना, एक मौका दिया, क्योंकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाना संभव नहीं होता है, आकाशवाणी इस कार्य को संभव करता है और हम उस गौरवशाली संस्थान से जुड़े हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रोहित आज के कार्यक्रम में आपने, आकांक्षा ने, अपर्णा ने जिस तरह से लोगों को साथ लेकर आप चले, लोगों के विचार जानते रहे, पूरी यात्रा का वृतांत लाइव हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, तो निश्चित रूप से ये एक लंबे समय तक यादगार रहने वाला इवेंट रहेगा और विक्रांत जी, अवधेश जी, बाकी सारे आकाशवाणी के जितने भी लोग थे, तकनीकी अनुभाग के शेखर जी, मुजफ्फर भाई और भी सारे लोग, सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और एक रेणु तिवारी जो माइक्रोफोन पर स्टूडियो से हम सबको नियंत्रित कर रही थी, अपनी बात उन्होंने भी आप तक पहुंचाई और उनका भी विशेष रूप से आभार और आभार उन सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े रहे, इस कार्यक्रम को उन्होंने लाइव सुना और यूट्यूब पर लाइव देखा। फिर मिलेंगे जरूर एक नई कोशिश के साथ, हम सब एक साथ होंगे। रोहित बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: धन्यवाद सर, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आप सभी जानते हैं असीम सक्सेना जी हमारे लिए, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अभी बहुत कुछ सीखना है। कहते हैं जब जब देश ने पुकारा है तब तब तूने स्वर संवारा है, खुशियों के गीत सुनाए हैं, दुख में भी साथ निभाया है, सीमाओं से लेकर गांव तक, शहरों से लेकर चौपालों तक, हर भाषा हर बोली में अपना संदेश पहुंचाया है। 90 वर्षों की गौरव गाथा, विश्वास की अमित कहानी, जन जन के दिल में बसती भारत की अपनी आकाशवाणी। और इस सुंदर से आयोजन का हम सभी रेडियो के माध्यम से जो है वो साक्षी बन रहे हैं और इसी प्रकार से आकाशवाणी आगे बढ़ते जाए। दिल से इतने सारे, मैं लोगों को अभी मैं बात कर रहा था, लोगों को सुन रहा था,
6: सबके दिल में बस यही है कि आकाशवाणी परिवार इसी प्रकार से विस्तृत होता रहे, बड़ा होता रहे और हम इस परिवार को और बड़ा बनाएं, इसी प्रकार एक दूसरे से प्रेम रखें, जुड़े रहें। और अब क्योंकि कार्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है, हमारे साथ अपर्णा दीदी हैं और आकांक्षा है, आइए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं दीदी।
7: हमसे तन्हा सफर नहीं होता, साथ उनका अगर नहीं होता, रास्ते साथ मिलके ढूंढे हैं, यूं तो कोई रहबर नहीं होता। जी हां श्रोताओं, आपका साथ आपका विश्वास हमारे साथ रहा और आकाशवाणी ने अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं, आपको भी शुभकामनाएं और साथ ही हम सभी को शुभकामनाएं जो भी आकाशवाणी का हिस्सा रहे हैं किसी न किसी तौर पर।
3: और अब चलते चलते बस इतना ही सभी श्रोताओं को कि ये स्वरों की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे और हम जिस तरह 90 वर्ष मना रहे हैं, 100 वर्ष भी मनाएं और 150 वर्ष भी मनाएं। और अपनी इसी वाणी के साथ अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर मैं आकांक्षा विदा लेती हूं। नमस्कार, अगली आवाज रोहित जी।
6: मुझसे पहले मैं चाहूंगा कि अपर्णा दीदी कुछ कहना चाहती है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दीदी?
7: बस इतना ही रोहित कि जिस तरह से श्रोताओं ने आकाशवाणी को प्यार दिया है, जिस तरह से हमारे साथ जुड़े रहे हैं, उसी तरह आगे भी इस सफर में हमारे हमराही बने रहे।
6: 90 वर्षों से गूंज रही है हर दिल में जिसकी रवानी, भारत की आत्मा का स्वर है अपनी प्यारी आकाशवाणी। इन्हीं अल्फाजों के साथ इजाजत लेता हूं मैं, आपका रेडियो साथी, और फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने अपनों का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अपने छोटों को प्यार देंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को, आकाशवाणी रामपुर को इस कार्यक्रम से अलविदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।
8: बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा सक्सेना, आकांक्षा सक्सेना और रोहित को। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रामपुर द्वारा आयोजित वॉकथन 2026 का प्रसारण। हमारे साथ सहयोगी थे विक्रांत चौधरी, अवधेश गौतम, असीम सक्सेना, अपर्णा सक्सेना, आकांक्षा सक्सेना और रोहित कुकरेती। तकनीकी सहयोग था मुजफ्फर खान, शेखर चंद्र, चेतन सिंह, वीरेंद्र और देवेंद्र का। और अब वापस चलते हैं आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो। अभी आप सुन रहे थे वॉकथन 2026 का सीधा प्रसारण, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: हमारा अभिमान है,
1: हमारी एकता,
0: हमारा मान है,
1: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
0: हमारी शान है
1: इस एकता की सुदृढ़ता।
0: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बनें।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र
1: मदी के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यधमेह से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान, कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की, कहा रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित, कहा केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक दो पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
4: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
3: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
5: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
3: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
3: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
7: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
3: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
8: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
3: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
9: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
10: मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं को दीक्षा कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। श्रोताओं, आज जब आप अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, ज़रा ठहरिए, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस दौर के बारे में जब घर के आंगन में एक लकड़ी के बक्से के इर्द गिर्द पूरा परिवार बैठ जाता था। वो बक्सा जो सिर्फ एक मशीन नहीं था, घर का एक बुजुर्ग था, एक दोस्त था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी, हमारी और पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ की, आकाशवाणी की। साल 1936 में शुरू हुआ ये सफ़र आज अपने 90 साल पूरे कर रहा है। 9 दशक, इन 90 सालों में भारत बदला, दुनिया बदली, तकनीक बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो है आकाशवाणी का देश के प्रति समर्पण। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र को सीने से लगाए इस आवाज़ ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय को एक सूत्र में पिरोया है। याद कीजिए, जब सुबह की शुरुआत वंदना और मंगलाचरण से होती थी, जब देश की सीमाओं पर तनाव होता था तो पूरा मुल्क समाचार सुनने के लिए सांसें थाम कर रेडियो के पास खड़ा हो जाता था। देवकी नंदन पांडे जी की भारी और गंभीर आवाज़ में यह आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए, सुनना सीधे दिल में उतर जाता था। सिर्फ समाचार ही क्यों, हवा महल के नाटक, बिना का गीतमाला में अमीन सयानी की का जी का वो जादुई अंदाज, भाइयों और बहनों, खेतों में काम करते किसानों के लिए कृषि जगत और युवाओं के लिए विविध भारती, आकाशवाणी ने हर उम्र हर वर्ग को अपना बनाया। जब टीवी नहीं था तब रेडियो की कमेंट्री ने हमें घर बैठे स्टेडियम का एहसास कराया। कपिल देव की ऐतिहासिक पारी हो या सचिन का सीधा स्ट्रेट ड्राइव, हमने सब कुछ आकाशवाणी की नज़रों से सुना। आज के डिजिटल दौर में जहां पॉडकास्ट और रील्स की बाढ़ है, वहां भी आकाशवाणी की साख, उसकी सत्यता और उसकी सादगी आज भी अडिग है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात से लेकर दूरदराज के गांव में मौसम के पूर्वानुमान, तब आकाशवाणी आज भी भारत की सबसे भरोसेमंद आवाज़ है। 90 साल का ये सफ़र सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों की यादों, आंसुओं, जीतों और मुस्कान का दस्तावेज है। आकाशवाणी के 90 शानदार वर्षों पर इस आवाज़ को और इसे जिंदा रखने वाले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ रेडियो नहीं, यह आप सबका, हम सबका दिल है।

0: अब हमारे साथ हैं एक आकाशवाणी के श्रोता, उनसे हमने बातचीत की, तो आइए।
1: आदाब नमस्कार, मैं जीशान वारसी ग्राम संधौली तहसील मीरगंज जिला बरेली से हूं और मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। सन 2007 में जब पहली बार रेडियो की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, तब से आकाशवाणी से एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है जो आज तक दिल में उसी अपनापन के साथ बसा हुआ है। कभी गीतों ने मुस्कुराना सिखाया, कभी समाचारों ने दुनिया से रूबरू कराया, तो कभी बेहतरीन कार्यक्रमों ने जीवन को नई सोच और नई दिशा दी। रेडियो की वो प्यारी धुन आज भी दिल को भाती है, आकाशवाणी की हर आवाज़ अपनों सा एहसास दिलाती है। साल बदलते रहे, वक्त गुजरता रहा, मगर रेडियो से मोहब्बत का रिश्ता और गहरा होता रहा। जहाँ शब्दों में मिठास हो, जहाँ सुरों में प्यार बसता हो, वो आकाशवाणी ही है जो हर दिल में खास बसता है। वो 90 वर्षों का ये सुनहरा सफ़र एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों श्रोताओं की भावनाओं, यादों और विश्वास का सफ़र है। आकाशवाणी ने देश की संस्कृति, भाषा, संगीत और सामाजिक मूल्यों को घर घर तक पहुंचाने का महान कार्य किया है। आकाशवाणी आज 90 वर्ष पूरे कर रहा है। दिल से यही दुआ है कि आकाशवाणी की मधुर आवाज़ यूं ही सदियों तक हर दिल को जोड़ती रहे, हर चेहरे पर मुस्कान लाती रहे और नई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। आकाशवाणी परिवार को 90वें स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।
0: श्रोताओं, आज हमारे आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं। दोस्तों, आज तारीख है 8 जून और आज का दिन कैलेंडर का वो पन्ना है जो हमें हमारी सेहत और इस धरती की सेहत दोनों की याद दिलाता है, क्योंकि आज दुनिया भर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मनाए जा रहे हैं। पहला है विश्व महासागर दिवस और दूसरा है विश्व ब्रेन ट्यूमर डे। पहले बात करते हैं हमारी सेहत की। हमारा दिमाग जो पूरे शरीर को चलाता है, अक्सर हम सिरदर्द को मामूली समझकर एक पेन किलर खाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अगर सिरदर्द लगातार बना रहे, सुबह के समय ज़्यादा हो या चक्कर आए, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर दिवस का सिर्फ एक ही मैसेज है, सही समय है जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज है, अपने स्वास्थ्य से कभी समझौता मत कीजिएगा। और दूसरी तरफ बात अगर इस धरती के दिल की करें, यानी हमारे महासागर, हमारे ओशंस जो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, मौसम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज वो प्लास्टिक के कचरे से हाँफ रहे हैं। याद रखिए, समंदर दूर ज़रूर है, लेकिन हमारे घर से निकलने वाला प्लास्टिक घूम फिर कर उसी समंदर को बीमार कर रहा है। तो आज एक छोटा सा वादा खुद से करिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कहेंगे बाय बाय। चलिए, आज के लिए बहुत हुई ज्ञान की बातें, अब थोड़ा मूड रिफ्रेश करते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। गीत से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
4: आइए सुनते हैं अब ये खूबसूरत संगीत।

0: आई कार्यक्रम में थोड़ा और मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये अगला खूबसूरत सा गीत।
1: उठे सबके कदम, देखो रंग

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

0: सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2014 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
7: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: for a look at today's newspapers. It's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. Top front page headline in the Statesman writes, Nepal signals pragmatic reset in ties with India during foreign minister's visit, backing bilateral route on border issue. Ministry of Home Affairs approves deployment of 670 companies of CAPFs, marking one of the largest ever multi-layered security arrangements for Amarnath Yatra, reports the Asian Age. An editorial in Hindustan Times states how SAARC offers India what other forums cannot. It empowers Delhi amidst global turmoil with no guarantee needed from any external actor in setting the terms of the organization. In an extraordinary arrangement, need paper setters to be in lockdown till re-exam, no phone, net, team housed at secret location, says the Times of India. The Economic Times states, lay old town to get heritage makeover to enhance infrastructure and improved public amenities. The Indian Express quoting the government says, despite second price revision of LPG gas cylinder since crisis in West Asia, oil marketing companies are still losing 700 rupees. And finally, in a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se peshe khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नमाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिसाइलों से हमले किए हैं और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है अब खबरें तफसील से मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निफाज के लिए आज एक मफाहमतनामे पर दस्तखत करेगी इस मफाहमतनामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है मगरबी बंगाल में ABPMJAY के निफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत इखराजात से माली तहफ्फुज फराहम होगा जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कानात में बिला रुकावट मदद मिलेगी इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का

0: हिफ्जान सेहत का निजाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: NTA की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीके कार के तहत करवाया जाएगा। NTA ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तिहान का सेंटर वाकई है। NTA ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलान के बारे में मालूम उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG इम्तिहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को NTA की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल CBI में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तिहान दोबारा मुनक़िद कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोजा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर्स के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा की स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टेगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलातों और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी तेज जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।

0: यह गीत था फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, विशाल मिश्रा, नेहा भसीन, इरशाद कामिल की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म बैड बॉय से, हिमेश रेशमिया, अदिति अईस कौर और विनीत सिंह की आवाजों में।

आप सुन रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म आदि पुरुष से संचित टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह आखिरी गीत फिल्म गदर 2 से विशाल मिश्रा, नीति मोहन, साहिल अख्तर और शहनाज अख्तर की आवाज़ों में।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
2: धूप में निकले सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अस्पताल का रख रखाव और चिकित्सकों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
1: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3,518 परगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
3: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पे क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन इनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें। इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी प्रीत नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
1: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1-1 लाख रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम

0: का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकतानुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
1: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
2: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरोधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध और गांवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन, राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं, लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरुआ होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसा नगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसा नगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वावधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर, घाटों, धर्मशालाओं, कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग।

आज का प्रेरक प्रसंग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जीवन केवल उपलब्धियों से भरा हुआ नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य, नेतृत्व और मानवीयता की जीवंत पाठशाला है। जब वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत थे तब 1979 में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण SLV-3 असफल हो गया था। रॉकेट समुद्र में गिर गया। ये पल पूरे देश के लिए निराशाजनक थे। उस समय परियोजना निदेशक होने के कारण पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम पर थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके वरिष्ठ डॉक्टर सतीश धवन आगे आए और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दोबारा से प्रयास किया। एक साल बाद 1980 में वही परियोजना सफल हुई। इस बार प्रेस से मिलने के लिए डॉक्टर धवन ने कलाम को आगे किया और पूरी सफलता का श्रेय उन्हें व उनकी टीम को दिया। इस घटना से डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक सीख भी ली कि सच्चा नेता असफलता को स्वयं स्वीकार करता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। ये बात उन्होंने जीवन भर अपनाए रखी। जब वो युवा थे तो उनका सपना भारतीय वायुसेना में पायलट बनना था। चयन सूची में वो 9वें स्थान पर रहे जबकि केवल 8 रिक्तियां थी। उनका सपना टूट गया। वो अत्यंत निराश होकर ऋषिकेश गए जहां एक संत से मिले। संत ने उन्हें समझाया कि हर असफलता हमें नई दिशा देने आती है। कलाम ने स्वयं लिखा कि उस दिन उन्होंने समझा भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। यदि वे पायलट बन जाते तो शायद भारत को मिसाइल मैन न मिलता। बच्चों के प्रति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का विशेष स्नेह था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो बच्चों से मिलने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए कई कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए। ऐसे ही एक कार्यक्रम में एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा, सर मैं भारत को महान कैसे बना सकता हूं? उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले स्वयं महान बनने का संकल्प लो। वो मानते थे कि राष्ट्र का भविष्य कक्षा में बैठा विद्यार्थी तय करता है। सादगी का तो उन्होंने उदाहरण ही प्रस्तुत किया, वो भी अद्भुत उदाहरण। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद जब वो अपने निजी जीवन में लौटे तो उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति के नाम पर बहुत कम वस्तुएं थी, कुछ कपड़े, पुस्तकें और एक वीणा। उन्होंने कभी भी धन या वैभव को महत्व नहीं दिया। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि महानता सादगी में बसती है, दिखावे में नहीं। उनके जीवन का अंतिम क्षण भी युवाओं को प्रेरित करते हुए बीता। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागां, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र पर।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। क्लर्नेट वादन होगा नवी जान कहाँ खाका, राग होंगे मुल्तानी, विलंबित रचना एक ताल, द्रुत रचना तीन ताल।

अभी आपने सुना कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आपके खतों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जरूर वरूड़ महाराष्ट्र से बाबा साहब वाडोड़े, मीनाक्षी चरपे, रजनी करनीरे, कार्तिक और युवराज ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवार शेर ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म हम साथ साथ से। कविता कृष्णमूर्ति, ए हरिहरन और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनने की फरमाइश की है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद असारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहाँ ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत को सुनना चाहते हैं हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतेक बीरक और मीका बीरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से इस गीत को सुनना चाहा है द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। इन सभी ने जिस गीत को सुनना चाहा वह गीत है फिल्म डुप्लीकेट से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने का अनुरोध किया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रेफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर ने। इन्हीं के साथ इस गीत को सुनना चाहा है पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी ने। पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिरहा के पास से इस गीत को सुनना चाहा है डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा, असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन। बीबीपुर से इस गीत को सुनना चाहा है मकसूद हुसैन और नाजिम अली ने। आदर्श नगर मलोट से इस गीत को सुनना चाहते हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। ये सभी जिस गीत को सुनना चाहते हैं वे गीत है फिल्म दी जेंटलमैन से एस बी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: सबदंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो, अपनों के बिना अधूरी लगती है।
1: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान

0: केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: जा रहा कौवा, अपनी रोटी गंवा बैठा ना।
1: क्यों भला?
0: क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आह देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: हाँ, अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई
3: हा?
4: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल चल।
4: हाँ,
3: हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
4: हाँ, ठीक है।
3: चल,
4: ठीक है।
3: चल, चल, चल, चल, चल, चल।
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे,
0: ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती? त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई, विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें।

0: यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब यह हमारे संरक्षण में है।
1: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नवयुवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
0: रवि
2: जी,
0: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी। रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
0: मिस्टर जेनसन,
3: यस,
0: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
3: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
0: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
1: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
3: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
1: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
2: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए, और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को

वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।

दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत आकाशवाणी आवाजों में बसी यादें। वाचन एवं संकलन है सुनील सक्सेना का। आलेख एवं प्रस्तुति रहेगी अवधेश कुमार गौतम की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। महज तीन शब्दों का ये वाक्य कोई सामान्य उद्घोष नहीं है। ये एक ऐसा नाद है, एक ऐसा एहसास है जिसने भारत की कई पीढ़ियों को उनकी सुबह की पहली चाय की चुस्की से लेकर रात की सुकून भरी नींद तक एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत धागे में प्रूव कर रखा है। जब भी रेडियो के सेट पर यह आवाज गूंजी तो देश के किसी सुदूर गांव में बैठा किसान भी इसे दिल की धड़कन को महसूस कर सका। आज जब हम इस माइक्रोफोन के सामने बैठे हैं तो हवाओं में एक खास तरह की महक है। ये महक है यादों की, इतिहास की और 90 वर्ष के ऐतिहासिक सफर की। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं बल्कि भावनाओं का वो माध्यम है जिसने वर्षों से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। इसकी मधुर आवाज में अपनापन, संवेदना और आत्मीयता का एक ऐसा जादू होता है जो सीधे मन को छू लेता है। जब भी रेडियो पर कोई गीत बजता है, समाचार सुनाई देते हैं या किसी उद्घोषक की सजीव आवाज कानों में पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कोई अपना हमसे बात कर रहा है। रेडियो का इतिहास 90 वर्ष पुराना होने जा रहा है और इन ऐतिहासिक वर्षों में हमें बहुत सी ऐसी आवाज़ें सुनने को मिली जो सीधे दिल में उतर गई। इनमें से बहुत सी आवाज़ें अब काल में समा गईं, जिनमें मरहूम मोहम्मद अली मौज, विनोद आनंद दयाल और चंद्रमोहन सक्सेना, अंजलि वाजपेयी। लेकिन अब भी बहुत सी आवाज़ें हमारे साथ हैं। उन्हीं के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम आकाशवाणी आवाजों में बसी यादें। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सादगी और अपनापन है। इसमें दिखावे की चमक नहीं होती, फिर भी इनकी आवाज दिलों में गहरी जगह बना लेती है। ये रिश्तों को जोड़ता है और भावनाओं को शब्द देता है और यादों को सजोता है। कुछ बीते दौर की यादों के साथ हैं हमारे केंद्र पर रही असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती मंदीप कौर।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की लगभग एक सदी की ऐतिहासिक और गौरवशाली यात्रा से जुड़े अनुभवों और यादों का सिलसिला शुरू करने का सिरा बार बार हाथ से छूट रहा है। 90 साल के दौर में तकरीबन 55-57 साल तो मैं भी जुड़ी रही आकाशवाणी से। 40 साल का आकाशवाणी में मेरा सेवा काल रहा और उससे पहले करीब 12-15 साल में बाल और युवा कलाकार के रूप में आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी रही। आप सोचिए कितना मुश्किल है संजोई हुई यादों को, बातों को जहन की गहरी परतों से बाहर लेकर आना। कई केंद्रों पर मैंने काम किया, आकाशवाणी दिल्ली, जालंधर, बरेली, नजीबाबाद, रामपुर। एक बात मैंने कॉमन देखी सभी केंद्रों पर, दिल्ली और जालंधर स्टेशन बहुत बड़े केंद्र हैं, रामपुर मीडियम वेव का सामान्य स्टेशन है, आकाशवाणी बरेली एक लोकल रेडियो स्टेशन है FM बैंड पर। तो हर एक की अलग अलग मूड्स, अलग अलग लेवल के केंद्र रहे हैं, लेकिन एक कॉमन चीज मैंने सब में देखी कि आकाशवाणी के एम्प्लॉयज, आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर्स, कलाकार, बाहर के साहित्यकार और श्रोता, इन सबके बीच का जो रिश्ता है वो एक अजीब गरीब रिश्ता देखा, एक परिवार की तरह देखा। ये देखा ही नहीं कि प्रोफेशनल रिश्ते नहीं, बिल्कुल फैमिली के रिश्ते जैसे होते हैं, उस तरह से सभी एक दूसरे को निभाते थे, एक दूसरे से व्यवहार और करते थे, मिलते थे। शुरुआत मैं बताती हूँ आपको, आकाशवाणी दिल्ली से ही मेरी नौकरी की शुरुआत हुई और उसी शुरुआती दौर में कुछ ही दिनों के बाद मैं ड्यूटी पर थी, ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी, एक महिला स्वर आता है कि पास बना दो। तो मैंने ऊपर देखा

और कहा नाम, तो वो थोड़ा चौंकी, शायद उनको लगा कि मुझे उनका नाम क्यों नहीं पता है, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया इतना ज़्यादा चेहरे पर भी। तो उन्होंने कहा अमृता प्रीतम। जैसे ही अमृता प्रीतम कहा, मैं नाम सुनते ही एकदम हड़बड़ा के चौंक के खड़ी हो गई, और इस शर्मिंदगी के साथ मैंने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी उनसे। तो उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पकड़ लिए और कंधे पर हाथ रखा, थपथपाया, बोली कोई बात नहीं, अभी नहीं आई हो, पता नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं। और मुझे बहुत ही जल्दी से उन्होंने शांत कर दिया, सामान्य स्थिति में वो मुझे ले आई। उसके बाद तो फिर वो अक्सर मिलती थी, जब वीडियो आती थी वो प्रोग्राम का पेश करने, एक्चुअली वो एक पंजाबी सेक्शन में रेगुलर प्रोग्राम पेश करने आया करती थी, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। उसके बाद बहुत बार मुलाकात थी, वो हर बात बार उसी आत्मीयता से मिलती थी, और मैंने देखा कि वो स्टाफ के सभी लोगों के साथ में इस तरह से पारिवारिक रूप से चाय पी रही हैं, बातचीत कर रही हैं, लगता ही नहीं था कहीं से कहीं तक कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ पर हमारे बीच में है। ऐसे ही जसवंत सिंह जो कमेंटेटर्स, जिनका एक नाम था, जिनका एक काम था, जिनको रेडियो पर सुनकर लोग ट्रांजिस्टर छोड़ ही नहीं सकते थे उनके कमेंट्री के सामने, वो भी अक्सर हमारे पेक्स कोऑर्डिनेशन थे आरबीएल माथुर साहब, उनके कमरे में बैठा करते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्स सेक्शन देखते थे। तो मैं भी अक्सर उनके पास जाती थी, तो कई बार उनसे मुलाकात हुई है, जसवंत सिंह जी से बातचीत भी होती थी, उनको भी मैं देखती थी, लगता ही नहीं था कि कितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ पर, किस तरह से आराम से कभी स्टूल पर बैठे मिल जाएंगे, कभी चेयर पर बैठे मिल जाएंगे। ऐसे ही दूसरे केंद्र की अगर बात करूँ, जलंधर स्टेशन पर, वहाँ पर भी यही सिलसिला मैंने महसूस किया। वडाली बंधु थे, दिलेर मेहंदी जी, हंसराज हंस जी, सब रेगुलर आया करते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए या वैसे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने के लिए, तो अक्सर उनसे भी मुलाकात होती थी, मैं देखती थी, चाहे हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों या हमारे अनाउंसर हों, ऑफिसर्स हों, कोई भी जो भी एम्प्लॉयज थे, सबके साथ में एक साथ मिलना जुलना, एक साथ उठना बैठना। आकाशवाणी रामपुर में भी मैंने ये बात देखी, बड़े बड़े कलाकार उस समय आया करते थे, बड़ी बड़ी कॉन्सर्ट्स म्यूजिक की हुआ करती थी। सिंह बंधु जो कि ध्रुपद गायन के मास्टर्स थे, वो भी एक बार कॉन्सर्ट में आए थे आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग भी हुई। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन जी, फिदा हुसैन नरसी जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, ये सब बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े कलाकार आकाशवाणी रामपुर में आया करते थे, और बिल्कुल लगता नहीं था कि इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े व्यक्तित्व तो यहाँ पर हम लोगों के साथ में है। ऐसे एक बार पंडित जसराज जी केंद्र पर आए, मैं ऑफिसर ऑन ड्यूटी थी, मैंने उनको जैसे आमतौर पर आते हैं कोई हम बिठा देते हैं, उन्होंने कहा श्याम मोहन जी प्रोड्यूसर से मिलना है, मैंने श्याम मोहन जी को बुलवाया, श्याम मोहन जी ने उनके पांव छुए और इतने वो प्रसन्न होकर एकदम गले मिलके उनको हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले गए। बाद में पता लगा कि तो पंडित जसराज थे। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारा व्यवहार एक अधिकारी का व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसे ब्रॉडकास्टर का होना चाहिए जो जानता हो कि हाँ आने वाला शख्स क्या शख्सियत है, कौन शख्सियत है, और हमें उसके साथ में किस सम्मान के साथ में बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में सीखी यहाँ पर। वो दौर एक कठिन दौर था, शुरुआती दौर आकाशवाणी का, पुराना दौर। उस समय सभी काम मैनुअल मशीनों पे हुआ करते थे, लेकिन जो लगन थी, जो समर्पण था, जो जुनून था, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो या वो लिसनर हो, सब में गजब का था। तो जुनून का तो एक मैं किस्सा आपको बताऊं। हमारे साथी थे राजेश जी, तो उस समय रिकॉर्डिंग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जब आया करते थे तो उनकी रिकॉर्डिंग करने के लिए रेडियो की टीम जाया करती थी, और उस समय ये सिस्टम था कि स्पीच की उनकी रिकॉर्डिंग करके तुरंत ही जो उनकी फर्स्ट लाइन के जो उनके सिक्योरिटी पर्सन थे उनको सौंपी जाती थी। तो जो हमारी आकाशवाणी रामपुर की टीम गई थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग की, ठीक ठाक रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद जब वो टेप और स्पूल उसमें से निकाल रहे थे मशीन में, तो वो कहीं टेप उलझ गया और उसमें इतनी देर लग गई कि उनकी स्पीच खत्म हो गई, वो मंच छोड़ के हेलीपैड की तरफ, पूरे उनका जो टीम थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थी उनके साथ में पूरी टीम हेलीपैड की तरफ चल दी। तो राजेश जी ने जल्दी से उस टेप को उठाया और दोनों, एक स्पूल में आधा टेप था, दूसरे स्पूल में आधा टेप था, ऐसे ही टेप को लेके ऊपर हाथ करते हुए हेलीपैड की तरफ उन्होंने दौड़ लगाई। तो पुलिस कर्मी उनके पीछे भाग रहे हैं राजेश जी को रोकने के लिए कि कहाँ जा रहे हैं ये सिक्योरिटी को तोड़ते हुए, लेकिन राजीव गांधी जी ने उनको हेलीपैड पे दूर से देखा, उन्होंने कि कोई शख्स आ रहा है जो टेप ऊपर से दिखा रहा है, उन्होंने इशारे से पुलिस कर्मियों को रोका और खुद राजेश जी जब तक पास नहीं आ गए और तब तक वो खड़े रहे और अपने आप उन्होंने उनके हाथ से टेप लिया।

0: यानी कि वो उस अहमियत को जानते थे, वो समझ रहे थे कि जरूरी रिकॉर्डिंग है जो मेरे साथ जानी है। तो इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो हमने ब्रॉडकास्टर्स को काम करते देखा है जिम्मेदारी के साथ में, वो बहुत ही गजब का टाइम हुआ करता था। बच्चों के प्रोग्राम का भी एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है कि जब बच्चों के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर स्टेशन पे लाइव हुआ करती थी, लाइव प्रोग्राम जाता था, तो तभी आकाशवाणी पटना केंद्र से बच्चों के प्रोग्राम में एक बच्चे ने किसी टॉप लीडर को गलत कुछ शब्द इस्तेमाल कर दिया। और जबकि बच्चों को पहले से सिखाया जाता है, जो बच्चे लाइव में जाने होते हैं, कि आपने क्या सुनना है, कौन सी कविता सुनाएंगे, कौन सी कहानी सुनाएंगे बच्चे, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो भोलेपन से लाइव माइक पर वो पहले कुछ और बोल के गए, लेकिन वहां उसने कुछ कविता के भाव में और नारे के भाव में कुछ और बोल दिया। समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया था सभी केंद्रों पर, और तत्काल प्रभाव से सभी केंद्रों पर लाइव प्रोग्राम बच्चों का बंद कर दिया गया था, जो आज तक सिलसिला जारी है, आज तक रिकॉर्डेड प्रोग्राम जाता है। इसी तरह से अगर बहुत सारी बातों को मैं याद करती हूँ कभी कभी, तो आकाशवाणी रामपुर में जब हमने काम किया तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट, ये दो ऐसे काम थे जो वास्तव में एक चुनौती थी केंद्र के लिए, लेकिन केंद्र ने बहुत ही तत्परता के साथ और सफलतापूर्वक एक टीम भाव के साथ में काम किया। और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में उन मशीनों पर काम किया जो मशीनें आउटडेटेड होने की स्थिति में थी बिल्कुल, जिन पर काम करने का मतलब था कि आधे घंटे का प्रोग्राम दो दो तीन तीन घंटे में बना करता था, और तब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था मशीनों का। तो हम लोगों ने उसी दौर में मालूशाही, सुमंगला, लक्ष्मी, प्रश्नचिन्ह, सिमटती बस्तियां, इस तरह के न जाने कितने सीरियल हमने रेडियो धारावाहिक 13-13 और 26-26 एपिसोड के बनाए। तो ये जो टीम भाव के साथ में जो काम हुआ करता था वही गजब था। तो उसमें बल्कि एक नया एक्सपेरिमेंट पे हमने किया, जब गंगा सीरियल बना रहे थे, तो ये था कि हम कैसे करके काम को ऐसे कुछ अंजाम दें कि समय कम लगे, क्योंकि सब हम एग्जॉस्ट हो चुके थे इतना काम करके। तो गंगा सीरियल में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि हम सारा जितना भी काम है लाइव करेंगे, यानी कि लाइव रिकॉर्डिंग करेंगे, कोई भी चीज़ें पोस्ट प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सारे साउंड इफेक्ट्स, सारी बैकग्राउंड म्यूजिक, कलाकारों के डायलॉग्स, नरेशन, सब वन टाइम वन टेक पे सारे के सारा हमने रिकॉर्ड किया। और वो ही वास्तव में एक ऐसा चैलेंज था, उसकी ना तो क्वालिटी खराब थी और ना ही उसके अंदर कहीं भी कोई कंप्रोमाइज दिखाई देता था, तो वो एक बड़ा काम था हमारा। इसी तरह से अगर हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो मेगा प्रोजेक्ट भी लोक संपदा का एक बड़ा काम था, जिसमें केंद्र के सभी लोगों ने, पूरी टीम ने लोकगीतों का जो कलेक्शन किया, गांव-गांव में सभी जातियों का, सभी धर्मों के, सभी के जो गीत गाए जाते हैं लोकगीत, उनको रिकॉर्ड करने का, वो भी आकाशवाणी रामपुर के आर्काइव्स के लिए एक अच्छी धरोहर है। श्रोताओं, बातें, यादें और अनुभव इतने ज्यादा हैं कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो एक रेडियो धारावाहिक तैयार हो जाएगा। समय कम है, आखिरी बातों पर आते हैं। रामपुर आकाशवाणी आज भी आपके साथ है, हम सबकी सेवा में तत्पर है, सजग है। इस केंद्र की सबसे कीमती धरोहर, स्टेशन से जुड़े तमाम ऐसे श्रोता हैं जो न केवल प्रोग्राम सुनते हैं, भागीदारी करते हैं खत या फोन के जरिए, बल्कि सही मायनों में वो इस केंद्र से बेतहा मोहब्बत करते हैं। उनका जुड़ाव प्रोग्राम और श्रोता का ही नहीं है, बल्कि इससे इतर स्टेशन के हर शख्स, हर चीज, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की इमारत और हर एक्टिविटी से निजी रूप से जुनून की हद तक जुड़ा हुआ रिश्ता है। यही बड़ी उपलब्धि और खासियत है इस स्टेशन की। आज यही दुआ है कि आकाशवाणी के आगे के आने वाले बरस भी और उसके आगे के सफर में भी ये सिलसिला जारी रहे, नई कलेवर, नई रंगत, नए कार्यक्रम और नई धमक चमक के साथ 10 बरस बाद 100 साल जश्न भी सब मिलकर मनाए। वंदे मातरम, जय हिंद।
1: आकाशवाणी एक ऐसी वाणी है जो आकाश से अवतरित होती है और सीधे जनमानस के हृदय तक पहुंचती है। आकाशवाणी को उसको वजूद दिया है उन महान प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों और रेडियो प्रसारकों ने, जिनकी आवाज ही उनका चेहरा बन गई। एक उद्घोषक केवल कागज पर लिखी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, वो श्रोताओं के बंद कमरे में उनके परिवार का सदस्य बनकर बैठता है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का सही उच्चारण और आवाज में वो ठहराव, यही एक ब्रॉडकास्टर की पहचान हुआ करती है।
2: मेरा नाम बशीर आरिफ है। मैं आकाशवाणी रामपुर का निदेशक रह चुका हूँ 90 की दहाई में, यानी 95-96 में। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैं रामपुर गया, क्योंकि रामपुर इल्म और अदब का मरकज़ रहा है और आज भी है। रामपुर केंद्र पे आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बेहतरीन स्टाफ मेंबर्स, बेहतरीन फनकार, मौसीकी के दिलदादा लोग, शेर व शायरी के दिलदादा। और मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि हमारा जो ब्रॉडकास्ट है, जो हमारा प्रसारण है, वो पब्लिक फ्रेंडली रहे। एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया था जिसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनी जाती थी। अच्छी बात ये रही कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए तो रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी साहब इलेक्ट हुए पार्लियामेंट के लिए, और इत्तेफाक से उन्हें जो मंत्रालय मिला वो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैं उन दिनों छुट्टी पे गया हुआ था अपने घर, और वापसी पे मैंने फ़ोन मिलाया उनको। वो उन दिनों इब्तदाई अयाम में वेस्टर्न कोर्ट के एक क्वार्टर में रह रहे थे, बाद में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी कोठी में हासिल की और वहाँ पे रहने लगे। मैंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और बड़े तपाक से मिले और बहुत ही मोहब्बत से मिले, और मैं बड़ा खुश रहा कि मेरी मुलाकात अपने विभाग के मंत्री से हुई। वक्त गुजरता गया तो मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, वो था पब्लिक ग्रीवेंसेस का, और हमारे जो इंजीनियर साहिबान थे वो बड़े कोऑपरेटिव थे। तो मैंने अपने स्टेशन इंजीनियर से रिक्वेस्ट की कि मैं फ़ोन इन करना चाहता हूँ, जिस पर हम किसी अधिकारी को, किसी ऑफिसर को, बड़े ऑफिसर को बुला के अपने स्टूडियो में फ़ोन के ज़रिए पब्लिक से उनकी ग्रीवेंसेस का प्रसारण शुरू करेंगे। तो उनको ये ख्याल बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया और टेक्निकल सुविधाएं उपलब्ध रखी। और मज़े की बात ये रही कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मैंने दावत दी और वो बनफ़से नफीस तशरीफ़ लाए और उन्होंने उस प्रोग्राम की इब्तिदा की, शुरुआत की। और बाद में उन्होंने मंत्रालय से एक आदेश जारी किया कि तमाम स्टेशन, तमाम केंद्र इस तरह के प्रोग्राम शुरू करें। ये श्रेय जाता है आकाशवाणी रामपुर को। आकाशवाणी रामपुर से हमने कई कॉन्सर्ट कराए, मुशायरे कराए, कभी गोष्ठियाँ कराई, इल्म अदब के प्रोग्राम नशर करवाए, और गांव देहात में जाकर वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनको समझने की और उनको अवाम तक पहुँचाने की और अरबाब इक्तदार तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। रामपुर इल्म अदब का गहवारा रहा है, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा। यहाँ के लोग बड़े खुश मिजाज, नवाज, शेर व शायरी के दिलदादा, मौसीकी के दिलदादा, और यहाँ पर कई बड़े बड़े फनकार इस सरजमीन ने पैदा किए हैं। मेरे एक दोस्त जमील खान साहब भी इसी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, और उर्दू के सबसे बड़े शायर गालिब भी इस शहर में रह चुके हैं। और खासा ये कि रामपुर रजा लाइब्रेरी में कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ, कई मोतबर किताबें वहाँ, कलमी नुस्खे वहाँ मिले, वो पढ़ने का मौका मिला। और रामपुर में कई अशख़ास से, कई शख्सियात से मिलने का मौका मिला। नूरबानो साहिबा थीं, उनसे मौका मिला मुलाकात का। मोहम्मद अली मौज, जो रामपुर में बहसे थे, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, बाद में वो वहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर भी रहे, लेकिन अल्लाह ने उनको जल्दी वो अपने पास बुला लिया, वो उनकी मौत वाक़ हो गई। बहुत ही नफीस आदमी थे, बहुत ही मैंने शफीक आदमी थे। मैं रामपुर की किस किस हस्ती को याद करूं, मैं तमाम रामपुर के शायकीन को, सामीन को, श्रोताओं को सलाम पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आकाशवाणी रामपुर, जो कि आकाशवाणी अब 90 साल मुकम्मल करने जा रहा है पूरे भारत में, आकाशवाणी रामपुर भी तरक्की की मंजिलें तय करता रहे और यहाँ पर जो स्टाफ है उन्हें कुव्वत दे, हिम्मत दे कि वो नए नए रंग बिरंगे प्रोग्राम तरतीब देने में सफल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 8 जून 1936, यही एक ऐतिहासिक दिन था जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने एक नया चोला पहना और जन्म हुआ ऑल इंडिया रेडियो का। 8 जून को हमारी अपनी आकाशवाणी

0: अपने जीवन के 90 वसंत पूरे कर रही है। इन 9 दशकों में आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं रही, बल्कि ये स्वतंत्र भारत के निर्माण, उसकी सफलताओं, चुनौतियों और उसके मुस्कुराते रोते चेहरों की सबसे बड़ी प्रमाणिक गवाह बनी। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर में कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्यरत रही और दूरदर्शन लखनऊ से सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुई श्रीमती रमा अरुण त्रिवेदी जी।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं बचपन से आकाशवाणी से जुड़ी रही बाल कलाकार के रूप में भी, और जब मैं रिटायर हुई तब मैं कार्यक्रम प्रमुख के पद पर थी, और मुझे लगता है कि ये जो मौका मुझे मिला बहुत कम लोगों को मिलता है, इसके लिए मैं ईश्वर का, आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जहां तक रामपुर की बात है, रामपुर में मेरी पहली पोस्टिंग थी, नई थी, नव यौवना थी, 24.5 साल की थी जब मेरा यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ और मैं एक अधिकारी के रूप में वहां गई। बहुत वहां पे जो काम करने वाले थे उनका इतना जबरदस्त सहयोग मुझे मिला, मैं उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और चूंकि ड्रामा मेरा फील्ड था, मैंने भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2 ईयर्स डिप्लोमा किया था, तो ड्रामे का चयन होने के कारण पैक्स ड्रामा के रूप में मैं चयनित हुई, और मैंने शुरुआत किया वहां पर एक सीरीज थी किस्से जिंदगी के, इसमें इंडिपेंडेंट सीरीज थी, एक एक एपिसोड मजेदार बात कहता था किसी संदेश के साथ। तो और बेहतर ये भी मुझे लगा कि ये तो बड़ी मजेदार सीरीज है, चलो इसको हम भेजते हैं विविध भारती मुंबई। मुंबई विविध भारती में हवा महल में इसकी सीरीज, सिंगल इंडिपेंडेंट जो सीरीज थी वो टेलीकास्ट हुई, जिसका मुझे बेहद हर्ष के साथ मैं बताना चाहूंगी कि मेरे मित्र कहते थे, अरे रमा तुम्हारा वो, हमने विविध भारती में वो झलकी सुनी किस्से जिंदगी के, बड़ी मजेदार तुमने तो एक्टिंग भी की। मैंने उसमें एक्टिंग भी की थी, प्रोड्यूस भी किया था और डायरेक्ट भी किया था। रामपुर से वैसे तो हजारों अनेकों यादें जुड़ी हैं, लेकिन खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नफीस सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने उर्दू के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया था, उर्दू सर्विस दिल्ली के लिए, और उनको वैसे भी उन्होंने जो अपना हमें सहयोग दिया लेखन क्षेत्र में, बहुत लिखा नफीस साहब ने और मैंने लिखवाया भी उनसे। इसके साथ साथ वहां पर जो कार्यक्रम अधिकारी थी मंदीप कौर, राम कुमार सक्सेना प्रोडक्शन असिस्टेंट, जबरदस्त सहयोग दिया उन्होंने मुझे, दयाल साहब सक्सेना जी अनाउंसर थे और बका मिया ट्रांसपोर्ट में थे, मेरे को बहुत सारे लोगों के नाम याद आ रहे हैं, लेकिन चूंकि कम समय में संदेश ज्यादा देना है तो मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सहयोग दिया और आगे मतलब बैक सपोर्ट रहा और सामने भी रहा। मेरे लिए एकदम नया केंद्र था रामपुर, इतना प्यार, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी एक ऐसे नए शहर में गई जिसको मैं जानती नहीं। शुक्रिया उन सभी का। और रामपुर में मैंने सच बता रही बहुत सीखा, क्योंकि मैं एकदम नई गई थी। रेडियो में मैंने काम जरूर बहुत किया था, लेकिन एक अधिकारी के रूप में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, फाइल वर्क, ये सारा मैंने रामपुर से सीखा। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, बच्चों के कार्यक्रम, यूथ कार्यक्रम, म्यूजिक, सभी कुछ कार्यक्रमों में मैंने अपना सहयोग दिया। तो बस इतना कहना चाहूंगी कि वहां से आने के बाद फिर मैं आकाशवाणी लखनऊ में मैंने FM शुरुआत की। वहां पे काफी लोग कहते हैं रमा तुमने झंडे गाड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि जो मुझे आता था उसमें मैं लोगों के दिए हुए सहयोग से कुछ अच्छा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी रामपुर, पूरे आकाशवाणी के सभी स्टाफ को, और इतना कहना चाहूंगी कि ये तो मेरे साथ ही जाएगा, मेरे रग रग में, मेरे खून की एक एक बूंद में आकाशवाणी। आप पूछेंगे कैसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे पिताजी भी आकाशवाणी से संबद्ध थे, तो मैं तो पैदा ही उस परिवार में हूँ जहाँ पर आकाशवाणी होती थी, होती है, होती रहेगी। और तलफुज और मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब मैंने रेडियो से सीखा। रेडियो ब्लाइंड मीडिया है, देखिए हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं वो सब हमारे सामने एक पिक्चर की तरह आ जाता है। तो मेरा निवेदन उन सारे लोगों से है जो रेडियो में आना चाहते हैं, ड्रामेटिकली अपनी वॉइस को आप उसमें अच्छे स्वर, और आप सोचेंगे स्वर मतलब मॉड्यूलेशन से मेरा मतलब है अच्छी जुबान, अच्छी भाषा का प्रयोग, क्योंकि देखिए ये एक प्रोफेशन है, तो हमसे बहुत से लोग सीख रहे होते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगी। आकाशवाणी रामपुर में एक प्रोग्राम चल रहा था आपकी फरमाइश, तो एक किस आए, वो कहने लगे कि आप क्या है कि अनाउंसर है, उन्होंने आपकी फरमाइश मेरे नाम को जलील कर दिया और मेरा नाम जलील है। अब देखिए, ये चूंकि मैं तो जानती थी, मैंने कहा मैं माफी चाहती हूँ, ये छोटे नुक्ते मैंने सब रेडियो से सीखे हैं। जलील है, जलील है, गम है, गम है, जिंदगी है, ख्वाब है, ये सब चीजें रेडियो के लिए, किसी भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, किसी भी मीडिया में जाने के लिए, अगर आप अनाउंसर बनना चाहते हैं, अनाउंसर के साथ साथ अगर आप मीडिया कर्मी हैं, तो आपको जरूर जरूर जरूर आना चाहिए ये सारी चीजें, तभी तो आप न्यू कमर्स को सिखा पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे कोई बोलने के लिए कह दे तो मैं कई घंटों बोल सकती हूँ, लेकिन समय का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। मैं तो कहूंगी तुम जियो हजारों साल, इस गाने से मैं अंत करना चाहूंगी। 90 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः अनेकानेक बधाइयां। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, सो हैप्पी 90th एनिवर्सरी।
0: रेडियो केवल एक माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं का वो पुल है जो अनगिनत दिलों को जोड़ता है, और इस पुल की सबसे खूबसूरत कड़ी होती है अनाउंसर। उसकी आवाज़ में अपनापन होता है, शब्दों में मिठास होती है, और अंदाज में ऐसा जादू कि श्रोता अनदेखे चेहरे से भी गहरा रिश्ता बना लेते हैं। अनाउंसर शब्दों का जादूगर होता है। उसकी भाषा सरल एवं सौम्य होती है, लेकिन उसका असर दिल तक उतर जाता है, और वो बिना दिखे लाखों चेहरों पर मुस्कान ला देता है। इन्हीं गुणों के धनी जो हमारे केंद्र पर लंबे समय तक अनाउंसर के रूप में कार्य

0: की आत्मा बोल उठती थी। आज 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा पर आकाशवाणी एक संस्था नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय की यादों, भावनाओं और संस्कारों का जीवंत इतिहास बन चुकी है। एक समय था दोस्तों कि जब गांव के चौपालों से लेकर शहर की बालकनियों तक, घर हो, चाय की दुकान हो या पान की दुकान हो, हर शाम रेडियो के इर्द गिर्द लोग जमा हो जाते थे। हर वर्ग का श्रोता अपनी पसंद के कार्यक्रमों को सुनने के लिए बेताब रहता था। आकाशवाणी की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है उसकी आत्मीयता, शब्दों में अपनापन, उच्चारण में शुद्धता, प्रस्तुति में आकर्षण। उद्घोषक आकाशवाणी की रीढ़ है, उसकी पहचान है। मेरा सौभाग्य है कि मैं सन 1985 से आकाशवाणी अल्मोड़ा से बतौर आकस्मिक उद्घोषक के रूप में जुड़ा। फिर 1995 में आकाशवाणी रामपुर में नियमित उद्घोषक के रूप में मेरा चयन हुआ और 2020 से आकाशवाणी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं बचपन से ही आकाशवाणी के कार्यक्रमों को, खास तौर पर जो फिल्मी गीतों पर मबनी प्रोग्राम होते थे, उनको अक्सर सुना करता था। उस जमाने में मैं केवल दो ही केंद्र के कार्यक्रम ज्यादा सुनता था, एक तो उर्दू सर्विस और दूसरा आकाशवाणी रामपुर। ये आकाशवाणी का कौन सा केंद्र है, बिना मीटर बैंड देखे मैं पहचान जाता था कि आकाशवाणी रामपुर है, क्योंकि रामपुर की जो मखमली आवाज़ें, दिल को छू लेने वाली आवाज़ें, जिनमें जनाब मरहूम मोहम्मद अली मौ साहब, मरहूम विनोदानंद दयाल साहब, मरहूम चंद्रमोहन सक्सेना जी, मरहूम अंजलि वाजपेयी जी, ये वो आवाज़ें थी जिनसे आकाशवाणी जाना गया, पहचाना गया। आकाशवाणी रामपुर ने बीते इन वर्षों में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण धारावाहिकों का निर्माण किया, जिनमें राजूला मालूशाही, जो कि उत्तराखंड के कत्तूर वंश पर आधारित धारावाहिक था, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, ये धारावाहिक जिगर मुरादाबादी के जीवन पर आधारित था, सिमटती बस्तियां, ये बड़ा ऐतिहासिक धारावाहिक था जिसमें थारू और बोक्सा जनजाति पर, उनकी संस्कृति और सभ्यता पर विशेष रूप से तैयार किया गया था। महिला सशक्तिकरण पर एक धारावाहिक तैयार किया था आकाशवाणी रामपुर में हम सब ने, लक्ष्मी, बहुत हिट हुआ, बहुत सराहा गया। एक नाटक गर्ल चाइल्ड पर भी हमने बनाया था जिसे नेशनल अवार्ड भी मिला, ये रामपुर के लिए बहुत बड़ी बात थी। रामपुर आकाशवाणी की सेवा के दौरान मुझे सौभाग्य मिला कि मैं कई महान विभूतियों से मेरी मुलाकात हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनमें मशहूर गीतकार मरहूम गोपाल दास नीरज जी, मरहूम प्रोफेसर शहरयार साहब, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, उनसे साक्षात्कार का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे आकाशवाणी के 90 वर्ष के जश्न का भागीदार बनाया और रामपुर के उन तमाम हिंदी के, उर्दू के साहित्यकारों को, गीतकारों को, गायक कलाकारों को और रामपुर के श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।
1: अनाउंसर वो कलाकार है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि भावनाओं को जीता है। कभी उसकी आवाज़ सुबह की ताजगी बन जाती है तो कभी रात की तन्हाई में सुकून का साथी। वो कोई भी कार्यक्रम सुनवाए या गीतों का परिचय दे, हर शब्द में एक आत्मीयता होती है। उसकी आवाज़ सुनते ही लगता है जैसे कोई अपना हालचाल पूछ रहा हो। आकाशवाणी रामपुर में कार्यरत रहे उद्घोषक के पद पर श्री एस के नोटियाल जी।
2: आकाशवाणी वो नाम जिसकी आवाज़ कानों में पहुंचते ही अपनी ओर खींच लेती है, जिसको आम आदमी रेडियो स्टेशन के नाम से जानता और पहचानता। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम बना आकाशवाणी।

वो स्वर्णिम दौर जब देश की 99% आबादी तक पहुंचती थी आकाशवाणी। श्रोता अपनी पसंद के कार्यक्रम सुनने के लिए अपना ट्रांजिस्टर यानी रेडियो ट्यून करके बैठ जाते थे। एक दौर था जब प्रोग्राम सुनने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। समय परिवर्तन के साथ परिस्थितियां बदलती गई, साथ ही आकाशवाणी ने

एक दौर था जब प्रोग्राम सुनने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। समय परिवर्तन के साथ परिस्थितियां बदलती गई, साथ ही आकाशवाणी ने समय के साथ अपने आप में भी परिवर्तन किया है। डिजिटल दुनिया के

0: हम सबकी आकाशवाणी अपनी उम्र के लंबे पड़ाव में 90 वर्ष की हो जाएगी। सन 1936 में आकाशवाणी ने अपना सफर शुरू किया था। गौर करने की बात है, जब मैंने जन्म लिया तो देश में आकाश 1977 में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, और इसके बाद मेरा सफर जल्दी ही आगे बढ़ा। 1979 में मैं आ गई आकाशवाणी रामपुर में। जानते हैं, लगा मुझे कि आकाशवाणी रामपुर के श्रोताओं ने अपनी पूरी बाहें फैलाकर दिल से मेरा स्वागत किया हो। लेकिन वो दिन भी आ गया जब आकाशवाणी ने मुझे कहा, चलिए बढ़िए आगे, अभी आपका सफर बाकी है। 1979 से लेकर 1988 तक मैं रही राष्ट्रीय प्रसारण सेवा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रसारण सेवा में मेरा सौभाग्य था कि प्रथम प्रसारण में मेरी ही आवाज़ आकाशवाणी पर तैरी और जन जन तक पहुंची। बात करूं आकाशवाणी रामपुर की, तो 1979 से 1988 तक आकाशवाणी रामपुर से मैंने अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जो भी उस समय कार्यक्रम होते थे, फरमाइशी हो, उर्दू मैगजीन हो, हिंदी के प्रोग्राम्स हो, बहनों के कार्यक्रम हो, समय समय पर होने वाले विशेष कार्यक्रम हो, फीचर हो, बहुत सारे नाटकों में मैंने अपनी भूमिकाएं अदा की। लेकिन यहाँ मैं उन साथियों को भी याद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया। यहाँ मैं अपने उन साथियों को याद करना चाहूँगी जिनके साथ मैंने अनेकों अनेक प्रोग्राम किए। श्री विनोद आनंदयाल साहब, श्रीमती अंजलि बाजपेयी जी, मोहम्मद अली मौज साहब और चंद्रमोहन सक्सेना जी, इन सबकी आवाज़ों में एक अलग अलग खूबसूरती थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि इनमें से जब भी मैं किसी के साथ कोई प्रोग्राम पेश करती थी तो पिघली हुई मोम की तरह मेरी आवाज़ इनकी आवाज़ में समाहित हो जाती थी, और वही आकर्षण का एक केंद्र बनता था श्रोताओं के लिए। चलिए लौटते हैं अतीत की यादों से, और सामने जो खड़ा है खुशी से उसका स्वागत करते हैं। 8 जून 2026 में हमारी प्यारी आकाशवाणी अपने अद्भुत प्रसारण के 90 वर्ष पूरे करेगी। इस उपलक्ष्य में मैं आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं को बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। चलते चलते बस एक कसक जो दिल में रह गई है वो आपसे बांटना चाहती हूँ। जब तक मैं आकाशवाणी रामपुर में रही, वहाँ पर आज की टेक्नोलॉजी के कार्यक्रम नहीं होते थे, फोन इन कार्यक्रम था ही नहीं। अगर फोन इन कार्यक्रम होता तो श्रोताओं, सच कहती हूँ, आपकी यादों के साथ आपकी आवाज़ें भी मेरे दिल की आकाशवाणी में महफूज होती।
1: प्रस्तुतकर्ता की भूमिका एक पुल की तरह है जो जटिल शास्त्रीय संगीत कलाओं को आम जनता की समझ के अनुकूल बनाकर पेश करता है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी पर केंद्र निदेशक के पद पर कार्यरत रहे श्री कृष्ण गोपाल सिन्हा।
2: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, आकाशवाणी से जुड़े सभी कलाकारों, वार्ताकारों और कर्मियों को अपनी शुभकामना देता हूँ। आकाशवाणी से जुड़े होने के नाते इतनी स्मृतियाँ हैं, इतने संस्मरण हैं, इतनी यादें हैं जिन्हें सहेजना और व्यक्त करना थोड़ा कठिन लग रहा है। पल पल की बातें पूरी तरह याद हैं, विचलित नहीं होता, फिर भी उन्हें सहेजना और समेटना थोड़ा मुश्किल लगता है। 1971 से लेकर 2005 तक

0: सालों की सेवा में जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने पाया, जो मैंने अर्जित किया, अपने वरिष्ठतम अधिकारियों से, सहकर्मियों से, लोगों से, कलाकारों से, कवियों से, शायरों से, जो भी केंद्र से जुड़े हुए लोग रहे, उनके प्रति मेरा संस्मरण बिल्कुल जीवंत है और मैं सबके साथ आज भी महसूस करता हूँ। पूरे 10 केंद्रों पर मैं रहा। शुरुआत मैंने आकाशवाणी चंडीगढ़ से किया, उसके बाद मैं रोहतक आया, रोहतक से जयपुर गया, जयपुर से 1983 में मैं रामपुर आया, रामपुर से 89 में मैं रांची गया, रांची से फिर मैं सासाराम आया, सासाराम से बरेली आया, बरेली में 2 या 3 बार रहा, फिर मैं इस बीच नजीबाबाद गया, मेरा स्थानांतरण दिल्ली भी हुआ और फिर मुझे दिल्ली से बरेली आने का मौका मिला और बरेली से ही मैं नया अवकाश प्राप्त किया। एक बड़ी सुखद अनुभूति रही, अनुभव रहा, इतने सारे विभाग, इतने सारे लोग, इतने सारे क्षेत्र, इतनी सारी विधाएं, इतनी सारी कलाएं, इन सारों का एक साथ जो है वो उन्हें महसूस करना और बताना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। खैर, ये हमारे जो साथी थे और हैं, उनका सहयोग, उनका सौहार्द और अपने वरिष्ठतम निदेशकों, उपमहानिदेशक, निदेशक, महानिदेशक, इन सबकी कृपा का मैं पात्र भी रहा। कोई कठिनाई नहीं आई, अनुभव बहुत हुए। 1971 में जब मैंने चंडीगढ़ में सेवा पर मैं पहुंचा, 71 में ही दिसंबर के महीने में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जो बांग्लादेश की मुक्ति का कारण बना और 16 या 17 दिसंबर को वो युद्ध समाप्त हुआ। सेवा में आए अभी 6 महीने ही हुए थे, मुझे अवसर मिला इन सारी परिस्थितियों में काम करने का और जो भी मेरे वरिष्ठतम अधिकारियों ने मुझे कार्य सौंपा, मैंने पूरी कोशिश की कि उसे अच्छी तरह संपन्न करूं। मुझे चंडीगढ़ के बाद रोहतक आया, मैं रोहतक नया केंद्र था, पूरे हरियाणा के कवरेज का अनुभव हुआ, नया स्टाफ, नए निदेशक और उसके बाद मैं यहाँ से पदोन्नत होकर मैं जयपुर गया। जयपुर का भी मेरा स्टे वहाँ पर 81 में गया था और 83 के मई महीने में मैं रामपुर स्थानांतरित होकर आया। रामपुर में 2-3 बार रहा, रामपुर से रांची गया, रांची से एक बार फिर 2008 में नजीबाबाद से मैं रामपुर के निदेशक के पद पर आया और वहीं से मैं दिल्ली के लिए स्थानांतरित हुआ। 4 साल बाद दिल्ली ने फिर मेरे ऊपर अनुकंपा की और मुझे बरेली, जहाँ मेरा परिवार था, वहाँ मुझे स्थानांतरित किया और मैं सपरिवार, सकुशल, पूरे अनुभव के साथ, हर तरह से खुश, अभिभूत, वहाँ से कार्यमुक्त हुआ और अंततः मैं लखनऊ जाकर मैं वहाँ स्थायी रूप से बस गया। जो इस 35 साल में मैंने अनुभव किया, उसमें इतनी संस्थाएं, इतनी विधाएं, इतनी कलाएं, इतने लोग, इतनी विभूतियां, इतने अधिकारी, ये सारों से जो जुड़ाव रहा वो अद्भुत रहा। एक बार फिर से मैं खास तौर से आकाशवाणी रामपुर के सभी श्रोताओं के साथ, सभी कलाकारों, कवियों, शायरों, लेखकों और सम्मानित सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें अच्छे भविष्य की उनके लिए मैं कामना करता हूं।
1: 1957 में जन्म हुआ विविध भारती का। यहां प्रस्तुतकर्ताओं ने एक नया ही रूप लिया, वो अब थोड़े अनौपचारिक, थोड़े चुलबुले और श्रोताओं के दोस्त बन गए। अमीन सयानी की वो जादुई आवाज, बहनों और भाइयों, जिसने बिनाका गीतमाला के जरिए रेडियो को हर युवा की धड़कन बना दिया। हवा महल के नाटकों में आवाज के जादूगरों ने बिना किसी सेट और कॉस्ट्यूम के केवल अपने स्वर अभिनय से श्रोताओं को हंसाया तो कभी रुलाया। कृषि दर्शन और देहाती प्रोग्राम में प्रस्तुतकर्ताओं ने खुद को चौपाल के मुखिया की तरह ढाला ताकि वे किसानों से उनकी अपनी बोली और भाषा में बात कर सके। इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर पे कार्यक्रम अधिशासी के रूप में कार्यरत रहे श्री राम स्वरूप गंगवार जी।
2: मैं राम स्वरूप गंगवार, सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिकारी। मैंने 1977 के 15

0: दिसंबर से सेवाएं शुरू की थी। उस समय हमारे आकाशवाणी की बड़ी मान्यता थी, बहुत लोग सुनते थे, और उस समय का जो कृषियत कार्यक्रम होता था उसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसकी एक वजह थी कि आज किसान के पास कोई और ऐसा माध्यम नहीं था जो उनको खेती की नई नई जानकारी दे सके, सूचना उपलब्ध करा सके। ऐसे में आकाशवाणी ही एक माध्यम था। उस समय हम किसानों के बीच जाते थे, किसान हमारे पास आके बैठते थे, काफ़ी बातें करते थे, उनको कोई चीज़ बताते थे तो वो तुरंत उसको अपनाते थे। अगर हम ये कहें कि आकाशवाणी की देन ये थी कि हरित क्रांति को फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1964 में जब हरित क्रांति आई, देश में खाद्यान्न का संकट था, नई नई प्रजातियाँ आईं, उनकी खेती के बारे में हमने किसानों को बताया और किसानों ने उस तकनीक को अपनाया। मुझे याद है कि बहुत पहले गेहूं की एक वैरायटी आई थी जो कि विदेश से आयातित की गई थी, उसका नाम था लर्मा राजू, और एक अन्य वैरायटी उसी के साथ आई थी सोनोरा 64। उस समय गेहूं की जो दाना होता था वो लाल रंग का होता था, रोटी कुछ कड़ी होती थी, उपभोक्ता उसको कम पसंद करते थे। जब जर्म प्लाज इन दोनों वैरायटियों का हमारे वैज्ञानिकों को मिला, तब उन्होंने संशोधन किया और गेहूं का रंग पहले लाल से उन्होंने भूरा सा कर लिया और उससे उत्पादन अच्छी तरह मिलता रहा। हाँ, पहले जो वैरायटी आई थी नई नई विदेश से, उनकी एक खासियत थी कि उनकी जड़ें काफ़ी फैलती थी, नीचे तक जाती थी, और वो जड़ें जो हैं वो पोषक तत्व ज़मीन से ज़्यादा लेती थी, और पौधे जो हैं वो जड़ों की वजह से स्थिर रहते थे, गिरने की समस्या नहीं थी, ऊंचाई भी थोड़ी कम थी। हम इन वैरायटियों के प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव जाते थे। किसान उस समय बीज कम था तो डिबलर विधि से एक एक दाना करके खेत में बोते थे, उससे बहुत ब्यांत होते थे, बड़ी बम्पर पैदावार मिलती थी, पानी एक दो लगा लेते थे। तो हुआ ये कि धीरे धीरे धीरे धीरे किसानों ने देसी प्रजातियाँ गेहूँ की बोना बंद कर दी और फिर गेहूँ की पैदावार इतनी कर दी कि हमारे गोदामों में आज रखने की जगह नहीं है। इसी तरह चावल की नई नई प्रजातियाँ आईं जिनका प्रचार प्रसार हमने गांव-गांव जाकर किया। एक पुरानी बहुत प्रजाति थी जो विदेश से आयातित थी, उसका नाम था टाइचुंग नेटिव वन, ये जापानी प्रजाति थी। तो इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी और विपरीत परिस्थितियों में भी ये हमारे यहाँ अच्छी पैदावार देने लगा। धान की जापानी विधि से रोपाई, जिसको आज हम रोपाई विधि से धान कहते हैं, इस पद्धति को भी रेडियो ने जन जन तक पहुँचाया। तो इसका सबका श्रेय आकाशवाणी को ही जाता है। आकाशवाणी में निरंतर पिछले विगत बहुत वर्षों से लगातार उन्नति की है। किसानों को मनोरंजन के लिए हमने लोक संगीत को घर घर तक पहुंचाया। रेडियो ने इतनी ख्याति दे दी थी हम लोगों को कि हम कुछ लोग तो हमको जो है वो तमाम तरह के नामों से जानते थे, देखने को लालायित रहते थे। वो ज़माना था आकाशवाणी का। आज भी कृषि के क्षेत्र में आकाशवाणी का अतुलनीय योगदान है। लोग आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।
1: आज जब हम 2026 में बैठे हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, हमें गर्व होता है। आज के प्रसारक केवल स्टूडियो तक सीमित नहीं हैं, वे पॉडकास्ट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर लाइव जा रहे हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया भर के लोगों से जुड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर पर केंद्र निदेशक के पद पर कार्यरत रहे श्री सरवत उस्मानी जी।
2: मैं सरवत उस्मानी आकाशवाणी रामपुर में स्टेशन डायरेक्टर रहा, और भी कई मकामात पर मेरी पोस्टिंग रही, थोड़ा बहुत तजर्बा मैंने भी हासिल किया है। इस मौके पर आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे कर रहा है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। सभी श्रोताओं को, सभी कर्मचारियों को, सभी ऑफिशल्स को मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग इसी तरह तरक्की करते रहें। ये सच है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में थोड़ा रेडियो की लिसनिंग पे फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, लेकिन मैं

0: जो लोग रेडियो की इफादियत अहमियत को आज भी समझते हैं, आज भी जानने की कोशिश करते हैं, तो वो इस बात पर यकीन ज़रूर करेंगे कि इसकी एक अपनी अहमियत है रेडियो की। रेडियो बहुत हद तक अपनी गरिमा के अंदर काम करता है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि वो रेडियो सुने, कम वक्त में अच्छी मालूमात, वैरायटी बहुत है। आप किसान का प्रोग्राम सुनना चाहें, किसान का, बच्चे अपना सुनना चाहें, बच्चों का, जवान अपना सुनना चाहें, जवानों का, हर तरह के, हर तबके का मटेरियल उस पर मौजूद है, वो सुन सकते हैं। यहाँ तक कि गृहिणी जो किचन में काम करती हैं, वो भी रेडियो सुनकर बहुत सी चीज़ें सीख सकती हैं। सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी बात लगती है रेडियो की, आकाशवाणी की, ये लोगों में संस्कार पैदा करता है, जो संस्कार की आजकल बेहद कमी है, बहुत कम, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बहुत कम आजकल इस तरफ तवज्जो दी जा रही है। संस्कार की एक अपनी अहमियत है जो ना हमें किताबों से मिल सकती, ना हमें तकारीर से मिल सकती। अब रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हमें जानकारी भी देता है, हमारी सेहत के बारे में भी चिंतित है, जो हमारे संस्कारों के बारे में भी चिंतित है, जो हमारे रोज़मर्रा के किचन के में पकने वाले खानों के बारे में भी चिंतित है, जो हमें कानूनी सलाह भी देता है, जो हमें बताता है कि हम जिंदगी को कैसे जिए, अपने बड़ों का आदर कैसे करें, इंटरटेनमेंट भी इस कदर कराता है हमारा। और बहुत ही, मतलब ये कि एक जब जी चाहे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आप काम करते वक्त भी इसे सुन सकते हैं। तो ऐसा माध्यम है रेडियो जो हमारा वक्त बहुत बचाता है और हमें बहुत कुछ कम समय में बहुत कुछ देकर जाता है। मेरी पोस्टिंग थी, मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ, दिल्ली में थी, तो दिल्ली में गुजरात से दो साहब आए, काफ़ी पैसे वाले थे, आके मेरे कमरे में बैठे, तो मैंने उन्हें समय भी दिया, बताने लगे कि भाई रेडियो सुनता हूँ मैं, बहुत बड़ा दीवाना हूँ रेडियो का, और मेरे घर में हर चीज़ है, सीडी भी है, सीडी प्लेयर है, गानों का ये भी है, वो भी है, सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध हैं, लेकिन मैं रेडियो सुना करता हूँ। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है आप सुनते हैं, ये हमारे फख्र की बात है। बस उन्होंने ये कहा कि मुझसे कि गुजरात में हमें रेडियो साफ नहीं सुनाई दे रहा, तो इसका टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ज़रा आप इसको देखें। मैंने कहा वैसे तो मैं प्रोग्राम का आदमी हूँ, लेकिन आपकी शिकायत ज़रूर टेक्निकल स्टाफ तक पहुंचा दूंगा। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा, कम से कम आप यहाँ चल के आए, और अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो गई, अपने लिसनर से एक मुलाकात हो गई इस बहाने, लेकिन आप मुझे ख़त भी लिख सकते थे। और आप रेडियो सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये इस दौर में भी बहुत दीवाने हैं, और बहुत से लोग लिखते नहीं लेकिन रेडियो सुनते हैं। 90 साल हो गए ऊपर वाला रेडियो को ऐसे जीवित रखे।
1: जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों के मील के पत्थरों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि आकाशवाणी केवल एक ट्रांसमिशन टावर नहीं है, ये उन हजार प्रस्तुतकर्ताओं, उद्घोषकों, समाचार वाचकों और प्रसारकों का पसीना, उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ की तपस्या है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर करुणा शंकर दुबे।
2: मैं चूंकि बहुत दर्शन का विद्यार्थी था, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी था, क्योंकि मैं वैदिक संस्कृत का और लौकिक संस्कृत का विद्यार्थी था, मैं हिंदी का भी विद्यार्थी था, तो मेरे साथ दो तीन भाषाएं अपने आप से पारंपरिक रूप से प्राप्त थी। और मैं बनारस का था, तो बनारस में एक गंगा जमुनी तहजीब है, तो मैं उस तहजीब का था। और रामपुर अपने आप में एक अलग तरह का शहर है। रामपुर समझिए कि सारे नवाबों की के नवाब की का शहर है। वहां पर सारे नवाब जो है, देश के सारे नवाब, उनका जो है जो सबसे बड़ा नवाब है वो वहां रहता है। तो मुझे उस मान मर्यादा को भी बना करके रखना था, तो उस मान मर्यादा के ध्यान में रखते हुए मैंने जो है सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कोई चीज छूट न जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसी गंगा जमुनी तहजीब, क्योंकि कोसी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ से उतरती है, मैदान में आती है और राम की गंगा बहती है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ गंगा राम गंगा है, जो निकलती है तो बरेली तक चली जाती है। तो और रामपुर एक आकाशवाणी ऐसी है जो किसी जमाने में पहाड़ के क्षेत्र में भी बहती थी, मैंने सुनाई पड़ती थी, समझ लीजिए कि कुमाऊं मंडल में भी उसका प्रसारण क्षेत्र था, और उसका प्रसारण

0: क्षेत्र पूरे मैदान तक था, सबसे बड़ा क्षेत्र था। देश की आजादी से पहले अगर हम बात करें तो उसका प्रसारण क्षेत्र बहुत बड़ा था, क्योंकि तो मैं लखनऊ से आया था तो मुझे मालूम था कि रामपुर कितना बड़ा क्षेत्र था। एक जमाना था कि आकाशवाणी लखनऊ में जो प्रसारण होता था उसमें रामपुर का योगदान जो है हर हफ्ते नियमित रूप से उर्दू के कार्यक्रम नियमित रूप से आते रहे, क्योंकि रामपुर की जो भाषाई संस्कृति है वो अलग तरह की थी। रामपुर तो अपने आप में वो अपने माम के बागों के लिए जितना मशहूर है उतना ही हमारे जो आकाशवाणी के बागवान हैं उन लोगों ने भी उमदा किस्म के मीठे प्रोग्राम दिए हैं, ये रामपुर की उपलब्धि है।
1: 90 साल, एक लंबा सफर, कई आवाजें इस सफर में हमारे साथ जुड़ी तो कई आवाजें समय के साथ शांत हो गई, लेकिन उनका असर, उनकी वह आत्मीय स्पर्श आज भी हमारे दिलों में बसा है। उन तमाम अनाउंसर्स, प्रोड्यूसर्स और प्रसारकों को आज हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल उन बंद साउंड प्रूफ स्टूडियोज में गुजार दिए, ताकि बाहर की दुनिया तक एक खूबसूरत और भरोसेमंद आवाज पहुंच सके। और सबसे बड़ा शुक्रिया आपको, हमारे श्रोताओं को, आपके प्यार ने, आपकी फरमाइशों ने और आपके इस अटूट विश्वास ने ही प्रस्तुतकर्ताओं को जीवंत रखा है और आकाशवाणी को भारत की आवाज बनाए रखा है। ये 90 वर्ष का पड़ाव एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब तक हवाओं का वजूद है तब तक आवाजों का सफर और हमारे प्रसारकों का आपसे ये संवाद जारी रहेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर के अंतर्गत आकाशवाणी आवाजों में बसी यादें। दोपहर के 12

0: गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ सूचनाएं खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में, पर आइए उससे पहले सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
4: चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
4: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। PNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
5: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग।

0: many other exciting benefits.
1: Aaj hi visit karein apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate karein. TNC apply.
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हमारी पहली सूचना है प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि विद्याराम पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद निवासी सुनवर सराय थाना धनारी जनपद संभल विगत 25/7/2025 से लापता हैं। इनकी उम्र 75 वर्ष, रंग गोरा, कद 4 फीट और चेहरा लंबा है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना धनारी जिला संभल मोबाइल नंबर 7310890172। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7310890172।

हमारी अगली सूचना है जिसमें प्रभारी निरीक्षक थाना असमोली जिला संभल हमें सूचित करते हैं कि शाइस्ता पत्नी मोहम्मद शफीक निवासी ग्राम ओबरी थाना असमोली जिला संभल विगत 4/5/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष है। इनका रंग गोरा है व कद 5 फीट है और इनका चेहरा सामान्य है। यदि किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई जानकारी हो अथवा सूचना प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी निरीक्षक थाना असमोली जिला संभल मोबाइल नंबर 9897720255। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 9897720255। सूचना समाप्त हुई।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजी गई गीतों की फरमाइशें और आपके प्यारे संदेश। तो हो जाइए तैयार सुरीले नगमों, मधुर यादों और बेहतरीन संगीत के इस खूबसूरत सफ़र के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोताओं ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है।

हमारे पहले श्रोता हैं गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से, करणवीर हाउस पूछो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत। अगले हमारे श्रोता साथी हैं पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। इसी के साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जौहरी। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती कंचन सुमन प्राची और प्रवीण पुजारी। शिवाजी चौक कटनी से अनिल अमर दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण कनौजिया पवन यादव संजीव वर्मा सुनील जैन रज्जन रजक लालू सोना मोना हनी यश और उनके मम्मी पापा। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शेब खान। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दूत का कर्ज का ये गीत जिसको अपनी आवाज़ दी है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, और कार्यक्रम के अंतर्गत अगली फरमाइश आई है पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत और चेतन भगत। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कार्तिक अरोड़ा, भूमि अरोड़ा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई अंसारी, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन। ग्राम पंजौनी जिला जलौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अलाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। सरजू मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और डब्लू थापा। जोधपुर राजस्थान रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गार्वी, बेबी बॉय हिमांश। ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अनु मलिक की आवाज़ में फिल्म बाजीगर का ये प्यारा सा नगमा।

इसी के साथ अगले गीत की फरमाइश आई है फिल्म मन से, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में, और फरमाइश करता है आप सभी सनावत से शेख मूसा मोहसिन, मुताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला गौरी सुरलकर, दुर्गा कॉलोनी हंसी से राजू बबीता सुभाष बबलू और डब्लू, महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शुभप्ताई मानकर दिलीप और श्लोक कुमार, इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेद कुमार, चंडीगढ़ सिटी से सतीश सनेजा और बिमला अनेजा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद साहिबा और जनैब, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम दामोदरे, जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक आदित्य कसाना और लदावली, छबीलपुर उत्तर प्रदेश से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप और गायत्री कश्यप, दत्रेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल दिव्यांशी, मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गवणकर, श्रीमती सरिता प्रिंस, बदलापुर मुंबई से प्रणीता सिद्धांत अर्जुन, बहादुर नागापुर से वैशाली शैलेंद्र गवणकर, सुमित गवणकर और कुमारी ध्वनि गवणकर, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई सूफिया अनस आयजा और अल्फिया, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया, ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु खुराना, आप सभी की फरमाइश पे आइए सुनते हैं फिल्म मन का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, हम कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत आपके नाम। कार्यक्रम में अगला गीत के लिए फरमाइश की है वाडी खामगांव से अनंत वाडे रामेश्वर वाडे शुभम साक्षी खुशी और समस्त वाडे परिवार। भोपालगढ़ राजस्थान से ईशान पूजा और कपिल। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल आशा सपकाल सोनिया सपकाल साईराज सपकाल और विशाल सपकाल। मोहल्ला बरादरी महमूद खां रामपुर से भाई रफत साहब सईद भाई मंसूरी राशिद भाई मंसूरी फौजिया रोशनी साइना काजल असद भाई फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां रजिया खान सिमरन खान संदीप सक्सेना रूमा खान मादिहा खान सुभान खां और फिरोज खां। गणेशपुर गजडूंडावारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख शेख शमा परवीन साइमा फारूक सर फराज शेख गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान। बरेली कैंट चेनहटी उत्तर प्रदेश से विनीत कुमार और रांगनी श्रीवास्तव व उनकी बेटी मुस्कान। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साजन का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। फरमाइश करता है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान डुग्गू। अहमदपुर खगाव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली और वैदिक फूलमाली। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया। मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई। चंडीगढ़ से शैफाली, सैफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। साहूनगर यवतमाल से राहुल, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और बेबी प्रियांशी। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। प्रताप जिनागढ़ से इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण। संस्कृति और पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कम्बल। बक्सा बिहार से सराफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरी रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम आबिदा और शान अंसारी। गोला बाजार बक्सा से श्रद्धा नंद आर्या, अभयनंद आर्या और परमानंद आर्या। सारिमपुर बक्सा से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। ग्रामा पोस्ट मुंगीसपुर कानपुर देहात से रामेश कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या। आइए आप सभी की फरमाइश पे सुनते हैं गीत आपके नाम का ये अंतिम नगमा। फिल्म अमर प्रेम से और आवाज़ दी है किशोर जी ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का

0: सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गयी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीने वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे। धरती गाती है के अंतर्गत कुछ लोकगीत, कलाकार रहेंगी शमा जौहरी। वहीं 1:30 पर आप तक पहुंचेगा कार्यक्रम आंचल, इसमें चर्चा का विषय होगा छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक 2:30 पर आप सुनेंगे सुनहरा दौर के अंतर्गत आज 60 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

करेंगे कृषि जगह जिसमें सानी रहेंगी हेमलता और ममता। चर्चा का विषय होगा हीट वेव से बचाव हेतु सावधानियां। ठीक 7 बजे आप तक कार्यक्रम पहुंचेगा विविधा, जिसमें वार्ता रहेगी आज की युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी संस्कृति का संरक्षण। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे ठीक 7:31 पर। कलाकार रहेंगी रीता शर्मा। कार्यक्रम गीत गाता चल आप तक पहुंचेगा ठीक 8:00। सबरस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रमेश रावत द्वारा गाए कुछ लोकगीत। और 10:00 आप तक पहुंचेगा आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम यानी हेलो रामपुर।

0: ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा, आइए सुनते हैं अब एक जरूरी संदेश।
1: आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
4: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
3: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत देश।

0: जय हो।
1: हमारा अभिमान है
2: हमारी एकता,
1: हमारा मान है
2: हमारी सांप्रदायिक सौहार्दता,
1: हमारी शान है
2: इस एकता की सुदृढ़ता।
1: आइए हम सब मिलकर सच्चे भारतीय बने।
0: ज्योतिमय शुभ देश जय हो।
3: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है।
4: मीडिया वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का रामपुर केंद्र। 1:10 हुए हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे लखनऊ केंद्र से।
5: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने लखनऊ मेट्रोलॉजिकल सेंटर को रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे लखनऊ मरकज को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अख्तियार मिल जाएगा। लखनऊ में मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। प्रोग्राम को खिताब करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में जितनी तरक्की वजीर आजम के दौरे इक्तदार में हुई है कभी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 2014 तक सिर्फ 17 मौसम राडार थे, अब 50 हो गए हैं। आइंदा 2 वर्षों में 2 और जुड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि RMC का दर्जा गंगा के मैदानी इलाकों तक ज्यादा रसाई फराहम करेगा। RMC का ओहदा उत्तराखंड के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में मौसम की निगरानी, दुरुस्त पेशनगोई और बरवक्त कबल अज वक्त वार्निंग खिदमात को मजीद मजबूत करेगा। इससे भारी बारिश, गरज चमक, बिजली गिरने और मौसम से मुतालिक दीगर वाकयात के लिए बेहतर तैयारी मुमकिन होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के बराह रास्त भर्ती 2025 का तहरीरी इम्तिहान आज सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुआ। इम्तिहान 8, 9 और 10 जून 2026 को रियासत के तमाम 75 इजला में मुनक़िद होगा। भर्ती के अमल के तहत 72,679 असामियों के लिए 28,00,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। इम्तिहान के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वजीर आला की हिदायत के मुताबिक इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सफर के दौरान किरायों में 50% रियायत फराहम की जा रही है। इम्तिहान रोजाना 2 मरहलों में लिया जाएगा। पहला मरहला सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरा मरहला दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड डायरेक्टर जनरल SB शिरोडकर ने कहा कि दरखास्त दहिंदगान की बड़ी तादाद को देखते हुए हर शिफ्ट में तकरीबन 4,81,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया महकमे पुलिस और जिला हुकाम की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम इम्तिहान मराकज की कड़ी निगरानी की जा रही है। CCTV निगरानी के निजाम नस्ब किया गया और मराकज पर मुस्तकिल मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजर्स और पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में उम्मीदवारों को नेक ख्वाहिशात दी हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम के नाम पाती में लिखा कि सनातन सकाफत में फितरत में मौजूद हर जानदार चीज को तख्लीक का अटूट हिस्सा समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हयातियाती तनु के तहफ्फुज़ की कोशिशें उसी वक्त कामयाब होगी जब अवामी शराकत बढ़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रियासत के बाशिंदों से खिताब करते हुए वजीर आला ने उन पर जोर दिया कि वो फितरत को न सिर्फ सयाहों के तौर पर बल्कि तालिब इल्मों के तौर पर दरियाफ्त करें, अपने तजुर्बात को व्लॉग्स और मजामीन के जरिए शेयर करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक दीगर सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वजीर आजम की क्यादत में बेमिसाल 12 साल जिसमें हिंदुस्तान में लाखों महरूम खानदानों की जिंदगियों में इज्जत, सलामती और एतमाद की शानदार दास्तान है। उन्होंने लिखा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद को मजबूत करने वाला ये 12 साल का सफर सिर्फ स्कीमों का सफर नहीं है बल्कि घरों का सफर है जहां पहली बार सहूलियात पहुंची। इन खानदानों का सफर है जिन्होंने पहली बार महसूस किया कि हुकूमत उनकी दहलीज पर पहुंच गई है। उन्होंने इन तारीखी 12 बरसों के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2026 की मुख्तलिफ निकात का जायजा लिया और जरूरी हिदायत जारी की। पेश है एक रिपोर्ट।
6: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
5: मुल्क का काबिल एतमाद अवामी नशियाती इदारा ऑल इंडिया रेडियो आज अपना 90वीं सालगिरह मना रहा है। आज के दिन 1936 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशन चलाता है। नशियात 23 जबानों और 146 बोलियों में नशर की जाती है। आकाशवाणी का नारा है अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम की खुशी के लिए, यानी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। समय है 1:15 और अब प्रस्तुत है शमा जौहरी द्वारा गाए कुछ लोकगीत।

0: पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए अगली प्रस्तुति।
1: अभी आप सुन रहे थे शमा जौहरी द्वारा गाए कुछ लोकगीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आंचल और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही हैं मीना।

नमस्कार सखियों, आप सुन रही हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आंचल और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना। बहनों, आज के कार्यक्रम में चर्चा को विषय आएगा छोटा परिवार सुखी परिवार, साथ ही साथ वार्ता सुनवाई जाएगी, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम भी सुनवाओ जाएगा और मनोरंजन लोकगीत से कराओ जाएगा। बहनों, आज हम बात करेंगे कि छोटो परिवार क्यों जरूरी ही है, इसके काका का लाभ हैं और कैसे ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। बहनों, हम आपको बता दें कि छोटो परिवार को का अर्थ होता है। बहनों, छोटो परिवार में पति पत्नी और एक दो बच्चे होते हैं। ऐसे परिवार जहां माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर पूरा ध्यान दे सकते हैं, इसे हम आदर्श परिवार भी कहते हैं। बहनों, आज के समय में इलाज, भोजन, कपड़े और घर की ज़रूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में परिवार छोटो होएगो तो हर सदस्य अपनी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सकता है। जब छोटो परिवार होता है तो माता पिता बच्चों को पढ़ाई अच्छे से करा लेते हैं और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं, वे अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। बहनों, बड़े परिवार होने पर अक्सर बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट जाता है या संसाधनों की कमी हो जाता है। छोटे परिवार में माता और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। छोटे परिवार के सदस्य त्योहारों और अन्य अवसरों को

0: भरपूर आनंद ले सकते हैं। बहनों, बड़े परिवार की तुलना में छोटो परिवार के कई सारे लाभ हैं, लेकिन जाको मतलब जो ना है कि बड़े परिवार में रहना नुकसानदायक होता है। बहनों, बड़े परिवार के अपने ही फायदे हैं। बहनों, छोटे परिवार में अच्छी बचत हो जाता है क्योंकि आमदनी अधिक और खर्चे कम होते हैं, इसलिए बहे खुशियों को अपनी खुशियों को अच्छे ढंग से और प्रेम पूर्वक मना लेते हैं। बहनों, छोटो परिवार घर और बाहर की चीज़ों को बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकता है और इससे छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसलिए जो एक छोटो परिवार बाइक या छोटी कारों में सफ़र कर सकता है, जबकि बड़े परिवार को बाहर जाने के लिए परिवहन में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। बहनों, कह सकते हैं कि एक छोटे परिवार के लिए सभी अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं। बहनों, छोटो परिवार बनने में परिवार नियोजन बड़ा सहायक है, इसलिए सरकार परिवार को खूब बढ़ावा दे रही है। वास्तव में छोटो परिवार बड़े परिवार की तुलना में सुखी है। बहनों, छोटे परिवार के सदस्य पौष्टिक भोजन और अच्छे मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे अस्पताल में इलाज भी करा सकते हैं। बहनों, छोटे परिवार में 3-4 सदस्य होते हैं, इसलिए बच्चों को पालन पोषण, भोजन, कपड़ा और अन्य सुविधाएं आसानी से हो जाता है और मनपसंद पढ़ाई करने को मिल जाता है। बहनों, छोटे परिवार में जिम्मेदारियों को लेकर कोई कलह कलेश ना होता। छोटे परिवार के पास अनेक परिवार के सदस्य के लिए, यानी कि अपने परिवार के सदस्य के लिए उन्हें स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करने के लिए पर्याप्त बचत होती है। बहनों, कुछ नुकसान के बावजूद भी एक छोटो परिवार वास्तव में खुशहाल परिवार है। बहनों, अंत में कह सकते हैं, छोटो परिवार अपनाएं, स्वस्थ, शिक्षित और खुशहाल जीवन बनाएं। छोटा परिवार, सुखी परिवार, यही है खुशियों का आधार। बहनों, जो तो बात रही छोटे परिवार की और सुखी परिवार की, बहनों अब वो सुनवाते हैं वार्ता, जिसको विषय है ग्रामीण महिलाओं में शैक्षिक विकास। वार्ताकार हैं सुनीता देवी, तो सुनते हैं जो वार्ता।
1: भारत को गांवों का देश माना जाता है, अतः भारत के विकास हेतु आवश्यक है कि गांवों का भी संपूर्ण विकास हो। ग्रामीण विकास की परिधि में सर्वप्रथम गांव में शिक्षा, महिला शिक्षा एवं उसके बाद संस्कृति, कला कौशल, चिकित्सा, सामुदायिक विकास, कृषि, सामाजिक सुधार, पशुपालन, उद्योग धंधे, रोजगार का विस्तार, पेयजल, विद्युत की सुविधा तथा संचार व्यवस्था का विस्तार आदि चीजें आती हैं। शिक्षा से ही महिला आत्मनिर्भरता तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। गांधी जी महिलाओं की शिक्षा के घोर समर्थक थे। वे कहा करते थे कि एक पुरुष पढ़ता है तो मात्र पुरुष पढ़ता है, परंतु एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार और पूरा समाज पढ़ता है। भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता से कौन परिचित नहीं है। इसमें भगवान शिव को अर्धनारीश्वर बताया गया है। यह पौराणिक प्रतिपादन समग्र समाज में महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी की मान्यता, भावना एवं सिद्धांत की पुष्टि करता है। श्रेष्ठ तथा धार्मिक कार्य के समय भी महिला को पुरुष के दाहिनी ओर बैठाने की परंपरा के पीछे भी महिलाओं को श्रेष्ठ कार्यों में प्राथमिकता देने का विचार निहित है। रामायण में प्रसंग आता है कि राजसूय यज्ञ के समय जब सीता जी राम जी के समक्ष नहीं थे, तो यज्ञ को फलीभूत करने हेतु सीता की स्वर्ण प्रतिमा उनके बाएं ओर स्थापित की गई थी। यह प्रसंग महिला की महत्ता की ओर इशारा करने के साथ साथ समग्र विकास में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी की आवश्यकता पर भी बल देता है। एक दूसरे के पूरक होते हुए नर नारी की समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी है। इसी संकल्पना पर विचार करते हुए ग्रामीण विकास में भी महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की तीव्र आवश्यकता अनुभव की जा रही है। देश में महिलाओं की बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर उनकी भागीदारी देश के विकास में न हो, तो इस जनसंख्या को उचित अवसर प्राप्त नहीं होगा। इस विशाल जनशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए ग्रामीण महिलाओं के लिए महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी गई है। ग्रामीण इलाकों में हमने अधिक

अंश महिलाओं को बहन, माँ, पत्नी, बेटी आदि विभिन्न रूपों में देखा है। ये सभी हर समय परिवार के मान सम्मान के लिए कुछ भी कर सकने के लिए तैयार रहती हैं। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण हालात इतने खराब नहीं हैं, पर ग्रामीण इलाकों में महिला की स्थिति चिंता करने योग्य है। सही शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं की दशा दयनीय हो जाती है। एक औरत बच्चे को जन्म देती है और पूरी जिंदगी उस बच्चे के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों के निर्वाह को ही अपना संपूर्ण जीवन मान लेती है तथा बदले में वो कुछ भी कामना नहीं करती। ताउम्र पूरी सहनशीलता व समर्पण के साथ बिना तर्क किए अपनी भूमिका को पूरा करती है। ग्रामीण समाज में आज भी एक ऐसी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था वाली मनोवृत्ति विद्यमान है जो न केवल महिलाओं को दोयम दर्जे की नागरिक मानकर चलती है, अपितु इसी आधार पर उन्हें संपत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कितने ही अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीण समाज की महिलाओं की समस्याएं कुछ अलग प्रकृति की हैं, परंतु इन सब के केंद्र में कहीं ना कहीं अशिक्षा तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव ही दिखाई देता है। आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण समाज में 90% महिलाएं खेती पर निर्भर हैं तथा असंगठित क्षेत्रों में 98% महिलाएं हैं। ग्रामीण महिलाओं को लगातार 16 से 18 घंटे काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें हार तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। कितनी ही महिलाओं को दिन भर खेत में काम करना पड़ता है, पानी लेने के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता है, पशुओं के लिए चारा खेतों से काट कर लाना होता है। इस सब के बाद खाना बनाना, कपड़े धोना तथा बच्चों को पालने सहित सारा घर का काम उनकी प्रमुख भूमिकाओं में से है। फिर भी उनके श्रम को पितृसत्ता में महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना जाता। कहना न होगा कि शिक्षा के अभाव में स्वयं महिलाएं भी अपने पूर्णकालिक काम का आकलन नहीं कर पाती। इसी प्रकार की मानसिकता के चलते महिलाओं को आज तक गरिमापूर्ण जीवन नहीं मिल पाया है। यद्यपि महिला आंदोलनों ने महिलाओं की सत्ता में भागीदारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ और पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 अब 50% महिला आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में लगभग 14 लाख महिला जनप्रतिनिधि हैं। परंतु वास्तविकता में ग्रामीण इलाकों में पंचायतों में चुनकर आई महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों का उपयोग उनके पति, पिता अथवा भाइयों द्वारा ही किया जा रहा है और ग्रामीण महिला आज भी घर की चारदीवारी में अपने पारंपरिक घरेलू कार्य निपटा रही है। आज महिला आंदोलनों के माध्यम से जो कुछ भी अधिकार मिल रहे हैं, वे सिर्फ शहरी मध्यम वर्ग की महिलाएं प्राप्त कर पा रही हैं। संगठित श्रम बाजार में ग्रामीण महिलाएं लगभग अनुपस्थित ही दिखाई देती हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अभी भी शोचनीय है। सरकारी संगठन के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 53% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। महिलाओं को शिक्षा का पात्र नहीं समझा जाता। लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे भी यही सोच रहती है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, उन्हें आखिर में चूल्हा चौका ही संभालना है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो लड़कियों में आज ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर अनीमिया, कुपोषण, अस्वच्छता जैसी समस्याएं व्याप्त हैं। इन सब बीमारियों का इलाज इसलिए नहीं कराया जाता कि वे अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इसी धारणा के परिणाम स्वरूप आज मातृत्व मृत्यु दर 212 प्रति लाख पहुंच चुकी है। परिवर्तन की बात करें तो इस तीव्र लहर से गांव भी अछूते नहीं हैं। परिवहन के सुलभ साधनों ने गांव और शहर की दूरी को भी कम कर दिया है, परंतु कहना न होगा कि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति जिस तरीके से बदलनी चाहिए थी उस तरीके से अभी तक नहीं बदल पाई है। अच्छी शिक्षा प्रणाली की कमी के चलते उन्हें अभी भी पढ़ाई लिखाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि महिला शिक्षा की महत्ता को समझते हुए सरकार भी इस ओर पूरे प्रयास कर रही है, ये अलग बात है कि जागरूकता के अभाव के चलते इनका उतना प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा जितना वास्तव में दिखना चाहिए। ये सत्य है कि नारी को शिक्षित करके हम पूरे देश को शिक्षित बना सकते हैं। किसी देश और समाज की तो छोड़िए, हम अपने परिवार की उन्नति की कल्पना भी स्त्री शिक्षा के बिना नहीं कर सकते। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की ये नींव है कि स्त्री और पुरुष को बराबर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही समाज में खुशी और शांति ला सकती है। कहते हैं

0: हैं कि बच्चे इस देश का भविष्य हैं और एक महिला ही माँ के रूप में उसकी पहली शिक्षा का स्रोत है। इसी कारणवश महिलाएं चाहे शहरी हों या ग्रामीण, उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित होकर वह न केवल अपने घर, परिवार, पड़ोस अपितु पूरे समाज को ही सही दिशा प्रदान करती है। समाज के विकास और देश के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी नारी का शिक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण। इसी दिशा में स्त्री शिक्षा के पुरजोर विकास के लिए सरकार ने अनेक कानून लागू किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा लड़कियों की शिक्षा के बहुत लाभ हैं। देश के भविष्य के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है। बच्चे देश का भविष्य हैं तथा महिलाएं अपने बच्चों की पहली शिक्षक हैं। अशिक्षित महिलाएं जहां एक ओर परिवार के प्रबंधन में पूर्ण योगदान नहीं दे सकती, वहीं दूसरी ओर बच्चों की उचित देखभाल करने में भी पूर्ण सक्षम नहीं रहती हैं। पढ़ी लिखी महिला के रूप में माँ बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर उसके व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षित महिला स्वयं अपने भविष्य को भी सही आकार देने में अधिक सक्षम होती है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षित महिला कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकी का प्रयोग कर सकती हैं। शिक्षित महिलाएं काम करने और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण पारिवारिक गरीबी को कम करने में भी सक्षम हैं। शिक्षित ग्रामीण महिलाओं की जागरूकता के कारण महिलाओं में स्वास्थ्य दर बढ़ाकर बाल मृत्यु दर के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। शिक्षित महिलाएं दूसरी महिलाओं की अपेक्षा 50% अधिक अपने बच्चों की रक्षा करने में सक्षम होती हैं। शिक्षित महिलाओं को घरेलू या यौन हिंसा के शिकार होने की संभावना भी कम होती है। शिक्षित महिलाओं ने समाज में भ्रष्टाचार को कम करके उन स्थितियों को बदल दिया है जो आतंकवाद को जन्म देती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल परिवार के आय में योगदान करती हैं, अपितु परिवार का बेहतर संचालन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होती हैं, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी भरपूर होता है। शिक्षित महिलाएं अपने ग्रामीण समुदाय को लघु योजनाओं के माध्यम से योगदान देने और समृद्ध करने में मदद करती हैं। शिक्षित महिलाएं शिक्षा की महत्ता को जानते हुए दूसरों में शिक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता रखती हैं। शिक्षित महिला निसंदेह अपने बच्चों का कुशल नेतृत्व एवं उचित मार्गदर्शन कर परिवार को अधिक कुशलता से संभाल सकती हैं। वह बच्चों में अच्छे गुण प्रदान करके परिवार के प्रत्येक सदस्य को उत्तरदायी बना सकती हैं। शिक्षित महिला सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेकर सामाजिक आर्थिक रूप से स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान कर सकती हैं। एक आदमी को शिक्षित करके केवल राष्ट्र का कुछ हिस्सा ही शिक्षित किया जा सकता है, जबकि एक महिला को शिक्षित करके पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है। लड़कियों की शिक्षा की कमी ने समाज के शक्तिशाली भाग को भी कमजोर कर दिया है, इसलिए महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से कमजोर नहीं समझना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा न केवल समय की आवश्यकता है, बल्कि हम देश के गाँव की महिलाओं को शिक्षित किए बिना एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते।
1: बहनों, अभी आपने जो वार्ता सुनी, हमें उम्मीद है आपको वार्ता पसंद आई होगी। वार्ताकार थी श्रीमती सुनीता देवी। बहनों, अब कार्यक्रम में समा आ गया है एक प्यारे से लोकगीत को। आप सभी बहनें अपने काम करते करते इस लोकगीत को गुनगुनाएं और आनंद लें। कलाकार हैं बीना।

0: बहनों, अभी आपने मधुर लोकगीत सुनो। इन्हीं खुशियों और मुस्कानों के साथ हम इस लोकगीत को यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। और सुनता क्षेत्र संकलित कार्यक्रम गांव की बातें, आज हमने एक ऐसे विषय पर बात करी है जो हर घर की रसोई से जुड़ी है। हमने गांव की बहन से बातचीत करी कि खाना बनाते समय गैस की बचत कैसे करें। बहन है आशा देवी, ग्राम कावर, ब्लॉक शेरगढ़, बरेली से। तो सुनते हैं जो क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। दीदी राम राम।
1: राम राम।
0: आप अपनो पता और नाम बता दे।
1: हमारा नाम आशा देवी है और हम शेरगढ़ कावर में रहते हैं।

0: जिला बरेली है।
1: तो आज हम गैस की बचत के बारे में बात करेंगे। हमारी सरकार भी कह रही है कि गैस की बचत कराओ, बिजली की बचत कराओ, डीजल पेट्रोल की बचत कराओ। तो हम महिलाओं को
0: अच्छा,
1: किन किन बातों को ध्यान में रखकर गैस और बिजली की बचत करना चाहिए? तो दीदी, सबसे पहले बात करते हैं रसोई गैस की। तो रसोई गैस में हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे हम गैस की बचत कर सकें?
0: रसोई में गैस की बचत तो जैसे सब्जी है, सब्जी को काट का है, धो कर रख लिए हैं, मसाला पीस कर रख लिए हैं, उसके बाद में गैस जलावें तो गैस की हमारी बचत होती हैगी। और मतलब जैसे कि चावल वगैरह आए, जैसे हम बनाएंगे पतीली में, भगोना में, इनमें ना बना के हम अगर कुकर में बनावे जैसे, तो जल्दी ही बनते हैं और गैसों की बचत होती है इससे। आलू है, दाल है, चना है, इन्हें हम भिगो कर जैसे उबाल आए तो जल्दी उबलते हैं गैस में, कुकर में अगर उबाल है तो।
1: अच्छे। और हाँ, एक साथ में उबाल लें, जैसे चना और आलू और जो
0: हाँ,
1: लौकी वगैरह एक साथ में भी उबाल सकता।
0: अगर हम जैसे एक साथ में सब्जी बनाए रहे हैं तो हम एक साथ में बनाएंगे, तो उबालेंगे तो जल्दी उबलेंगे और इससे गैस की बचत हुई हमारी।
1: हाँ, एक बार की गैस में
0: हाँ
1: सब
0: हाँ
1: लौकी
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: जो आलू।
0: हाँ एक बार हम बना रहे हैं तो एक बार में उबालेंगे। गैस को हम अगर बंद कर रहे हैं तो दोनों जगाने से ही बंद करना चाहिए, रेगुलेटर से, वो गैस के चूल्हे उसे, इससे हमारी
1: अच्छे,
0: गैस लीक ना होती है और इससे गैस की बचत ही होती है। और वैसे हमें सावधान रहना चाहिए गैस कि हम अगर चावल बनावे, भिगो कर चावल बनावे तो जैसे कुकर में बनावे तो गैस की बचत होगी इससे हमारी, तो
1: अच्छा, भिगाने से क्या होता?
0: जल्दी बन जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, और वैसे खड़े चावल रखेंगे कच्चे एकदम तो देर में बनाएंगे तो इससे गैस हमारी ज्यादा फूकेगी। जैसे मतलब कुकर की रबड़ है, कुकर की रबड़ को साफ करके रखें, खाना जब भी पकाएं उसमें तो जैसे धो के साफ करके ही रखें, सीटी खोल के उसकी सीटियों को साफ कर रखना चाहिए। कढ़ाई में बना रहे हैं खानों या और किसी बर्तन बना रहे हैं गैस पे तो उसे ढककर ही बनाना चाहिए जिससे उसमें जल्दी उबाल आवे वो
1: हाँ
0: और जल्दी खाना बनाए।
1: हाँ
0: और ढकेंगे ना उसके लिए तो देर ज्यादा लगेगी। और
1: हाँ
0: जैसे हम सब्जी उब्जी वगैरह बनाए रहे हैं तो उसमें पानी ज्यादा ना लगाना चाहिए, जितनी
1: हाँ
0: आवश्यकता है उसमें उतनी लगाना चाहिए
1: हाँ
0: जिससे
1: हाँ
0: खानी जल्दी बने वो।
1: जवाब सही है।
0: हाँ, उससे गैस में कमर फूकेगी, इससे गैस की बचत होगी हमारी।
1: और किस तरह से गैस की बचत कर सकते हैं?
0: जैसे हम किसी बर्तन में खाना बना रहे हैं जैसे पतीली में,
1: हाँ,
0: तो उसके ऊपर हम जैसे भाप आती है उसके ऊपर दूसरे बर्तन में करके हम पानी रख दें तो वो गर्म ही जाए वो, वह पानी गर्म भवो पानी हम चावल में डाल दें या सब्जी में लगा दें तो खाना जल्दी बने वो, गैस की बचत होगी हमारी। जैसे समय समय पर जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन ना हम अपने गैस को बना रहे, मतलब गैस को साफ सफाई से रखेंगे, उसी जिला होती है मगर जो है इनको साफ करना चाहिए हमारे, इससे गैस सही आती है और सफाई वही भी होती है तो बचत होती है गैस की हमारी। गैस
1: हाँ,
0: ज्यादा तेज भी ना होना चाहिए,
1: और
0: ज्यादा
1: ज्यादा मध्यम
0: अपने
1: भी नहीं।
0: मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा मध्यम हुए,
1: हाँ, मीडियम हुआ।
0: हाँ मीडियम रहना चाहिए। गैस की सफाई करना ज्यादा जरूरी है।
1: और बात करें हम बिजली की, तो बिजली की बचत हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं?
0: बिजली की
1: मोटर,
0: बचत ऐसी करी जाती है
1: हाँ
0: जैसे मोटर वगैरह है इसका
1: हाँ
0: चला रहे हैं हम, इन्हें
1: हाँ
0: कम चलावे, इतनी आवश्यकता है हमारे उतनी चला, बैठे हैं पंखा चल रहा है हमारो,
1: हाँ जैसे बाहर
0: अब
1: बैठे
0: जा रहे
1: अंदर
0: हैं
1: वालों।
0: काम करने तक यहाँ अंदर वालों चल रहा हो या बाहर वालों चल रहा हुआ है, झाड़ू लगा रहे हैं उसमें तो हम झाड़ू के लगाने के लिए पंखा चल रहा हुआ तो हमारे चल रहा हुआ तो वो चलिए रहा हुआ, तो इससे तो बिल हमारे ज्यादा आ रहे हो, बत्ती की बचत थोड़ी ना होगी इससे। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो मतलब पंखा बंद कर देना चाहिए, तभी
1: अच्छे।
0: हम काम करें, अपने काम करके उसके बाद में अगर हमें जरूरत है तो चला लें।
1: कुछ बार क्या करती हैं, जानवर को नहाती हैं तो मोटर चल रही है, और जानवर को मसल रही तो उन्हें
0: हाँ,
1: पता ही ना है मोटर चल रही है ना चल रही है।
0: को नहवा रहे हैं तो बाल्टी में पानी भर कर उसके बाद में हम मग्गा उग्गा वगैरह से पानी डाल रहे हैं उनके ऊपर,
1: हाँ,
0: पानियों की
1: बचत।
0: बचत होगी, बिजलियों की बचत होगी, दोनों चीजों की बचत होगी। कोई भी बाहन धो रहे हैं जैसे हम कोई भी चीज धो रहे हैं, पतले कपड़ा धो रहे हैं तो पानी भर कर रख लेना चाहिए, टप वगैरह में फोबेरा चलाएंगे तो उससे ज्यादा ही बत्ती खर्च होगी, पानियों की बचत ना होगी।
1: अंत में दीदी, हमारी बहन से क्या कहना चाहूंगी कि वे बिजली और गैस की बचत किस तरह से करें?
0: खाना हम बना रहे हैं बार बार गर्म होना करने पड़े हमारे, खाना अगर हम जैसे बनाएंगे और खाने वाले खाना खा रहे हैं, हम थोड़ी देर पहले खाना बनाएंगे और सबको बिठा लेंगे खाना खाने के लिए, तो उससे
1: हाँ
0: हमारा बार बार खाना गर्म करने ना पड़ेगा, एक ही बार
1: हाँ
0: को खाने जब
1: जैसे
0: गर्म गर्म हो वो भाई खवा देंगे हम, तो इससे
1: हाँ
0: हमारी गैस की बचत होगी, बार बार गर्म करेंगे तो उससे
1: हाँ
0: गैस ज्यादा फूकेगी।
1: जैसे कुछ हुआ ना, सुबह को बना कर रख लेती थी, गर्म करके
0: हाँ
1: देती
0: हाँ सुबह को डाल लो हमने खाना, दोपहर को खाना खाना तो दोबारा से गर्म करने पड़ेगा हमारे लिए, तो इससे गैस की बचत ना होगी। अगर दोपहर को खा रहे हैं तो एक दो घंटा पहले ही खाना बनावे तो वो हमारे गर्म रहेगा खाना, उससे गैसों की बचत होगी, उसमें से बचत होगी। दूध वगैरह है हमने फ्रिज में रख दो तो वो काफी ठंडो ही जाएगा, उसे हम गर्म करेंगे तो काफी देर लगेगी।
2: हाँ।
0: अगर हम उसे एक आध घंटा पहले आधे घंटा पहले बाहर रख दें निकाल के फ्रिज में, तो उसके हाँ। बाद में गर्म करेंगे तो वो जल्दी गर्म ही जाएगा,
2: जल्दी गर्म हो जाएगा, गैस
0: गैस कम हो गएगी हमारी।
2: हाँ। इसी तरह से जैसे सब्जी वगैरह है तो सब्जी वगैरह निकाल कर पहले धोए कर रख दें,
0: धो कर रख लें, हाँ काट कर धो कर रख लें अपने, उसके बाद में ही सब्जी बना लें हम,
2: क्योंकि ठंडी चीज बनाने से समय ज्यादा,
0: ठंडी चीज बनाने से समय ज्यादा लगता है।
2: तो ठीक है आशा जी, आपने हमें गैस के बारे में और बिजली के बचत के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
3: बहनों, अभी आपने क्षेत्र संकलित कार्यक्रम सुनो, हमने गांव की बातों से जानो कि थोड़ी सी सावधानी और समझदारी से हम गैस की बचत कर सकते हैं और घर को बजट भी संभाल सकते हैं। बहनों अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, उससे पहले लिख ले हमारे कार्यक्रम को पतो, पतो है आंचल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रामपुर, पिन 244901। आप हमें इसी पते पर लिख भेजें हमारा कार्यक्रम कैसे लागू, या कोई कमी रही हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें पत्रों के माध्यम से लिख भेजें, हम आपके पत्रों का बेसब्री से इंतजार करेंगे। इसी वादे के साथ अपनी बहन मीना को दियो अनुमति, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आंचल। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही थी मीना। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।

0: transparency and reliability of the digital evaluation system adopted by CBSE. It alleged that thousands of students faced problems after the Class 12 results were declared. Meanwhile, the CBSE today said the application window for verification and revaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional from the 2nd to the 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. The National Testing Agency, NTA, has released the Exam City Intimation Slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. Our correspondent reports that registered candidates can now check their allotted exam city by logging into the official website using their application number and password.
1: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts and content to the concerned platforms and to cybercrime authorities for immediate takedown and action. The agency has advised candidates and parents not to engage, pay or forward any such message and not to follow prey to the fraudulent solicitations. The agency has also urged all aspirants to ignore the rumors and to rely solely on official communication issued by NTA through its verified website and channels. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. The Israeli military has confirmed executing targeted airstrikes against a major industrial site in southwestern Iran. The military apparatus disclosed that the Israeli Air Force had recently attacked several targets at the petrochemical complex in Mashhad, located in the strategic energy-rich coastal belt of Iran.
2: The latest exchange marks a significant setback for efforts to preserve a ceasefire that had largely held since April. Iran has portrayed its missile launches as a measured response to Israeli military actions in Lebanon, while Israel says its operations are aimed at degrading Iranian military capabilities, preventing further attacks. Diplomatic efforts are now intensifying to prevent the conflict from expanding further. United States President Donald Trump has urged both sides to avoid additional escalation and return to negotiations. Regional mediators are also working to keep communication channels open. Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani held discussions with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi as a part of ongoing efforts to preserve dialogue between Tehran and Washington. The broader negotiations remain complicated by disagreements over maritime access through the Strait of Hormuz and wider regional security arrangements. As military activity continues across multiple fronts, concerns are growing that the latest exchange could trigger a broader regional crisis with implications for energy markets, aviation and international shipping. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
0: Meanwhile, the Indian Embassy in Iran has advised internationals to avoid any travel to Iran in view of the recent developments in the region. In a social media post, the embassy also advised the internationals currently present in Iran to exit the country by available means of transport. Akashwani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio, ushering the country into a special journey of culture, information and broadcasting to echo through generations. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashwani in 1956. Akashwani brings forth a voice that echoes through generations, carrying the nation's stories, values and aspirations to listeners across the country. More from our correspondent.
3: Post-independence, AIR expanded rapidly, adopting the name Akashwani in 1956. Today, Akashvani operates 591 stations, reaching 98% of India's population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashvani's External Services Division broadcasts to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country in varied terrains, 24/7 in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
0: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashvani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
4: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
5: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
6: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
4: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
7: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
8: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर

0: छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: मीनेवेर 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुनहरा दौर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे 60 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

सुनहरा दौर कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी मंजिल से, और इस गीत को अपनी आवाज़ दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

आप सुन रहे हैं सुनहरा दौर कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अगला गीत प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मुकेश जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है आस का पंछी।

कार्यक्रम में अगला गीत प्रस्तुत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

प्रस्तुत है सुनहरा दौर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म गुमराह से आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: लौट रही है मेरी सदाएं।
1: और इसी अंतिम गीत के साथ दीदी दीजिए प्रीति दिवाकर को सुनहरा दौर कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।

अभी आपने सुना सुनहरा दौर, जिसके अंतर्गत आपने सुने 60 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे। मीन वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं, अभी तक आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे थे। अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ आज शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम उपलब्ध रहेंगे। मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मेरा यानी मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: बस वही जैसे आपने पूछा क्या हाल है, तो हमेशा की तरह हम कहते हैं बहुत अच्छे
1: हैं और उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे। ये बताइए जरा कि जब आप कहीं समंदर के किनारे जाती हैं तो लहरों में खूब मौज मस्ती करती होंगी निश्चित रूप से।
2: बिल्कुल।
1: फिर वहां जाती हैं तो क्या छोड़ आती हैं और क्या लेकर आती हैं?
2: देखिए हम जो हैं उस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बात तो हम अपनी सावधानी का ज्यादा ध्यान रखते हैं। छोड़ने की बात से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कितना लहरों के बीच में जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम जाते हैं। और रेत जो होती है ममता जी वो अक्सर आप जहां पैर रखें

0: यहाँ का, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर महासागर की गहराई ज्यादा है और
1: जी
0: जो बहुत इंटीरियर बीच है,
1: जी
0: वहाँ जब आप जाते हैं तो इन सब बातों का खास ख्याल रखना चाहिए कि आप बहुत अंदर तक पानी में ना जाएं, और
1: बिल्कुल
0: कहीं पर रेत धसकती है।
1: बिल्कुल
0: और कुछ ऐसे जगह खास तौर से रायगढ़ में एक जगह है दापोली, जहाँ पर
1: जी
0: हमने देखा, हमने खुद देखा है कि वहाँ पर पैर रखिए तो आप एक जरा सा कुछ सेकंड के लिए खड़े होंगे तो आपके पैर मतलब घुटने तक रेत चली जाती है, इतना
1: बिल्कुल
0: तक। और कई बार गाड़ियां वहां पार्क की जाती हैं, वो गाड़ियां फंस जाती हैं, और ये बाकायदा इंसिडेंट होते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ जहां जा रहे हैं पहले वहां के बारे में सावधानी और नियमावली पढ़ लें, उस जगह के बारे में, उस समंदर के बारे में। और एक बात और है जो आप भी
1: जी
0: जानती होंगी कि वहां पर
1: बिल्कुल
0: ढेर सारा कचरा छोड़कर ना आए, बताइए आप
1: बिल्कुल,
0: क्या कहेंगी?
1: क्योंकि हम देखते कि वहां पर लोग घर से या तो खाने के लिए कुछ चीजें ले जाते हैं या वहां से परचेज करके खाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगी रहती है तो उसमें जो पॉलिथीन चीज जैसी चीज होती है या आपने दोने में कोई चीज खाई है तो वो सब वहीं पे छोड़ के चले आते हैं, तो वो वापस समुद्र में जाता है जो उसको दूषित कर देता है
0: और
1: पानी को,
0: आपको वापस देता भी है
1: वापस
0: लाकर।
1: पलट के वो लहरों के थ्रू वापस आता
0: हाँ,
1: भी है।
0: तो ये कहने का मतलब है कि आप मुझे जो दोगे मैं वही वापस करूंगा,
1: हाँ
0: मतलब समंदर
1: बिल्कुल
0: ये एक तरह से मूक भाषा में ये कहता है।
1: संदेश देता है
0: तो ये मत करिए, जब आपको मालूम है कि आपने पैर डाला पानी में और एक पॉलीथिन फंस गया और एक कचरा कागज का
1: बिल्कुल
0: टुकड़ा या कुछ भी आ गया, तो बहुत बुरा सा लगता है ना, आपको
1: जी
0: डर भी लगता है कि कहीं कोई कीड़ा तो नहीं आ गया, मछली तो
1: जी
0: नहीं आ गई है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि जैसा हम करेंगे जैसा वो उसके साथ करेंगे वो भी वापस जवाब देता है, तो हमें इन सब की खूबसूरती को अगर देखने जाना है तो आप देखिए खाइए पीजिए, लेकिन आप उस कचरे को या तो आप अपने साथ किसी पॉलिथीन में पैकेट में झोले में रख के ले आइए अपने घर में आसपास, जो आपका कचरा दान उसमें डालिए, या वहां पर भी रहते हैं कचरे के डिब्बे तो आप उसमें डालिए, वहां समुद्र के वातावरण को उसके किनारे को उसकी सुंदरता को नष्ट नहीं
0: नहीं
1: करिए,
0: करें,
1: इसका ध्यान
0: बिल्कुल।
1: रखना
0: और
1: है
0: बारिश के मौसम में समंदर के हर बीच पर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: मुंबई में भी खास तौर से एक बीच है, अक्सा बीच जो
1: जी
0: कहा जाता है, वो थोड़ा सा गहरा है, तो वहां पर हर साल बारिश में दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ये कहा जाता है। और उस वहां पर जो युवाओं का झुंड है अक्सर जाता है
1: जी
0: और हर साल कुछ न कुछ हादसे होते हैं। तो प्लीज अपनी जिंदगी का
1: जी
0: ख्याल रखें, अपने
1: बहुत
0: माता
1: सही
0: पिता का
1: कहा
0: ख्याल रखें कि कितनी अनमोल है जिंदगी। और आज विश्व सागर दिवस पर ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं,
1: जी
0: हम कहते हैं कि हमारे श्रोताओं के कुछ अनुभव होंगे, खट्टे मीठे अनुभव साझा करें,
1: बिल्कुल
0: बजाय ये लिखने की कि हमने बहुत सारी बातें तो साझा कर दी है और कोई एक तरह की टिप्पणी हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उसकी बजाय अपने अनुभव साझा करें, हम आप तक पहुंचाएंगे।
1: जी
0: अब क्या करें हम,
1: अब गीत सुना दीजिए।
0: चलिए सुनते हैं गाना।

0: तो ममता जी, हम पहले विषय बता देते हैं कि हम बात करेंगे व्यंजन में मथुरा की दाल और आलू की कचौड़ी जो वहाँ पे प्रसिद्ध है उसके बारे में, और एक विषय हमारा है तपाक से बोलने की आदत। तो हमारे साथी इस पर लिखकर भेज चुके हैं और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विविध भारती के पेज से वो भी लिखकर भेजे। और धरती की धड़कन है महासागर, विश्व महासागर दिवस पर
1: वो हमने
0: बताई दिया है। और कथा सुधा में हम आभूषण का भाग दो सुनेंगे।
1: और तपाक से बोलने की जो आदत है, कई बार लोग तपाक से बोलने के चक्कर में गलत बोल जाते हैं, तो जरा सोच समझ के बोले क्योंकि कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली कभी वापस नहीं आती, तो जब बोले तो सोच समझ के। फिलहाल ये गाना सुने।

0: चलिए सुनते हैं कथा सुधा कहानी आभूषण, इसका भाग दो।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी। वो पहले कलकत्ते गया। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
1: आइए सुनते हैं इस कहानी की दूसरी कड़ी।
2: मंगला को केवल अपनी रूपहीनता का ही रोना न था, शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि ये उसकी आशा लताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वो कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इसी मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे। किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वो एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। वो मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वो अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा, यदि वो सुंदर नहीं है तो उसका क्या दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वो बड़े सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के बदलते हुए भावों को देखते थे, पर एक पक्षाघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते हुए देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया।

0: एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी न जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी, जो जहां था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी चार कदम टहलते, फिर हांफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी।
1: पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर।
2: क्या बात है,
1: मुखड़े पे डाले हुए जुल्फों की बदली।
0: चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा।
3: ये क्या बेवक्त की शहनाई है, यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूची है।
4: रूप सुहाना लगता,
3: मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक ही कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है, उनके जीवन का आधार वही भोजन निद्रा राग रंग आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन चुका, ये गीत कभी बंद होगा भी या नहीं। साहब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं।
0: अंत को न रहा गया, जनान खाने में आकर बोले,
3: ये तुम लोगों ने क्या कांव-कांव मचा रखी है, हाँ? ये गाने बजाने का कौन सा समय है, बाहर बैठना मुश्किल हो गया।
0: सन्नाटा छा गया, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई, पति को बुलाया और आहिस्ते से बोली,
5: अरे क्या बात है, इतना क्यों बिगड़ रहे हो आखिर।
3: मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।
5: तुम्हें सुनाता ही कौन है, क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है।
3: फजूल की मचमच,
5: तुमसे मतलब।
3: मैं अपने घर में ये कोलाहल न मचने दूंगा।
5: तो मेरा घर कहीं और है।
3: इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए।
5: हाँ हाँ, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता है ना।
3: ओहो हाँ हाँ हाँ, इसीलिए।
5: तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो भला।
3: इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ।
5: स्वामी हूँ, स्वामी हूँ, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ इस घर में मेरा अधिकार है।
3: क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो, मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा तुम्हें, हाँ?
5: अच्छी बात है, जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने वो भ्रम मेरा मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी था ही नहीं। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता।
3: अरे सुनो, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ का कुछ समझ गई तुम तो।
5: मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छिपा लेते हैं।
0: सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊंगा उतना ही ये और भी जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले आए।

प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंसू पोछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। ये मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहां चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। यूं बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं, फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई, उनकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं ताका।

0: मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए ये मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: मंगला बहन, जरा अंदर आकर दम ले लो। ये क्या हुआ?
2: शीतला बहन, जो भाग्य में लिखा था वही हुआ, और क्या।
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: मुंह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती ना।
1: अरे तो क्या अब यहां तक नौबत आ गई है?
2: चाहती तो अब भी वहीं पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं।
1: तुम्हारा मैका कहां है?
2: मैं के कौन मुंह लेकर जाऊंगी मैं भला?
1: अरे तो तब कहां जाओगी?
2: ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनियां ही बदसूरत औरतें होती हैं। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा,
1: इसे क्या खिलाऊंगी, आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं।
0: मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही,
1: मैं कैसी अभागिन हूं जिस प्रेम को ना पाकर ये बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वो कहाँ है, किस दशा में है।
0: अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण की दूसरी कड़ी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रकर, मंगला, ममता सिंह। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: और हम बात करने वाले हैं धरती की धड़कन है महासागर, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है और महासागर वातावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अपने भीतर समाहित कर तापमान को नियंत्रित करते हैं। यदि महासागर ना हो तो धरती पर कहीं अत्यधिक गर्मी और कहीं असहनीय ठंड हो जाती है। वर्षा चक्र भी महासागरों के कारण ही संभव है और समुद्र से उठती जल वाष्प बादलों का रूप लेकर खेतों, जंगलों और नदियों को जीवन देती है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। महासागर जैव विविधता का अनमोल खजाना है। लाखों तरह के जीव जंतु वनस्पतियां समुद्र में निवास करती हैं और छोटी मछलियों से लेकर विशाल वेल तक हर जीव समुद्री जीवन की अद्भुत दुनिया का हिस्सा है। करोड़ों लोगों की आजीविका भी महासागरों पर निर्भर होती है। कितने सारे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी आजीविका उन पर टिकी होती है। आप तो यहीं मुंबई जहां विविध भारती का स्टूडियो स्थित है, यहां के तमाम बीच पर जाइए तो मछलियां सूखती रहती हैं, तो ये उनकी आजीविका का स्रोत है। और जरा उनके बारे में सोचिए कि जो मछुआरे कई कई दिन तक मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी सी नैया लेकर चले जाते हैं बहुत दूर तक, और कई बार तूफान आ जाता है तो उन तूफानों से लड़ते हैं। तो जब हम समंदर में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं तो ये इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम जब सागर हमें इतना कुछ दे रहा है तो हम भी सागर के लिए कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, कि उसकी सुरक्षा साफ सफाई का ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मछली तो वहां पर मिलती ही मिलती है, मछली पालन भी किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बहुत ही बहुमूल्य रत्न भी समुद्र से महासागरों से पाए जाते हैं।
0: तेल मिलता है जिससे जो बहुत बड़ा स्रोत है हम सब
1: ईंधन का साधन है, और व्यापार पर्यटन और परिवहन जैसे अनेक कार्य समुद्रों के कारण ही चलते हैं। और इसका जो इतना महत्व होने के बावजूद भी ममता जी आज महासागर संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना और जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यदि हम समय रहते नहीं जाग गए तो इसका प्रभाव पूरी मानव सभ्यता पर नजर आएगा।
0: बिल्कुल। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि समंदर, नदियों और तालाब में गजब का आकर्षण छिपा है। ये सब प्रकृति के महत्वपूर्ण उपादान है। रात जब चंद्रमा बजाता है बांसुरी, समुद्र में ही नहीं नदियों, तालाब और जहां जहां पानी है वहां उठती है फेनिल हिलोरें, और मन की आंतरिक सतह में एक मीठा झरना गुनगुनाने लगता है। क्या बात है, रात चांदनी की जब बात कही तो चांदनी रात में समंदर के किनारे बैठना, समंदर के किनारे सैर करना बहुत सुहाता है। हालांकि रात में समंदर का शोर डराता भी है मन को, लेकिन सुखद भी लगता है।
1: ऐसा लगता है कि वो जब उसके किनारे आप टहल रहे होंगे तो लगेगा लहरें आपको पीछे से घेर लेती हैं, ऐसा लगता है वो दृश्य।
0: इसी तरह की बात हमारी एक और सखी लिख रही है कि आसमानी रंग को अपने तन पर समेटे हुए सुंदरता को बिखेरता हुआ नजर आता है जो मनमोहिनी का काम करता है। उसकी अपार सुंदरता बरबस ये आकर्षित करती है। दूध सी आती शुभ्र उर्मी जब पैरों से टकराती है तो ऐसा लगता है किसी ने पांव में पायल बांध दी, और नूपुर बज उठते हैं, उससे निकलता संगीत मन को गहराई तक छू जाता है। क्या बात है भाई, आज तो हमारी सखियां बड़ी ललित भाषा में ये बातें लिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, शुक्रिया अदा करते हैं
1: जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि महासागर धरती की धड़कन की तरह है जो पूरी पृथ्वी के जीवन को संतुलित बनाए रखते हैं। विशाल और गहरे महासागर न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि जलवायु को नियंत्रित करने, वर्षा लाने और असंख्य जीवों को जीवन देने का कार्य भी करते हैं। समुद्र की लहरों की मधुर आवाज मन को शांति देती है और हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास कराती है। धरती पर जीवन का आधार माने जाने वाले महासागर मानव, पशु पक्षियों और पर्यावरण के लिए अनमोल धरोहर है। इसलिए हमें महासागरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लेना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी महिमा के महत्व को समझ सके।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और मंजरी जी, आपने समुद्र एक संदेश भी देता है, उस संदेश को कभी सुना है? जब हम बहुत ध्यान से समंदर की लहरों को उठती गिरती देखे तो एक संदेश होता है। हम सब ये महसूस करते हैं कि एक बार उठना और गिरना ये इंसान की भी फितरत होती है। तो जब बहुत ऊंचाई पर जाएं तो तो कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह की बात हमारे एक श्रोता भी लिख रहे हैं, हमारे सखा है ये, इन्होंने लिखा है कि समुद्र की धड़कनों से उसकी अनंत गहराई मनुष्य को जीना सिखाती है। इतनी ऊंची लहरें मन को सुकून तो देती हैं, ये कहती हैं कि जरूरत से ज्यादा, सीमा से ज्यादा ऊंचा उठना भी एक दिन वापस आना बताती है। बहुत सी चीजें हमें देती हैं, लेकिन हम सब जाएं तो वहां स्वच्छता साफ सफाई जरूर रखें। ये एक बात है कि ये कहा जाता है कि जब हम बहुत ऊंचाई तक ये उड़ते हैं लोग, मतलब ऊंचे ख्वाब देखते हैं और ये अपनी अपनी जड़ों को, जमीन को भूल जाते हैं, तब ये बात हम कहते हैं कि ज्यादा मत उड़ो, जब गिरो

0: बल्कि धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली शक्ति है। उनकी अथाह गहराई में असंख्य जीवों का संसार बसता है और उनकी लहरें प्रकृति के निरंतर प्रवाह का संदेश देती है। महासागर हमारे मौसम को संतुलित रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं, मानव जीवन के लिए अनेक संसाधन प्रदान करते हैं। इनकी स्वच्छता और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। यदि महासागर स्वस्थ रहेंगे तो धरती भी स्वस्थ और जीवन से भरपूर रहेगी, और इनको स्वस्थ रखने में हम सभी को ही अपना योगदान देना चाहिए।
1: उफ़, इतनी सारी टिप्पणियां हैं मंजरी जी, क्या कहें, लेकिन हम बहुत लंबी लंबी टिप्पणियां हैं तो शॉर्ट में पढ़ देते हैं। दो टिप्पणी एक साथ। महासागर को एक सखा है हमारे लिख रहे हैं, महासागर को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और दिल की धड़कन, जो इस ग्रह के मौसम, जलवायु और जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी के गर्भ में एक रहस्यमय धड़कन हर 26 सेकंड में सूक्ष्म कंपन का स्रोत अटलांटिक महासागर की लहरों को ही माना जाता है। महासागर एक विशाल कार्बन सिंक है जो हमारे वायुमंडल से करीब 25% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशेषित कर लेता है। और एक हमारे श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सभी को नमस्कार, और एक श्रोता ने लिखा है कि महासागर न केवल पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है, बल्कि ये हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है। हमारे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है और ग्रह के जलचक्र को बनाए रखता है। महासागर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के लिए आवश्यक है। ये एक जीवन रेखा है।
0: और एक हमारे साथी और लिखते हैं कि अक्सर ये बात कही या सुनी जाती है कि दिल सागर जैसा विशाल रखिए। सागर जो हमें अपार सहनशीलता या विशाल दृष्टिकोण और निस्वार्थ प्रेम सिखाता है। इस धरती की हर गंदगी अपने में समाकर खुद खारा यानी नमकीन बन जाता है। बदले में कड़ी धूप और गर्मी सहन करते हुए जल से बादल बनाकर बरसात द्वारा हमें मीठा पानी देता है, मतलब खुद जहर पीकर हमें अमृत देता है। जैसे मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसी का जीना है जो।
1: क्या बात है। अब देखते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में समंदर के बारे में क्या लिखा है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया है और सचिन देवबर्मन ने संगीत दिया। बारू

0: बारूद फिल्म का ये गाना था और समंदर के लिए आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और सचिन देव बर्मन ने
1: जी।
0: संगीत तैयार किया
1: और
0: था।
1: देखिए ना, कुछ कहने वाले भी
0: अरे
1: हमें।
0: आपने मुझे बोले ही नहीं थे, काट दिया
1: देखो यही तो बात होती है ना कि क्या हम अगले
0: तपाक
1: विषय,
0: से,
1: तपाक से
0: मतलब ये तपाक से बोलना हुआ
1: तपाक से बोलना
0: लेकिन कई बार
1: जी
0: जरूरी बात रह जाती है ना तपाक से बोलने पर।
1: बिल्कुल सही बात है। और तपाक से इसीलिए कई बार जब ऐसा बोला ना कि तपाक से बोल दिया, तो
0: हाँ
1: उसका अंजाम भी बहुत गलत हो जाता है। लोग सोचते
0: नहीं,
1: हैं ये
0: कई बार
1: क्या
0: सही
1: किया
0: भी तो हो जाता
1: इन्होंने,
0: है।
1: कई बार सही हो जाता
0: जैसे
1: है।
0: अभी हम तो तपाक से बोलने की बात पर हमें बतियाना था, तो आपने तो सही किया
1: लेकिन
0: लेकिन आप घबरा
1: हमें
0: गई
1: लगा कहीं तपाक से बोले तो कहीं वो गलत ना असर पड़ जाए। तो ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम ना चाहते हुए भी बोल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। और
0: हाँ,
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं ममता जी कि मतलब वो
0: कोई अच्छी
1: जानबूझ
0: बात
1: करके,
0: जान बोल
1: हाँ
0: देते हैं, कोई जानकारी होती है
1: जी
0: और वो तपाक से बोल देते हैं कि ये नहीं, ये ऐसा था।
1: बिल्कुल। और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सोचे समझे, बस चार लोग खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं, मालूम पड़ा आपने बिना सोचे समझे कि उनकी बात का क्या है, मतलब है कहाँ हमें बोलना नहीं चाहिए कहाँ बोलना है, वो तपाक से बोल देते। फिर उसका असर जो तीन सुन रहे होते, चार के बीच में आपने चौथे आप में आपने बोल दिया, जो तीन सुन रहे हैं तो उनको बड़ा लगता है अरे ये क्या बात कर दी इसने, मतलब किसी का आप कटाक्ष भी कर देते हैं तपाक से बोलने वाले। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं तो इसका नुकसान भी होता है, लोग गलत समझ सकते हैं। कभी कभी सीधी बात सामने वालों को कठोर या बहुत ही अपमानजनक लग सकती है। और कभी कभी रिश्तों में तनाव भी आ जाता है और हर व्यक्ति जो है वो सच सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता है ममता जी। और बिना सोच समझ कर कही गई बात रिश्तों में दूरी भी ला सकती है। तो
0: लेकिन हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि मुझे तो तपाक से बोलने की आदत है और मुझे पता है कि अच्छी आदत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब कोई गलत करता है तो अपने को मैं रोक नहीं पाती, अपने बातों से चतुर बनने की कोशिश करता है कोई, तो मुझसे बोले बिना रहा नहीं जाता है, मैं बोल देती हूं। भाई कोई गलत बात कह रहा है तो आपको बोलना ही चाहिए तपाक से,
1: बिल्कुल
0: तो सामने वाले की गलती भी उजागर हो जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, इन्होंने लिखा है कि बड़ों ने कहा है, कुछ कहावत भी है कि कुछ भी बोलो तो पहले सोच समझ के फिर बोलो। तपाक से कुछ भी बोल जाने से हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, किसी को दुख पहुंच सकता है, किसी का हम अपमान कर जाएंगे, सारी हानि हमें ही होगी, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, तपाक से मत बोलो।
1: और हमारे साथी लिखते हैं कि तपाक से बोले शब्द तीर बन जाते हैं जो दिलों को बर्बाद करते हैं, जबकि सोच समझ कर बोले शब्द मोती होते हैं जो कभी चुभते नहीं बल्कि सजे हार बनकर रिश्तों को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी तरह हमारे साथी और लिखते हैं कि अत्यधिक उत्तेजना व अहंकार में सामने वाले को तपाक से ऐसा कोई आप शब्द कटु शब्द ना बोले जिससे संबंधों रिश्तों में मतभेद कड़वाहट हो जाए। पहले तोले फिर बोले, नम्रता ममता भरे भाव मधुर बोले, सभी जन से जिससे प्यार स्नेह बढ़ता है। इन्होंने ये बात लिखकर के बीच में
0: और हमारी एक सखी है, इन्होंने कहा है कि कुछ कह देना अक्सर बातचीत में गलतफहमी, विवाद या सामने वाले को ठेस पहुंचाने का कारण बनता है, इसलिए इसे आमतौर पर एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बिना सोचे बोले गए शब्दों में अक्सर सही संदर्भ की कमी होती है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का गलत अर्थ निकाल सकता है।
1: और हमारे एक साथी देखिए और भी लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत हमारे व्यक्ति की विशेषता होती है। जहाँ लोग दिल की बात बिना लाग लपेट के कह देते हैं, वहीं तपाक से बिना सोचे समझे बोली गई बात जिसमें उतावलापन, रूखापन या दूसरों की बात काटने का उद्देश्य हो, मित्रों आपसी रिश्तों और कार्यस्थल पर मुश्किलें भी पैदा कर सकती है, लेकिन शिष्टता संयम और सम्मान के साथ तपाक से बोली गई बात आपको सम्मान के साथ आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जल्दबाजी, अत्यधिक उत्साह या चिंता शामिल है तपाक से बोलने में, इसे एक बातूनी या वाचाल स्वभाव कहा जाता है। इस आदत को सुधारने और कम बोलने की आदत डालने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सुनने की आदत डालें, दूसरों की बात को ध्यान से सुने और बीच में ना काटें। आज तो मंजरी जी ने हमें काटा बीच से, कहा कि तपाक से बोलने के लिए, तो भाई मैं
1: जी
0: मान गई, चुप हो गई और मैंने कहा कि हाँ क्या कहना चाहती हैं, तो कई बार पते की बात कहने के लिए भी काट दिया जाता है। तो अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है
1: बिल्कुल
0: कि अगर हम घड़ी की ओर देख रहे हैं कि हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो इसलिए एक दूसरे को काट कर अगर बोलते हैं तो वो अपनी जगह पर सही है।
1: बिल्कुल
0: तो इनका कहना भी सही कि कुछ कहने से पहले 3-5 सेकंड का समय लें, सोच लें और उसके बाद मन को शांत करके बोलें, और चिंता में और गुस्से में ना बोलें। और भी बहुत लंबी सी टिप्पणी इन्होंने लिखी है।
1: देखिए एक बड़ा मजेदार सा संदेश मिला है मुझे ममता जी। लिखते हैं कि तपाक से बोलने की आदत कुछ मर्दों में होती है लेकिन प्रायः महिलाओं में ये आदत होती है, अच्छी तरह एक ऑटोमेटिक मशीन जैसी होती है। इन्होंने लिखा है पड़ोसी की पति
0: विश्लेषण किया है इन्होंने।
1: देखिए ना, पड़ोसी की पति से लड़ती पड़ोसन के तपाक से बोलने की आदत को ताज्जुब करता हूँ, कभी कभी हमारी भी ऐसी करती है। अब नहीं तो कहकर सब मैं उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाऊं।
0: अच्छा, वैसे झगड़े के वक्त तो शब्द अपने आप फूटते हैं ना, फटाफट फटाफट
1: तपाक से
0: ऐसे नॉर्मल बातचीत में कई बार लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन झगड़े के वक्त जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं, देखा है कि वो भी बहुत तेजी से और फास्ट बोलने लगते हैं।
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: ये क्या वजह है? हमें लगता है कि
1: भरे बैठे होते इसलिए बोल जाते होंगे।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि तपाक से बोलने या बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत अक्सर बातचीत में खटास डाल देती है। और भी कुछ कहना चाहती है?
1: नहीं, अब गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: है।
1: आज नहीं तो कल कह लेंगे, लेकिन आप हम
2: हमें
1: कल
2: आज ही कहना पड़ेगा
1: तुरंत कहना पड़ेगा और तपाक से, तो तपाक से बताइए कौन सी रेसिपी तैयार की गई है आज।
2: बस हम तैयार करने वाले हैं मथुरा की आलू की खस्ता कचौड़ी, जिसे आलू की सब्जी के साथ भी खाते हैं और चटनी के साथ भी
1: तो
2: खाते हैं।
1: तो ये रेसिपी सिर्फ बता रहे हैं, बनाया भी है कभी, बनाती भी है?
2: नहीं, वैसे तो देखिए आलू की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी तो सब घर में बनती है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ की इसमें क्या खास बात है।
1: अरे आपने समझा ही नहीं, बनाने से मतलब है कि बना के खिलाया जाता है ना,
2: अभी तो नहीं
1: बनाया नहीं जाता है।
2: जी वो तो मैं जानती हूँ, आपके इशारे, आपकी आंखों की जो चमक थी वो समझ गई थी।
1: तो कौन सा व्यंजन आप बना रही हैं?
2: आलू की खस्ता कचौड़ी बताते हैं। इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 4 बड़े चम्मच तेल या घी मोयन के लिए लेना है, 1/2 छोटा चम्मच नमक, गुनगुना पानी, आलू की ब्रावन के लिए आपको लेना है 2 या 4 उबले आलू लीजिए और हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा लीजिए, साबुत धनिया लीजिएगा उसको दरदरा कर लीजिए, और 1/2 छोटा चम्मच हींग लेना है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर और नमक स्वाद के अनुसार, और 4 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। तलने के लिए तेल भी आपको अलग से रखना है। और इसको बनाना है कि सबसे पहले मैदे में नमक मोयन डालकर अच्छी तरह इसको मिला लीजिए, और जब आपके हाथ से दबने लगे तो समझ लीजिए कि मोयन आपका रेडी सही लगा इसमें, और पानी डालकर थोड़ा सा इसको गूंथ लीजिए नरम नरम, और करीब 20 मिनट के लिए आप रखिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, उसमें हींग सौंफ धनिया डालिए, हरी मिर्च डालिए और उबले आलू हाथ से तोड़कर डालें, सारे मसाले नमक डाल करके आप मिला लें अच्छे से, हरी धनिया भी आप इसमें डाल दीजिए, और मिश्रण सूखा और मसालेदार जब हो जाएगा तब आप उसको किनारे रख लें। अब कचौड़ी की जो आटा साना है उससे लोइया बनाइए, उसमें आलू का ब्रावन भरिए और इसको आप हल्के से हाथ से दबाकर बेल लें, या फिर आप हाथ हथेली से दबाएं या बेलन से बेलें, और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर आप इसको तल लें, तो ये आपकी आलू की खस्ता कचौड़ियां तैयार हो जाएगी।
1: तो जब भी बनाना हो तो बना सकते हैं, और मंजरी जी बना के लाएंगी तो हमें जरूर खिलाएंगी, हम ये उम्मीद करते हैं। और अब तो हमने माइक्रोफोन पर कह दिया है ये बात,
2: बिल्कुल ये टाली भी नहीं जाएगी।
1: अब दाल की खस्ता कचौड़ी कैसे बनाएं ये भी आप जरा सुन लीजिए हमारे सारे श्रोताओं के साथ। दाल की खस्ता कचौड़ी के लिए भरावन के लिए पहले तो सामग्री बता दें, 1/2 कप धुली उड़द की दाल 4-5 घंटे भिगोई हो जो, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच धनिया दरदरा कुटा हुआ और 1/4 छोटा चम्मच हींग, या हींग तो चुटकी भर अंदाजे से डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 छोटे चम्मच से मतलब चुटकी भर, और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार 2 बड़े चम्मच तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब भरावन कैसे बनाएं, भीगी उड़द की दाल का पानी निकालकर दरदरा पीस लें, कढ़ाई में तेल गरम करें, हींग सौंफ और धनिया इसमें डालें, अब दाल मध्यम आंच पर भून लें, सारे मसाले नमक डालें, मिश्रण सूखा और खुशबूदार होने तक पकाएं, ठंडा होने दें। अब कचौड़ी बेलें, आटे की छोटी लोई बनाकर बीच में दाल की भरावन भरें और धीमी आंच पर तेल में तलें, इसको आलू की पतली सब्जी और चटनी के साथ खाएं, चाय के साथ भी खा सकते हैं
2: जी।
1: और अब ये गाना सुनें।

0: कहीं दिन कहीं रात फिल्म का गाना था, महेंद्र कपूर की आवाज थी। और अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

बेचारा बेचारा में आज सेहतनामा।

0: नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूँ, और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है।
1: जी, बहुत खुशी हो रही है, और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहाँ से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूँ और उनको मेरे विचार पहुँचा सकता हूँ और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूँ आज के विषय के बारे में।
0: जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में, खास तौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था। आजकल ये कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे।
1: जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस।

0: होता था, लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है, तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।
1: देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया, हम जी कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटिसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है, ऐसा क्यों होता है?
0: सी डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिसलिपिडिमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है।
1: अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है?
0: टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शन होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है,
1: ओहो,
0: इतना ज्यादा शुगर होता है।
1: वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की?
0: नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे।
1: अच्छा यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है फिर भी वजन कम होता जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है?
0: नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी,
1: अच्छा,
0: तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ भाई, देखिए चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है, थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप।
0: श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल।
1: हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है।

0: मिले दिल खिले। देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप 1 के भी मिलते हैं, टाइप 2 के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं टाइप 2 मरीज है ये?
1: जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है, या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इंफेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं।
0: तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है?
1: ये ब्लड से ही होता है जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 मंथ्स एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है।
0: अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्रायल ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं।
1: अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट, तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते
0: तो कभी
1: हैं।
0: कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था?
1: जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो, या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है, तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है, तो अगर ये HbA1c ज़्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में उसे हम टेस्ट करते हैं, अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है, और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं।
0: डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज़ का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है, तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है?
1: एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होके एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है, बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का BP बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इस को OPD बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं।
0: क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है, ये आप देखते हैं,
1: सही
0: पूरा
1: बात,
0: हिस्ट्री मालूम पड़ता है?
1: यस।
0: कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है।
1: जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले, कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल स्मोकिंग कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं, और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं।
0: ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है
1: राइट पेशेंट्स
0: वो
1: को
0: दूर
1: बहुत
0: हो जाता
1: टेंशन
0: है।
1: होती है।
0: अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा।
1: ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे एमडी के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं, ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा।
0: सुनते हैं।

0: दिल चाहता है, दिल तो बहुत चाहता है कि गाना लगातार चलता रहे, सुनते रहें, लेकिन गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का, दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वो कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे।
1: देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है, कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स हैं, दवाइयाँ हैं, अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। तो
0: हाँ
1: इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में, पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है?
1: देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इट्सेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है। तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस, डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है।
0: ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस आया है, कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज़ आ जाता है?
1: जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है, बट जरूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए।
0: अच्छा, परीक्षण के बाद यदि ये पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता है?
1: टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। पर अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है, हम कोई दवा टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयाँ मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा?
1: जी, सही बात है, इसी बात का

0: में दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा, बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं।
1: लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है।
0: डायबिटीज में सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
1: अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है?
0: डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या ये वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दें, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारे जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, इंटरनेट है, तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वजन, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है, इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है, और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं। एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें, तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, एक फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको, कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है?
1: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो।
0: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं,
1: सही
0: तभी
1: बात,
0: इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप?
1: ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल

0: हमारी लाइफस्टाइल है भागदौड़ वाली, मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती हैं कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफ़ी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूं, भगवान ने हमको दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो दूसरे से बाहर लो, बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो,
1: जी
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए।
0: जी, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफ़ी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर,
1: जी
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी इसके कारण मोर्टैलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहाँ पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं, तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं, इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है।
1: ओहो
0: तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में, स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम पेशेंट्स को, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है, और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है, ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट, जैसे कि मैंने बताया न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है, और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए, और फुटवेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है, और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पूटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है, वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है, तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें, तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते हैं तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने, और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोंड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री, तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है।
0: जी
1: स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल्स, शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं लें, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है, और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

0: साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
0: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि निकले और एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी

0: भरे रहते थे। बाएं देखो तो सिवाय चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो है जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: अच्छा है गीत आप सुनेंगे।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी तक आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम आज शाम।

कार्यक्रम आज शाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकृति का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज शाम, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसे ना खून का रिश्ता चाहिए, ना ही किसी औपचारिक पहचान की जरूरत होती है। ये रिश्ता दिल से बनता है, विश्वास से बढ़ता है और जीवन भर साथ निभाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। श्रोताओं, दोस्ती जीवन की वो खूबसूरत धूप है जो कठिन से कठिन समय में एक उम्मीद की किरण बन जाती है। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी खुशियों में मुस्कुराए और दुखों में हमारा हाथ थाम ले। किसी ने खूब कहा है, दोस्ती में शब्दों से अधिक भावनाएं बोली जाती हैं। मित्र वो है जो आपके अतीत को समझता है, आपके वर्तमान को स्वीकार करता है और आपके भविष्य पर विश्वास रखता है।

0: SBI फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम आज शाम में। हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ ही लोग दिल में जगह बना पाते हैं, वही लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो बिना कहे भी बहुत कुछ समझ लेता है। किसी ने बहुत खूब लिखा है, दोस्ती कोई शब्द नहीं, ये तो दिलों का विश्वास है। भीड़ में जो साथ निभाए वही सच्चा एहसास है। हंसी में जो हंस दे संग, आंसू में बन जाए ढाल, ऐसे मित्र का जीवन में होता है सबसे बड़ा कमाल। श्रोताओं, आज सोशल मीडिया के दौर में मित्रों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन सच्ची दोस्ती कहीं कहीं कम होती दिखाई देती है। सच्ची दोस्ती लाइक्स और कमेंट्स में नहीं, बल्कि उस चिंता में दिखाई देती है जब कोई दोस्त आपसे पूछता है, सब ठीक है ना,

श्रोताओं, जीवन में यदि एक एक सिर्फ एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझिए आप वास्तव में धनवान हैं, क्योंकि धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती जीवन भर साथ रहती है। दोस्ती एक दीपक है जो अंधेरों में राह दिखाती है। दोस्ती एक मुस्कान है जो उदासी को दूर भगाती है। दोस्ती एक विश्वास है जो हर मुश्किल में साथ निभाती है। और दोस्ती एक ऐसी दौलत है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम अपने मित्रों को याद करें, उनका आभार व्यक्त करें और उन रिश्तों को समय दें जो जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आपका रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेति विदा लेता हूं आपसे कार्यक्रम आज शाम से इस खूबसूरत नगमे के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज के प्रोग्राम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो साथी हर्ष। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और उमंग और उत्साह के साथ सुन रहे होंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की आज के सवाल के साथ। और आज का हमारा सवाल है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा हमारे आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने सही जवाब। सवाल का सही जवाब और जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों का नाम हम बताएंगे आपको प्रोग्राम के अंत में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी संस्था की जिसकी आवाज़ पिछले 9 दशकों से देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, लोगों को जोड़ रही है, जानकारी दे रही है और मनोरंजन भी कर रही है। जी हाँ, आज हैं भारत में आकाशवाणी प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। भारत में रेडियो प्रसारण की यात्रा 1936 से शुरू हुई, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। बाद में 1957 में इसे आधिकारिक रूप से आकाशवाणी नाम मिला, जिसका अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज। आकाशवाणी ने देश की आजादी से पहले और बाद के भारत को बहुत करीब से देखा। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में रेडियो ने लोगों तक महत्वपूर्ण समाचार पहुंचाने का कार्य किया। वहीं 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक मध्यरात्रि को देश ने स्वतंत्र भारत की पहली आवाज भी रेडियो के माध्यम से ही सुनी। अगर हम मनोरंजन की बात करें तो आकाशवाणी ने लाखों कलाकारों को मंच दिया। संगीत, नाटक, कविता, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इसने भारतीय संस्कृति को सहजने और आगे बढ़ाने का कार्य किया। दोस्तों, आकाशवाणी केवल समाचार और मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का भी सशक्त प्रतिनिधि है। भारत की अनेक भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करके इसने हर क्षेत्र और समुदाय को अपनी पहचान बनाए रखने का अवसर दिया है। यही कारण है कि आकाशवाणी को भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। 90 वर्षों की यह यात्रा केवल एक प्रसारण संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास की भी कहानी है। आकाशवाणी ने देश को जोड़ा है, लोगों की आवाज़ को मंच दिया है और विश्वसनीय सूचना का स्रोत बनकर अपनी एक पहचान, अलग पहचान बनाई है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के इन गौरवशाली 90 वर्षों पर हम सभी को गर्व करना चाहिए। यह केवल एक रेडियो सेवा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की यादों, भावनाओं और विश्वास का हिस्सा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
3: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी को लेकर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
4: कुछ ख्वाबों की बात,
5: कुछ अपनों का साथ,
4: नरम धागे से बंधे कुछ पन्नी
5: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
4: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
5: वाकई कुछ खास है आज,
4: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों, कुछ खास है आज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में जागरूक होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज का विषय है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। दोस्तों, यह दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकारी देना, इसके लक्षणों के प्रति जागरूक करना और इससे जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार वालों का मनोबल बढ़ाना है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सोचने, समझने, याद रखने, बोलने, चलने और शरीर की लगभग हर गतिविधि को नियंत्रित करने का काम यही करता है। ऐसे में यदि मस्तिष्क में कोई असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगे तो वह ब्रेन ट्यूमर का रूप ले सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में या उसके आसपास असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि है, जो दो प्रकार की हो सकती है। बेनाइन ट्यूमर, जो कैंसर युक्त नहीं होता और अपेक्षाकृत धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा है मैलिग्नेट ट्यूमर, जो कैंसर युक्त होता है और तेजी से फैल सकता है। हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, लेकिन दोनों ही प्रकार के ट्यूमर मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में जर्मनी की संस्था जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में खुलकर बात करें, समय पर जांच करवाएं और मरीजों को बेहतर सहायता मिल सके। दोस्तों, कई बार हम कुछ सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे किसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकते हैं। लगातार सिरदर्द होना, सुबह के समय सिरदर्द अधिक होना, बार बार उल्टी आना, धुंधला दिखाई देना, सुनने में परेशानी होना, बोलने में कठिनाई होना, संतुलन बनाने में परेशानी होना, ये सब लक्षण अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ये लंबे समय तक बने रहे तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, आज के समय में चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति के कारण आज ब्रेन ट्यूमर का इलाज पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है। उपचार कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे ट्यूमर का प्रकार, आकार और मरीज की स्थिति, जिसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर केवल शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पड़ता है। मरीज कई बार डर, चिंता और तनाव महसूस करते हैं। ऐसे में परिवार, मित्रों और समाज का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक मुस्कान, कुछ प्रेरणादायक शब्द और सकारात्मक माहौल मरीज के आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बीमारी से लड़ने में दवाइयों के साथ साथ हौसला भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर को पूरी तरह से रोकने का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना और किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज ना करना, इन सब के माध्यम से हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में युवा अपने करियर, पढ़ाई और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छा स्वास्थ्य ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। तो दोस्तों, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमें यह संदेश देता है कि जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। समय पर पहचान, सही इलाज और सकारात्मक सोच से इस बीमारी का सामना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों, सेगमेंट कुछ खास है आज में आज बस इतना ही।
4: कुछ ख्वाबों की बात,
5: कुछ अपनों का साथ,
4: नर्म धागे से बंधे कुछ पन्ने
5: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
4: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
5: वाकई कुछ खास है आज।
4: कुछ खास है आज।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट आज की बातचीत की ओर। आज की बातचीत में आज हमारे साथ हैं गुरांशी ठाकुर जी। तो गुरांशी जी कैसी हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गुरांशी जी श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए, फिर जारी रखते हैं हम आज की बातचीत।
1: मेरा नाम गुरांशी ठाकुर है और मैंने क्लास 12 93% से करी है स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल से, और अभी मैं बीएससी इन बायोलॉजी कर रही हूँ रजा डिग्री कॉलेज से, और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ।
0: जी बहुत खूब। गुरांशी जी आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड ओशन डे, तो इस पर आपके क्या विचार हैं?
1: विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, जैसे कि हमें पता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को महासागरों के महत्व के बारे में जागरूक करना है और संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। महासागर पृथ्वी पर जीवन का आधार है, वह न केवल जल का विशाल स्रोत है बल्कि जलवायु को संतुलित रखने, ऑक्सीजन प्रदान करने और करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2026 में विश्व महासागर दिवस की थीम री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशियंस रखी गई है। ये थीम हमें महासागर के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने और उसके साथ एक जिम्मेदारी तथा अच्छे संबंध बनाने का संदेश देती है। महासागर केवल संसाधनों का भंडार नहीं है बल्कि पृथ्वी के जीवन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, इसलिए हमें संरक्षण और संवेदन के लिए मिलकर कार्य करना होगा। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को ढकते हैं और दुनिया की लगभग आधी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। समुद्री पौधे ऑक्सीजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा महासागर वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी सहायता करते हैं। आज महासागर अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, समुद्री जीवों को शिकार और जलवायु परिवर्तन इनमें से गंभीर खतरे भी हो चुके हैं। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है जिससे समुद्री जीवों को बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। समुद्री कछुए, मछलियाँ और अन्य जीव इसको भोजन समझकर खा लेते हैं जिससे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। विश्व महासागर दिवस हमें यह याद दिलाता है कि महासागरों का स्वास्थ्य सीधे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि महासागर प्रदूषित होंगे तो इसका प्रभाव मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। इसलिए महासागरों की रक्षा केवल समुद्रीय तटीय क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरा मानवता का कर्तव्य है। 2026 की थीम री इमेजिन हमें महासागर के साथ अपने रिश्ते को नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है। हमें केवल महासागर से लाभ लेने की सोच से आगे बढ़कर उसके संरक्षण बनने की आवश्यकता है। ये थीम हमें सिखाती है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके भी महासागरों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि उपाय है अकल उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग करना, कचरे को सही जगह फेंकना, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादनों को अपनाना, इस दिन दुनिया भर में समुद्र तटों की सफाई करना, जागरूकता रैलियां, चित्रकला प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को महासागर संरक्षण का संदेश दिया जाता है। विद्यालय और महाविद्यालयों में भी छात्रों का महासागरों के महत्व और उनके संरक्षण के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। और जैसे कि हमें पता है भारत जैसे देश के लिए महासागर विशेष महत्व रखते हैं। भारत की लंबी समुद्री तटरेखा व्यापार, मत्स्य पालन और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय महासागर न केवल आर्थिक विकास में योगदान देता है, इसलिए भारतीय नागरिकों को भी महासागर संरक्षण के लिए प्रत्येक जागरूक होना चाहिए। अंत में विश्व महासागर दिवस हमें यह संदेश देता है कि महासागर केवल प्रति की धरोहर नहीं है बल्कि हमारे विश्व की सुरक्षा का आधार है। यदि हम आज महासागरों की रक्षा करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों का लाभ उठा सकेंगी। धन्यवाद।
0: बहुत खूब कहा गुरांशी जी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने वर्ल्ड ओशन डे के बारे में। आप रामपुर आकाशवाणी से जुड़ी और अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट आज की बातचीत, अब सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट करियर डायरी की ओर और बात करते हैं उसके पहले सब सेगमेंट स्टार्टअप की। दोस्तों करियर डायरी के सब सेगमेंट स्टार्टअप पे आज हम बात करने जा रहे हैं इथेनॉल कंपैटिबल इंजन ऑयल एडिटिव्स। ये एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया है जो उन विशेष रासायनिक एडिटिव्स का विकास और निर्माण करता है जिन्हें एथेनॉल मिश्रित ईंधन जैसे E20, E85 आदि पर चलने वाले वाहन

के इंजन ऑयल में मिलाया जा सके। इन एडिटिव्स का उद्देश्य इंजन को बेहतर सुरक्षा देना, जंग कम करना, घर्षण घटाना और इंजन की कार्य क्षमता बढ़ाना होता है। भारत में एथेनॉल मिश्रित ईंधन को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे जैसे E20 और भविष्य में E85 जैसे ईंधनों का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे ऐसे इंजन ऑयल और एडिटिव की मांग भी बढ़ती जा सकती है जो एथेनॉल के प्रभावों को ध्यान में रखकर बनाए गए हों। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। अब जानते हैं इस स्टार्टअप के मुख्य कार्य क्या होंगे। एथेनॉल आधारित ईंधनों के लिए विशेष इंजन ऑयल एडिटिव्स विकसित करना, वाहन निर्माता और लुब्रिकेंट कंपनियों को B2B सप्लाई करना, आफ्टर मार्केट में सीधे ग्राहकों को एडिटिव्स बेचना, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए प्रीमियम लुब्रिकेशन समाधान प्रदान करना। अब बात आती है दोस्तों की इस उत्पादन की आवश्यकता आखिर क्यों है। दोस्तों आपको बता दें कि एथेनॉल ईंधन के कुछ गुण सामान्य पेट्रोल से अलग होते हैं। यह नमी को आकर्षित कर सकता है, इंजन के कुछ हिस्सों में जंग की संभावना बढ़ सकती है, इंजन ऑयल की गुणवत्ता पर प्रभाव भी पड़ सकता है, लंबे समय तक उपयोग में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में विशेष एडिटिव्स इंजन की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इस स्टार्टअप में निवेश की। तो शुरुआती रिसर्च और डेवलपमेंट, केमिकल रिसर्च लैब, टेस्टिंग मशीन, सुरक्षा उपकरण, इन सब के लिए 5 से 6 लाख रुपए तक खर्चा हो सकता है। मिश्रण टैंक, पैकेजिंग मशीन, स्टोरेज सुविधा, लाइसेंस बनवाना, कंपनी रजिस्टर करवाना, इन सब के लिए भी लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। और अन्य खर्चों की बात करें तो जैसे अपनी डिजिटल मार्केटिंग करना, प्रदर्शन करना, व्यापार मेला लगाना, इन सब के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब बात आती है कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें कमाई कितनी हो सकती है। तो मान लीजिए दोस्तों उत्पादन लागत प्रति बोतल 120 रुपए है, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 30 रुपए है, तो कुल लागत 150 रुपए की हो सकती है। और यदि इसको बिक्री मूल्य 300 रुपए हो तो हमें पर यूनिट पर 150 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। यदि आप महीने में 10,000 यूनिट बेचते हैं तो आपको लगभग 15 लाख तक का प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों भारत एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बढ़ती वाहन संख्या, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकारी प्रयास और पर्यावरण अनुकूल ईंधनों की मांग इस क्षेत्र में नए व्यवसायों के लिए अवसर पैदा कर रही है। ऐसे में एथेनॉल कंपैटिबल इंजन ऑयल एडिटिव एक तकनीक आधारित स्टार्टअप विचार है जो एथेनॉल ईंधन के बढ़ते उपयोग के साथ भविष्य में अवसर प्रदान कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा करियर डायरी का सब सेगमेंट स्टार्टअप। चलिए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों अब बढ़ते हैं करियर डायरी के नेक्स्ट सब सेगमेंट साप्ताहिक रोजगार समाचार की ओर और जानते हैं हमारी पहली जॉब कौन सी है। हमारी पहली जॉब जारी की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर, जिसमें पदों की कुल संख्या है 543। बात करें अगर योग्यता की तो इस भर्ती के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है और ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क जर्नल OBC के लिए ₹1200 और EWS SC ST के लिए ₹1000 है। आवेदन तिथि की बात की जाए तो इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी अगली जॉब जारी की गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर, जिसमें पदों की कुल संख्या 12,256 है। बात करें योग्यता की तो इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 32 वर्ष निर्धारित की गई है। इस फॉर्म को भरने के लिए आवेदन शुल्क की बात की जाए तो जनरल OBC EWS के लिए है ₹100 फीस और फीमेल कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं है। आवेदन तिथि की बात करते हैं दोस्तों तो इस फॉर्म को भरने की शुरुआत 21 मई 2026 से हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

इसी क्रम में हमारी अगली जॉब है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से लोअर पीसीएस के पदों पर। पदों की कुल संख्या है 2516। बात करें योग्यता की तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात की जाए दोस्तों तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो EWS जर्नल OBC SC ST PWD कैंडिडेट सभी के लिए ₹25 शुल्क है। आवेदन तिथि की बात करते हैं दोस्तों तो 29 मई 2026 से इसके फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी अगली जॉब भी जारी की गई है UPSSC की ओर से एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर, जिसमें पदों की कुल संख्या 722 है। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th होना अनिवार्य है और 2025 का PET पैट का स्कोर कार्ड होना भी जरूरी है। आयु की बात की जाए तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जर्नल OBC SC ST EWS और PWD कैंडिडेट सभी के लिए ₹25 ही है। आवेदन तिथि जो है इसकी फॉर्म भरने की वो

4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

तो साथियों ये थे हमारे आज के सेगमेंट और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल के जवाब को जानने का। हमारा आज का सवाल था, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? और इसका सही जवाब है बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। दोस्तों जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब। मोहम्मद रफीक पवार, नंद कुमार ठाकुर, धर्मेंद्र छिपा, पुंजा जी नहावकर, चौधरी राजवीर सिंह, जॉन डी कैस्ट्रो, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, अजीत कसाना, सुदर्शन शाह, शकील अहमद इदरीसी, शाहनू खान, राम कुमार रेवाड़, धीरज भाई रेवाड़ी, शाहजी बोटके, देव शंकर तामूरिया, संजय ढींगिया, अरविंद कुमार, अनिल वी गोटके, लालगिरी गोस्वामी, बलवंत कुमार वर्मा, उत्तम सिंह, जगदीश ढाकर, सुरेश खुराना, सुरेश राठौर, प्रवीण चौहान, राधेश्याम पांडे, सुनील पाठक, जाकिर मंसूरी, नबी हसन अब्बासी, मोहम्मद फरमान, राजू मिगलानी, भुवन प्रकाश, कैलाश फूलमाली, नाजमुली होडा, जावेद, विनोद मुनत, उत्तम कुमार भगत, तुलसी मस्कीन, दीपेश वर्मा, सुरेश गगनेजा, सुरेश जायसवाल, फागुराम यादव, वीएल धाकड़, सोहन जोशी, निसार सलमानी, हुकुम करमरकर, गुरमीत सिंह, मास्टर विट्ठल सुरोशे, विजय रवि रस्तोगी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आमिर हुसैन, हाजी गफ्फार खां, गंगा सिंह रावत, श्री कृष्ण बाठे, एम अफजल ताज, आसिफ चौधरी, आकाश रस्तोगी, मोहम्मद आमिर अंसारी, एम खलील कुरैशी, सत्येन चंसोलिया पजोनिया, रवि कुमार, शाहनूर नूर अंसारी, मुजफ्फर अली खान, मोहम्मद यासीन अनजान, मुकेश कश्यप, ए सी मिश्रा, राजवीर सिंह यादव, भाई रफत साहब, दुर्गाराम साहू, लाडला जी। आप सभी थे वो श्रोता साथी जिन्होंने दिया है इस सवाल का सही जवाब। अब प्रोग्राम के हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, लेकिन जाने से पहले आइए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या है 244901। आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है patrmila@rampur.gmail.com। एक स्पेलिंग एक बार सुन लीजिए दोस्तों, PATRAMILAAIRRAMPUR rampur@gmail.com। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नए उमंग नए विषय और नई आवाज़ के साथ। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

थे आपके युवा मित्र हर्ष। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
1: आदित्य वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने कीर्ति चक्र को लेकर आए।
2: Moments like these will be remembered by one and all, present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
0: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair, एक योग्य उड़ान

0: अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बम्बई शेयर बाजार का समिति सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी

श्रोता ध्यान दें, आज व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल स्थगित कर दिया गया है। आज शाम 8 बजे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर के सफलतापूर्ण पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे दिल्ली केंद्र से एक विशेष कार्यक्रम, भोर से पहले भोर के बाद।

0: लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम।

चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में पहला गीत कलाकार साधना सरगम और सोनू निगम के स्वरों में फिल्म हम तुमसे।

0: फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पर चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म माय नेम इज खान से शफकत अमानत अली खान के स्वरों में।

फिल्म माय नेम इज़ खान के संगीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत लेके हाजिर है आज आपकी बहन ममता
1: और हेमपाल भैया।
0: स्वीकार करें हम दोनों की
1: राम राम।
0: हेमपाल भैया, आप तो पूरी आस्तीन की कमीज वह भी हल्की सूती और हल्के रंग की पहने हुए हैं, साथ ही सिर में अंगोछा भी बांधे हुए हैं और हाथ में पानी की बोतल लटकाए हुए चले आ रहे हो आकाशवाणी। हालचाल तो ठीक ठाक हैं?
1: हालचाल तो ठीक ठाक है, लेकिन जो इस समय जो लू चल रही है ना, हीट वेव, जहाँ से बचाव तो करना जरूरी है।
0: बिल्कुल हेमपाल भैया, बचाव तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम लू से बचे रहेंगे। तो इसमें जो गर्मी के दिन चल रहे हैं, इस समय बढ़त चली जा रही है दिन पर दिन, और अगर ध्यान ना रखो तो लू लगन या तबीयत खराब होने की संभावना हो सकता है, तो इसलिए सावधानी बरतनो बहुत ही ज़रूरी है।
1: इसीलिए हम अपने किसान साथियों से जाए कहते हैं कि देखो किसान साथियों, हम आप खेती करता हूँ, खेतन पर तो जाने पड़ा है, बगैर जाए तो ना गुजारो होए।
0: बिल्कुल भैया,
1: लेकिन जो प्राकृतिक एक जो किसान साथी इनका ला सबके लिए एक थोड़ा आपदा है एक किस्म की, तो इससे बचाव ही इसको सही जो है इसको नियंत्रण उपाय है। अगर हम बचाव करेंगे तभी हम इससे बच सकते हैं, अगर हम कोई दवा ववा को प्रयोग करेंगे तो जाको बचाव ना है। तो इसमें बचाव में कोई खास ज़्यादा ध्यान ना रखने, थोड़ी छोटी छोटी अगर बातों को ध्यान रख लेंगे तो इससे बचाव आसानी से ही जाए। जैसे आप खेत पर जा रहे हैं तो जो बात को ध्यान रखें हैं, सुबह को जल्दी चले जाएं और दोपहर में जल्दी आ जाएं घर।
0: हाँ भैया, 12 बजे से पहले अपने काम निपटा लें सवेरते सवेरते, और बाद में जो काम बचें उन्हें 4 बजे से देर रात तक निपटा सकते हैं, और इससे हमारी गर्मी को स्वास्थ्य पर कोई असर ना पड़े और कामों निपट जाए।
1: बिल्कुल, और जब खेत पर जाएं तो पानी की बोतल जरूर संग में ले जाएं। और साथी देखो, एक काम हमारे बहुत से किसान साथी कर लेते हैं, कुछ ना करते हैं, जैसे पानी की बोतल है ना, जो टाट की बोरी का टाट है, बाकी पानी की बोतल के ऊपर सिल लो और बाको सिल के खेत पर ले जाओ, तो बापा पानी डालत रहोगे आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, या फिर जमीन में गड्ढा में दबा दोगे तो बस पानी ठंडो रहता है।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात बताई है। आजकल तो हमारे भैया बहन कहा है फ्रिज को पानी निकालो पी लो, लेकिन जो हमारे प्रकृति को तरह इसे अपने ठंडो राखन को बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी जमीन में गड्ढा खोदो और बोतल ले, उसमें कपड़ा लपेटो और उसे गड़ाए दो,
1: बस
0: नुकसान होना देते।
1: हाँ, जब खेत पर ऐसे कोई काम कर रहा है, जब सत्ता रहे हैं तो भाई अपने जब निकालो गड्ढा में सर, भाई पानी पी लो। और जाके अलावा कुछ किसान साथी तो एक काम और कर लेते हैं, जैसे हर खेतन पर बोरिंग होता है,
0: हाँ भैया,
1: तो उन्हें बाकी बोतल के मोड़े पर वो बांध लो एक कोई डोरी वगैरह, और उन्हें जो बोरिंग होता है बोरिंग में लटका दी।
0: अच्छा,
1: हाँ बोरिंग में लटकाई थी उन्होंने 4-5 फीट नीचे तक, और जब पानी उन्हें पियन को भय हुए तो उन्हें बाहर निकालो और बस पी लो, तो पानी वहाँ में ठंडो रहता है। तो इस तरह से किसान साथियों आप ध्यान रखें और अंगोछा जरूर ले जाएं। अंगोछा से क्या होता है कि डायरेक्ट हवा ना लगती है कानन के लिए सिर के लिए, और काम तो करना ही पड़ता धूप में, तो इस बात को आप ध्यान रखें। उसको हो सके तो थोड़ा थोड़ा बाकी गीलो कर लें, तो बस जो हवा आ गई वो ठंडी रहा सिर में ठंडक रही। तो इस तरह से किसान साथियों आप ध्यान रखें, और इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत हो तो ORS बाजार में मिल जाता है, बस बायोजुए मेडिकल से लेकर उसको प्रयोग करें। इसके अलावा किसान साथियों देखो, पहले के ज़माने में पता है हमारे हम छोटे छोटे हमारी दादी क्या करती ना बहन,
0: हाँ हाँ,
1: कि जो अमियाँ होती हैं आम, जो कच्ची आम,
0: हाँ, उसको पना बना ले,
1: उसको पना बना लेते रहे। अब तो चलो पना की नई नई विधि आएगी, पहले का हो तो बाकी गुठली हम भूंज लेते चूल्हे में, अब भूंज के बाकी गुठली और खा लेते, तो हमारी दादी कहती है लू ना लगती है।
0: तो देखी जाए जो आम को सीजन चल रहा है वो गर्मी में ही चलता है, और वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता
1: है। देखो भगवान ने सब चीज़ ऐसी ही बनाई है, जब बीमारी दी है तो बाको उपाय भगवान ने दो है, तो लेकिन बाको संजोए कर रखोगे तभी।
0: तो कहना है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम तो आम है ही फायदे वालों, लेकिन उसकी गुठलियाँ भी बहुत फायदे वाली।
1: इसलिए प्रकृति ने जो भी चीज़ दी है बाको समझना चाहिए और बाको उपयोग समझना चाहिए, उसको अगर सही तरह से प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए वो लाभ करे, अगर हम दुरुपयोग करेंगे उसको तो वो हमें हानि देगी, थोड़ी बहुत हानि ना देगी, बहुत हानि देगी, हमें देगी तो देगी, हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लोग हानि देगी। इसके अलावा जैसे बेसन है, बेसन को पीस लें आप, वैसे जो चना होता है
0: उन्हें भून के
1: और पीस लें घर पे, या फिर मोल बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है सत्तू को, आटो बोलते हैं ना चना को, तो बाय लाइक बाको अगर पीकत रहेंगे तो आसानी से आप लू से बचे रहेंगे।
0: और भैया एक बात और है कि हमारे भैया बहन ने जो हमारे पशु हैं बेजुबान, उनको भी पालते हैं और उनको भी ध्यान ऐसे ही रखने पड़ता है जिस तरह से हम अपना ध्यान रखते हैं। बेउ सुरक्षित रहें, उनको जो लाभ है उनसे वो हमें अच्छी तरह से मिलता रहे, तो इसके लिए उनको भी ध्यान रखने हैं इस गर्मी में।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो हर एक गांव में, शहरन में तो अब नाएँ ज़्यादा है, गाँव में तो अब हर जगह देखी जाए कि इधर उधर पेड़ होते हैं, और विशेषकर जो पशुपालन है उनके घर में या फिर उनके चौपाड़ वगैरह पेड़ जरूर होते हैं, तो वे खुद ही बैठे हैं उसके
0: अच्छी तरह से मिल रहा है, तो इसके लिए उनको भी ध्यान रखने हैं इस गर्मी में।
1: बिल्कुल सही बात है। देखो हर एक गांव में, शहरन में तो अब नाएँ ज़्यादा है, गाँव में तो अब हर जगह देखी जाए कि इधर उधर पेड़ होते हैं, और विशेषकर जो पशुपालन है उनके घर में या फिर उनके चौपाड़ वगैरह पेड़ जरूर होते हैं, तो वे खुद ही बैठे हैं उसके

0: गर्मी में चाहे बच्चा रोवे ना रोवे, समय समय पर उसे पानी जरूर पिलाते रहे, क्योंकि वे तो कह तो सकते ना, और जब प्यास लगे तो जल्दी रोएंगे उन्हें, इसलिए उन्हें पानी आप अपने खुद दिमाग में भर लें कि अरे हमने अभी इतनी देर पहले बच्चा के लिए पानी पिलाओ, अब बच्चा फिर से पानी में प्यास हुई हुए, तो समय समय पर बच्चन को पानी पिलाते रहें, अपने बड़े बूढ़न को ध्यान रखे रहें कि पतो ना चले, पतो चले कि रात में सोए गए और उनके ढंग पानी ना रखो तो सुबह को तो वे बोल ही ना रहे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत। तो आप जो पंखा लगावे अपने लोग लगावे पशुओं को लगावे, लेकिन जो बड़े बूढ़े जो दलान में एक बाजू को पड़े रहते ना, उन्हों को पंखा वगैरह लगा देना चाहिए।
1: तो हेमपाल, पर्याप्त पानी पिए, प्यास ना हो पर भी हर घंटे में कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिए, और खास बात जा है कि अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो पानी पी के निकलें और पानी साथ में लेके निकलें, जिससे लू लगन की संभावना कम रहेगी।
0: किसान साथियों, देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जैसे अभी हमने कही कि बार बार की पानी को बहुत ध्यान रखें, पानी पिए, लेकिन जब आप खेत पर काम करें या फिर कहीं बाहर से आवें तो तुरंत आप पानी ना पिए, थोड़ो शरीर को ठंडाने के बाद ही आप पानी पिए। अगर तुरंत पानी पी लो तो उससे अनेक तरीका की परेशानी ही जाती है, जैसे किसी को सर्दी ही जाती है, जुकाम ही जाती है, या फिर और भी कई तरीका की दिक्कतें ही जाती हैं, तो थोड़े शरीर को सप्ताह के यानी ठंडा के शरीर को तभी आप पानी को इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल हेमपाल भैया, और अगर कोई भी समस्या उन्हें दिखाई पड़े तुरंत ठंडी या छाया में मरीज को लिटाए दें अगर कोई भी दिक्कत आ होता है, और उनके शरीर पर ठंडो पानी डालें और तौलिया से उनके शरीर को पोंछ दें, अगर कोई भी अगर गर्मी से हो जाता है किसी इंसान को तो उसको ध्यान रखें।
0: बिल्कुल बहन, देखो हमारी सरकार भी बहुत तो अनेक प्रचार प्रसार माध्यम से कह रही है कि अपने पशु पक्षियों के लिए हीट वेव से बचावें, अपने लोग बचा कर रखें। इसके अलावा हमारी सरकार अनेक तरह की अभियान चलाए गए, तरह तरह की बातों को हम तक पहुंचाती है, जिससे हमारे हमें सबको लाभ मिले। इसी तरह से हमारी सरकार इन दिनों कह रही है कि खेत बचाओ भूमि बचाओ।
1: बिल्कुल हेमपाल भैया, इस जन आंदोलन को पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक लागू करो जा रहा है, इसमें केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। तो देश भर में किसान भैयन को जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी और प्रदर्शन करके आयोजित करो जा रहा है।
0: बिल्कुल किसान साथियों, देखो हमारी सरकार समय समय पर हम आपको सचेत करती रहती है, और इस समय भी कर रही है कि खेत बचाओ भूमि बचाओ। जाओ को मतलब यह है कि हम केवल इन बातों को के अभियान के रूप में ही आपको ना लें, हम क्या करें अपने खेतों को बचावें, आप खेतों को कैसे बचावें हमारी सरकारों का मतलब है। देखो साथियों, हम बतावें जाओ सरकार को जो मतलब है, और हमारे वैज्ञानिकों को जो मतलब है कि हम खेत को क्या करें, जैसे जो इस समय हम अंधाधुंध रसायनों को प्रयोग कर रहे हैं ना,
1: उनको कम करें,
0: उनको धीरे धीरे कम करते जाएं। और अगर आपके पास समझ है, बूझ है, और आप थोड़ा जोखिम उठाना चाह रहे हैं, तो आप प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तरफ बढ़ें, जिससे हमारी भूमि बचाई और हमारे खेत बचेंगे, हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी।
1: और वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, जैविक खाद और हरी खाद को उपयोग अधिक से अधिक करें।
0: बिल्कुल, तभी तो हमारी खेती जैविक होगी।
1: और मिट्टी बचाओ खेती बचाओ किसान भैयन को मुख्य अभियान है, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, इसके आधार पर जो पोषक तत्व हैं उनको प्रबंधन कराना भी हमारा कर्तव्य है अपने खेती के प्रति। और जब हमारो मिट्टी की जांच से पता चल जाएगी कि किन पोषक तत्वों की जरूरत है, उसी के हिसाब से हम उनकी पूर्ति करते हैं, तो हमारी भूमि की उर्वरा क्षमता बरकरार रहता है।
0: बिल्कुल साथियों, देखो मिट्टी की जांच करावें, साथ ही साथ हम अपनी भूमि को बचाने के लिए खूब पेड़ लगावें, उनको संजोए कर रखें, जो ना कि खाली पेड़ लगाए दो फोटो खिंचा लो कि साहब हमने जो है पर्यावरण में सहयोग कर दो। लेकिन साथियों, इस बात को आप फोटो के तौर पर ना लें, आप दो चार पौधे हर साल लगावे, सरकार तो कहती है एक पौधा लगावे, एक ना लगावे, कम से कम दो चार पौधे लगावे, और कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा ना, अगर हमने पांच पौधे लगाए तो एक पौधा तो हमारा कम से कम सुरक्षित ही जाए।
1: और हेमपाल भैया, अगर कोई घर में काम काज है, जैसे मान लो शादी है बिटिया की या बेटा की, उसके उस दिन पर लगा दो तो यादगार बनी रहेगी, या जन्मदिन है बच्चे को उस दिन पर लगाओ तो वो दोनों यादगार बनी रहेगी, जब हमने उस दिन लगाओ तो हमारा पेड़ तो उस दिन को है, तो उससे यादगार बनी रहेगी और हमारी हरियाली भी बनी रहेगी।
0: देखो बहन, अब हमारे किसान साथी पर तो क्या कह रहे होंगे, इन्हें पेड़ लगाने के लिए कह दियो, खेत बचाने के लिए भूमि बचाने के लिए कह रहे हैं, जाको का संबंध है। तो साथी देखो, जाको जो संबंध है, जब आप खेत में पेड़ लगाओगे बड़े बड़े, तो उससे जो भूमि को कटान ही जाता है वो ना हो।
1: तो भैया ये तो ही हमारी बातें खेती बाड़ी से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित। इसके अलावा हमारे किसान भैया देखो कुछ ना कुछ खेती से जुड़ो वो व्यवसाय भी करते हैं और करना भी ज़रूरी है क्योंकि अकेले खेती से हमारा खर्चा पूरा ना हो पा होता है। तो कुछ भैया बहन मछली पालन पशुपालन मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन करते हैं। तो हिमपाल भैया कुक्कुट पालन की

0: बात करें तो इसमें रोग भी होते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसी से संबंधित एक कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता है, कुक्कुट रोग प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल और आपसे बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र भट्ट, जो कि हमें पंतनगर से प्राप्त हुई है। तो भैया बहन के बीच पहुंचा होते हैं जो जानकारी।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी। मैम आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: मैम। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कि जो कुक्कुटों में जो एक रोग होता है रानीखेत रोग, तो ये रानीखेत रोग मैम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और ये क्यों होता है।
2: रानीखेत रोग एक बहुत ही घातक रोग है और ये विषाणु जनित रोग है। तो पहले मैं ये बता दूं कि इसको रानीखेत रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में जो ये उत्तराखंड हमारा स्टेट है उसमें जो रानीखेत नाम की एक जगह है टाउन, तो वहां पर पहले ये पहचाना गया रोग, तो इसलिए इसको रानीखेत रोग कहते हैं। और इसको जो है न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं। तो इंग्लैंड में एक न्यूकासल एरिया है तो वहां पर ये पहचानी गई थी, तो इसलिए इसको न्यूकासल डिजीज भी कहते हैं। और इसको जो है स्यूडो फाउल प्लेग भी कहते हैं। प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत जल्दी फैलती है और बहुत ज्यादा मृत्यु दर करती है। तो फाउल प्लेग वैसे तो एवियन इन्फ्लुएंजा को कहते हैं, इन्फ्लुएंजा जो बहुत तेजी से फैलता है और मृत्यु दर करता है, तो ये भी जो है बहुत तेजी से फैलता है और मृत्यु दर करता है, तो इसलिए इसको स्यूडो फाउल प्लेग कहते हैं। डॉयले नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको पहचाना था पहले, तो इसलिए इसको डॉयलेज डिजीज भी कहते हैं। तो ये एक विषाणु जनित बहुत ही घातक रोग, तेजी से फैलने वाला रोग है जो मुर्गियों में बहुत ज्यादा मृत्यु दर करता है। ये है इस रोग के बारे में।
1: तो मैम अगर हम बात करते हैं इस रोग की, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं चूजों में?
2: रोग के लक्षण से पहले हम ये बता सकते हैं कि ये रोग फैलता कैसे।
1: जी जी जी।
2: तो फैलने का जैसे मैंने बताया कि बहुत तेजी से फैलता है हवा के द्वारा, तो ये जो है इन्हेलेशन एयर के द्वारा फैलता है, दूषित हवा में सांस लेने से। जैसे एक बार बीमारी हुई तो हवा से ये विषाणु फैल गए, जो आपके दूसरे बाड़े में मुर्गियां हैं उसको अटैक करते हैं फिर ऐसे करके, तो बहुत तेजी से हवा के द्वारा फैलता है। और दूसरा इंजेक्शन, मतलब संक्रमित भोज्य पदार्थ, संक्रमित जो हम दाना दे रहे हैं उससे हो जाता है, या पानी संक्रमित पी रहे हैं चूजे उससे हो जाता है, या संक्रमित मुर्गी के कांटेक्ट में जो है दूसरी स्वस्थ मुर्गी आ रही है तो उस स्वस्थ मुर्गी जो है उस संक्रमित मुर्गी के कांटेक्ट में आने से रोग ग्रसित हो जाती है। तो इस तरह से ये रोग जो है फैलता है। कई बार जो है जैसे बाड़े में मुर्गी जो है रोग ग्रसित हो गई है, उसमें जो है कोई दूसरी वाइल्ड बर्ड आ गई, जैसे कई बार कोई आपका मोर वोर घूम जाता है, या कभी नेवला घूम गया, या जो है गोरैया वगैरह भी घूम जाती है, तो वो एक संक्रमित बाड़े से दूसरे बाड़े में चले गई तो वहाँ रोग हो। तो मतलब जो दूसरे जानवर जो कुत्ता घूम गया वहाँ बिल्ली घूम गई, उससे भी ये रोग हो जाता। कई बार जो है ये गंदे जो पानी पिलाने वाले जो बर्तन यूज कर रहे हैं उससे भी हो जाता है, खाना खिलाने वाले जो बर्तन है उससे भी हो जाता है। तो इस तरह से ये रोग जो है फैल जाता है। फिर आपने जैसे लक्षण की बात करी, तो ये इस विषाणु के एक्चुअल में तीन स्ट्रेन होते हैं, एक लैंटोजेनिक होता है, एक मेसोजेनिक और एक वैलोजेनिक। लैंटोजेनिक होता है जिसमें कि आपके सिम्टम नहीं आते, मुर्गी ग्रसित होती है लेकिन सिम्टम इतने ज्यादा नहीं होते, उसमें केवल अंडा उत्पादन जो है कम होता, मतलब कोई ऐसा लक्षण नहीं आ रहा लेकिन अंडे का उत्पादन गिर जाता है। तो ये ऐसा स्ट्रेन होता है जिससे हम वैक्सीन बनाते हैं इस रोग की, ताकि जो है सिम्टम ना आए लेकिन मुर्गी में जो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाए। तो इस स्ट्रेन से ही हम लोग जो है वैक्सीन बनाते हैं इस रोग की। दूसरा जो है हम एक होता है मेसोजेनिक, मतलब कि लैंटोजेनिक से ज्यादा सिम्टम जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो ऊपर वाला स्ट्रेन होता है वैलोजेनिक उससे कम। मेसोजेनिक मतलब बीच के सिम्टम आते हैं इसमें, जैसे इसमें श्वसन तंत्र जो है ग्रसित होता है तो श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण आते हैं, निमोनिक सिम्टम्स। तो निमोनिक सिम्टम्स यही हो गया, आपका नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसमें ओपन माउथ ब्रीदिंग होती है, मतलब मुंह बीक खोल के जो है मुर्गी जो है सांस लेती है। और फिर जो है इसमें नर्वस सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि तंत्रिका तंत्र संबंधी सिम्टम्स, जैसे आपका मुर्गी इधर उधर घूम रही है और जो है दम पैरालिसिस हो गया, गिर गई, मर गई, तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स आते हैं। फिर जो है आपका वैलोजेनिक स्ट्रेन होता है, तो इसमें भी जो है इसी तरह के सिम्टम आते हैं लेकिन ज्यादा एक्यूट फॉर्म में होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा उसमें निमोनिया हो गया, मतलब उसमें है निमोनिया लेकिन इतना कम है, पहले की, इसमें बहुत ज्यादा हो गया, तो इस तरह से होता है उसमें। और बहुत ज्यादा नाक से पानी आ रहा, नाक से आ रहा, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, और जो है एकदम मुर्गी जो है मर जाती है। तो इस तरह से ये वैलोजेनिक स्ट्रेन में होते हैं। बाकी इसमें जो है आपके डायरिया, एक इसमें डायरिया होता है, ग्रीनिश वॉटरी डायरिया, मतलब हरे रंग की फीसिस आती है, हरे रंग का मल सर्जित करती है, तो ये होता है, मतलब हरे रंग का डायरिया, और साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम, मतलब श्वसन तंत्र संबंधी सिम्टम, और नर्वस सिम्टम जो है इसमें बाद में आता। तो ये इस तरह के इसमें लक्षण जो है
1: जी। तो मैम, इस रोग से बचाव के लिए जो हमारे कुक्कुट पालक भाई हैं, क्या उपाय करें मैम?
2: तो बचाव के लिए यही है कि आप अपनी मुर्गियों को संक्रमित दाना पानी ना दे, मतलब साफ सुथरा दाना पानी दे, और बाड़े में समुचित प्रकाश की हवा की व्यवस्था हो, ऐसा उसमें बाड़ा रखना चाहिए। तीसरा, बचाव का सबसे जो महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि उसमें वैक्सीनेशन कराएं, टीकाकरण। इसकी बहुत सारी वैक्सीन आती है बाजार में रानीखेत डिजीज की, जो सबसे पहले 0 डे पे लगती है इसमें वैक्सीन, जैसे चूजा बाहर आया अंडे से तो वैक्सीन लगती है, फिर 15 दिन पे लगती है, फिर 30 दिन पे लगती है, ऐसे उसकी 2-3 बूस्टर डोज लगती है। तो उसमें टीकाकरण जरूर कराना चाहिए हमारे मुर्गी पालक भाई हैं, उनको टीकाकरण कराने से जो है मुर्गियों को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसके कई स्ट्रेन आते हैं टीके के, जैसे F1 स्ट्रेन है, R2B स्ट्रेन है, लासोटा स्ट्रेन है, कई स्ट्रेन की जो है वैक्सीन आती है। तो वो वैक्सीन बाजार से लेके, कई तो आंख में डालने वाली होती है वैक्सीन, कई जो है पानी में देने वाली होती है, तो उसके अलग अलग कंपनी के अलग अलग नेम से आती है, और उसके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, और उसको देने का भी अलग अलग तरीका होता है उस वैक्सीन को। तो उस हिसाब से टीका हमारे जो मुर्गी पालक भाई हैं अपने मुर्गी को लगाएं, तो उससे ये रोग बचाव कर सकते हैं। तो मेन जो इसका बचाव का तरीका है वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण
1: जी। और मैम, अगर हम उपचार की बात करें तो?
2: उपचार के लिए इसका जो है, अब जब रोग हो गया, वायरल डिजीज है, वायरल के लिए सच कोई स्पेसिफिक दवाई तो नहीं है जो ठीक वायरस को किल करे, लेकिन थोड़े दिन, जैसे वायरस का एक बार संक्रमण हो गया तो हम अगर उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो जीवाणु का इन्फेक्शन है, वो रोक दें, तो वायरस का इन्फेक्शन भी चला जाता है। कहने का मतलब ये है, वायरस का इन्फेक्शन जो है कुछ दिन बाद जो है अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैसे मनुष्यों में वायरल बुखार होता है, डॉक्टर कहता है 15 दिन तक रहेगा, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम जो है ट्रीटमेंट, जो उपचार करते हैं हम, दूसरे जो जीवाणु है वो ना लग जाए उसका उपचार करते हैं। तो उसके लिए जो है हम इसमें, जैसे एम्पिसिलीन है, और जैसे आपका क्लोरमफेनिकोल है, कई एंटीबायोटिक है जो वो यूज करते हैं मुर्गियों में, तो वो अलग अलग कंपनी के ट्रेड नेम से आती हैं, पानी में घोल के देने वाली होती हैं, या जो है आपका भोजन में देने वाली होती है, तो ऐसी एंटीबायोटिक हम यूज करके जीवाणुओं का संक्रमण रोक सकते हैं। दूसरा जो है, जैसे मैंने इसमें बताया निमोनिया वगैरह होता है, तो ऐसी दवाई देनी चाहिए कि जो उससे श्वसन तंत्र उसका सही हो। कई इसमें आयुर्वेदिक दवाई भी आ रही है आजकल, तो वो मुर्गियों में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं, और दूसरे जो संक्रमण जो मुर्गियों में हो रहे हैं उनको लेने से मुर्गियों को बचाते हैं। तो मतलब मुर्गी जो है संक्रमण के लिए सुगराई नहीं रहती, तो ऐसे इम्यूनो बूस्टर, इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी कहते हैं उसको, वो देने चाहिए मुर्गियों को। तो जब मुर्गियों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसमें संक्रमण कम हो, तो इस तरह से हम ये दवाई देके उनका उपचार कर सकते हैं। बाकी जैसे मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, मीट उत्पादन के लिए, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें जो है हम लीवर एक्सट्रैक्ट जो है उसको डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लीवर सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, जैसे अभी आपने सुना डॉक्टर सीमा अग्रवाल जी को, अंत में मैम चलते चलते आप हमारे जो किसान भाइयों उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: इस रोग का जो है निदान जो करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रानीखेत रोग हो गया तो मुर्गी मरती है, अब वो डॉक्टर के पास लेके आते हैं कि भाई इसको कैसे पहचाने। तो इसको पहचानने के लिए जब मुर्गी हम खोलते हैं तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोवेंट्रिकुलस है, मुर्गियों में 2 तरह के पेट होते हैं, एक तो होता है मस्कुलर पेट जो दाना खाती है उसका जैसे ग्राइंडर की तरह वो एक्ट करता है, और दूसरा होता है एक ग्लैंडुलर स्टमक जहाँ पर पाचक रस निकलते हैं और जो दाने का पाचन होता है, जो खा रही है खाना उसका पाचन होता है, तो उसको हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं जहाँ पर पाचन होता है। उसमें जो है उसकी जो ग्लैंड होती है, प्रोवेंट्रिकुलस हम काटेंगे तो ऊपर जो ग्लैंड होती है उसपे ऐसे लाल रंग के आपको चकत्ते से दिखते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलर हेमरेज। तो इसका ये मुख्य जो है इसमें एक लक्षण होता है कि प्रोवेंट्रिकुलर के टिप्स ऑफ प्रोवेंट्रिकुलर ग्लैंड कहते हैं, प्रोवेंट्रिकुलर की ग्लैंड के टिप्स के ऊपर जो है आपको हेमरेज होता है, रक्त का स्राव होता है, जिससे हमें रक्त के चकत्ते से दिखते हैं। तो एक तो ये इसका मेन जो है इसका पहचानने का चिन्ह है। दूसरा है इसमें एक छोटी आंत का और बड़ी आंत का जो जंक्शन होता है, जो मिड पॉइंट होता है, वहां पर जो है लाल रंग के चकत्ते दिखते हैं, मतलब की हेमरेज होता है, इससे हम इसको पहचानते हैं। तीसरा जो है इसमें जो आंतों के ऊपर ऐसे बड़े बड़े अंडाकार लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, तो उससे हम पहचान पहचानते हैं, क्योंकि कई बार प्रोवेंट्रिकुलस की जो ग्लैंड्स के ऊपर लाल चकत्ते नहीं मिलते, तो हम जो है आंतों के ऊपर अगर लाल चकत्ते हैं और फेफड़े हैं लाल और सॉलिड हो गए हैं, तो मतलब उसमें निमोनिया है, तो हम उसको पहचान कर सकते हैं। तो मेन जो इसको पहचानते हैं वो सविच्छेदन करके मुर्गी के अंदर प्रोवेंट्रिकुलस पे अगर हेमरेज है या आंत में हेमरेज है या छोटी आंत बड़ी आंत के जंक्शन पे हेमरेज है, वो लक्षण पहचान के

0: निमोनिक है लंग्स, तो वो पहचान के हम इस रोग का जो है निदान करते हैं। तो मतलब एक तो रोग अगर जल्दी से फैल रहा है, मृत्यु दर कर रहा है, उससे पहचानते हैं। फिर जो है इसमें ग्रीनिश डायरिया होता है उससे पहचानते हैं, और आपके श्वसन तंत्र संबंधी लक्षण आते हैं उससे पहचानते हैं। फिर जो है नर्वस सिम्टम्स आते हैं कि तंत्रिका तंत्र संबंधी लक्षण की इधर उधर घूम रही है, और कभी बहुत ज्यादा वो एक्साइट हो रही है, कभी एकदम पैरालाइज हो जा रही है, तो उससे पहचानते हैं। फिर जो है फाइनली मर रही है तो उसका शव विच्छेदन करके इन आंतरिक अंगों में जो मैंने बताया जो आपके हेमरेज मिलते हैं, रक्तस्राव मिलता है, उससे पहचानते हैं। तो इस रोग को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोर्टिलिटी मृत्यु दर जो है और भी कई रोग हैं मुर्गियों के उसमें बढ़ जाती है। तो अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, वो जो है हम पोस्टमार्टम करके अंगों में रक्तस्राव देख के और फिर वायरस इसमें देखते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं इसमें, कि जिससे हम रक्त में ये वायरस है करके विषाणु है उसको पहचानते हैं।
1: जी तो मैम, आपने इतने व्यस्त कार्य से समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: भाई बहनों। अभी आपने डॉक्टर सीमा अग्रवाल से जानो कि कुक्कुट रोग प्रबंधन कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान रखें, इस पर विस्तार से जानकारी डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने दी और आपसे जानकारी ली श्री राजेंद्र भट्ट ने। साथियों हम आपको बता दें जो जानकारी हमें पंतनगर से प्राप्त भई। और साथियों देखो अब कुछ आपको गानों बजानों कर देते तो सुनवाता आपको स्नेहा की आवाज़ में एक लोकगीत। तो साथियों हम लोकगीत सुनवा, उससे पहले कुछ जरूरी संदेश हैं उन्हें सुनवा देते हैं।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: हिमपाल भैया, बहुत ही बढ़िया लोकगीत सुनवाओ हमारे भैया बहन के लिए। हमें उम्मीद है कि जरूर पसंद आओ होएगो। और अब कार्यक्रम में भैया कृषि संकेत के लिए जो हमारे भैया बहन होते हैं अनुभवी, उनकी जानकारी हम अपने भैया बहन के बीच पहुँचाते हैं। तो आज भी हमारे साथ हैं अनुभवी कृषक जिनसे हमने जानकारी जुटाई है। तो आज के सफल कृषक हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे कौन सी बातें की हैं वे अपने भैया बहन के बीच पहुँचाते हैं।
1: तो भैया, सबसे पहले तो हम आपको परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना परिचय बताइए।
2: जी, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है,
1: जी
2: रोग गजरोला, जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ।
1: सत्येंद्र जी, आपको मुख्य काम कहाँ है, किससे जुड़े हुए हैं?
2: मुख्य कार्य तो हमारा कृषि कार्य है। कृषि
1: कृषि कार्य में कितने साल हो चुके हैं आपको जुड़े हुए?
2: कार्य में मुझे 10-12 साल हो गए हैं।
1: बात करें आपकी शिक्षा की, तो आपने कहाँ तक प्राप्त की है?
2: शिक्षा मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है।
1: जी, तो आपका खेती से इतना लगाव है, कोई और काम भी दूसरा कर रहे हैं साथ में खेती के? जी
2: साथ में जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको
1: जी
2: मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी देता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, अपने खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही जो अपने मुख्य जीवन से जुड़े हो, कही जाए एक हमारो हाथ है शिक्षा, उसको दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको कितना समय हो चुका है इसको सहयोग देते हुए?
2: शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगभग 10-15 साल हो गए हैं। इसी के साथ साथ खेती में भी 10-15 साल हो गए हैं।
1: जी
2: दोनों को मैं बैलेंस में लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा है कि शिक्षा हमारा दिमाग का विकास करती है और खेती हमारे शरीर का विकास करती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही हमारी बॉडी होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कृषि हमारा राइट हैंड है तो शिक्षा हमारा लेफ्ट हैंड है। दोनों में बैलेंस बना रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश विकसित हो सकता है।
1: तो आप एक पढ़े लिखे युवा किसान हैं, साथ ही आप एक शिक्षक भी हैं, बहुत अच्छी तरह से आप बैलेंस कर रहे हैं दोनों का। तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं खेती की, कि खेती में इस समय आप कौन से कार्य हैं जिनको आप कर रहे हैं?
2: इस समय मेरे खेती में
1: जी
2: एक तो धान की फसल के लिए मैं खेत तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही गेहूं काटे थे उसके बाद गहरी जुताई करने के बाद कुछ समय बाद मैंने उसमें ढैचा बो दिया था ताकि जैविक खाद बन सके। नर्सरी में मैंने धान की उन्नत जो पूसा बासमती के नाम से आती है उसकी नर्सरी तैयार करने जा रहा हूँ। मैं एक दो दिन में हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग ज्यादा किया जाए, जिससे कि धरती की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे और हमें अच्छा पौष्टिक आहार भी मिल सके।
1: बहुत अच्छी बात है जी। सत्येंद्र जी, हम जानना चाहेंगे, आपने जो गहरी जुताई की है खेत की, तो उससे कारण से क्या फायदा है?
2: आजकल क्या है कि जल्दी के चक्कर में हम रोटेटर से जमीन जोत देते हैं
1: जी।
2: जो पूरी गहराई तक नहीं जा पाती है। जब हम हैरो से खेत जोतते हैं तो उसे गहरी जुताई से हमारे जो नीचे की जो थोड़े बहुत हानिकारक कीट हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो खरपतवार हैं वो भी ऊपर आके फिर सूरज की गर्मी से सूख जाते हैं, जो कीट हैं उनका भी सफाया हो जाता
1: है। अच्छी बात बताई है कि आपने जो गहरी जुताई है उसके बहुत लाभ हैं। इसी तरह से बात करिए आपने हरी खाद की, जो ढैंचा वो है, तो ढैंचा आपको कितने दिन को हो चुका है?
2: ढैंचा हो गया है हमारा लगभग लगभग 15-20 दिन का। हम इसको जोत के फिर उसमें धान की फसल उगाएंगे।
1: तो इससे आपको खेती में क्या लाभ दिखाई पड़ो?
2: जो हमारी आने वाली फसल होती है ना ढैचे के बाद जो हम बोते हैं उससे काफी लाभ मिलता है। एक बार मेरे 7 बीघे में 25 से ऊपर क्विंटल धान हुए थे और अच्छी कीमत के बिके थे, पूसा बासमती ही थे। उस समय भी मैंने ऐसा किया था कि 50% में गन्ना था, तो गन्ना डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा मैन था। उसके बाद दूसरे खेत में मतलब गेहूं कटने के बाद उसी खेत में मतलब 50-50 में उसके बाद मैंने उसमें ढैचा लगाया और ढैचे के बाद एक साल करने के बाद जब मैंने पूरे खेत में धान बोए तो उसमें अच्छी फसल हुई।
1: तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी है अपनी हरी खाद खेत में डाल रहे हैं, साथ ही आप गोबर की भी तो खाद डाल रहे होंगे भैया?
2: हाँ, गोबर की भी डालते रहते हैं समय समय पे और साथ में एक तीसरा कार्य और करते हैं, फसल चक्र जरूर अपनाते हैं। तो रोटेशन से हमारा क्या है कि एक फसल की जड़ दूसरी फसल का खाद का काम ऑलरेडी करती है, तो इसलिए हमें फसल चक्र भी अपनाते रहना चाहिए एक फसल के बाद दूसरी। अब क्या है कि हमारे कुछ किसान भाई ऐसे हैं कि गन्ना बो रहे हैं हमारे वेस्ट यूपी में, तो गन्ना ही एक खेत में गन्ना, फिर अगले साल भी गन्ना, इस तरीके से गन्ना ही गन्ना बो रहे हैं। तो उससे क्या है कि उनको निगेटिव तो नहीं बोलूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर गन्ना ही बोते रहेंगे आने वाले जो भावी पीढ़ी है उसके लिए हम जो है जमीन को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे। जो हम चाहते हैं कि हमारी जो भूमि है वो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, आगे जो हमारी भावी पीढ़ी के काम आने वाली हो, हमारे साथ साथ हमारे आने वाले पीढ़ी को सही तरीके से रख पाए।
1: जी सत्येंद्र भैया, एक तो ये है फसल चक्र वाली बात तो है ही, इसके अलावा एक मुख्य बात है जो हमारे भैया बहन खेती से अधिक पैदावार के लिए अंधाधुंध उर्वरक है, रसायन है, इनको प्रयोग कर रहे हैं, तो इनको कितना प्रयोग सार्थक है भैया?

0: नहीं, इनका देखिए लिमिटेड में, पहले हम क्या करते हैं कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का, जब देखा जाए कि स्टेज गले से ऊपर हो गई है, अब रासायनिक उर्वरक के बगैर ये फसल होगी नहीं, बहुत लेस मात्र का प्रयोग करके हम उस फसल को बचाए। ऐसा नहीं है कि एकदम से हम जैविकता आ जाए, मतलब धीरे धीरे करके, जैसे कि आपने सुना होगा कि ब्लड कैंसर में भी जब हम ब्लड चेंज करते हैं तो धीरे धीरे पहले पुराना निकाला जाता है, नया चढ़ाया जाता है। इस तरीके से अगर हम कृषि में धीरे धीरे करके अगर हम जैविक की तरफ को बढ़ेंगे तो आने वाले समय में हम खेती को पूरी तरीके से हम जैविक कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। शुरू में भले ही थोड़ा पैदावार प्रभावित होगी लेकिन आने वाले समय में वो पर्याप्त हो जाएगी।
1: तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है कैंसर वाली बात की, जैसे ब्लड कैंसर में खून धीरे धीरे चेंज कर हो जाता है, वैसे ही हमारे जो रासायनिक उर्वरक हैं इनसे दूर आने हैं और जैविकता की ओर मुख मोड़ने हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है सत्येंद्र भैया जी आज आपने, और हमारे भैया बहन आज आपको जो सुन रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: हम तो यही कहना चाहेंगे जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी भूमि है जिसको हम माता भी कहते हैं, इन संसाधनों का हमें सही तरीके से बैलेंस बना के प्रयोग करना चाहिए। प्रकृति की फिक्र करनी है हमें, बैलेंस बनाना है व्यक्ति और प्रकृति में। अगर हम व्यक्ति और प्रकृति में बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आने वाले समय में काफी नुकसान होने की संभावना है।
1: जी सत्येंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
2: भाई बहनों, अभी आपने श्री सत्येंद्र सिंह, जिला अमरोहा, ग्राम रायपुर सोमाली, ब्लॉक गजरोला से हमारी बहन ममता ने बातचीत करी। साथियों, हमें उम्मीद है आपको जो बातचीत पसंद आई हुई। साथियों, अब हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ावें, उससे पहले हमारे कार्यक्रम में कुछ बदलाव, जैसे कि आपको पता ही हुई कि पिछले माह से करे गए हैं, तो हम एक बार फिर आज आपको बता देते हैं कि क्या क्या बदलाव करे गए हैं। तो ममता बहन, हमारे किसान साथियों को बता दें आप।
3: तो महीने के पहले बुधवार को सुन सकेंगे हमारे भैया बहन सफल कृषक से की गई बातचीत, और दूसरे बुधवार में सुनेंगे सफल महिला कृषक से जो बातचीत करी गई उसको, और मासिक कृषि गोष्ठी तीसरे बुधवार को महीना के सुनेंगे, और सफल कृषि स्टार्टअप चौथे बुधवार में सुनवा हो जाएगा भैया बहन के लिए। और बात करें अगर पाँचवों बुधवार पड़ जाते हैं महीना में, तो उसमें सफल कृषक से भेंट करी गई सुन सकेंगे।
2: बिल्कुल साथियों, इसी तरह से गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को, पहले बृहस्पतिवार को क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में, और तीसरे गुरुवार को भी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में, और अगर पांचवों गुरुवार पड़ता है तो भी उस दिन भी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव में, जो कि ग्राम पंचायत संकलन पर विशेष कार्यक्रम सुनवा हो जाता है। इसके अलावा दूसरे और चौथे गुरुवार को कृषि पत्र का खेत खलिहान आप तक, जैसे कि इन दोनों पहुँचाओ जा रहे हो और आगे भी साथियों इसी तरह से पहुँचाओ जाए।
3: तो इसी तरह से शुक्रवार की बात करें महीना के, पहले शुक्रवार को लोक मंजरी कार्यक्रम सुन सकेंगे, और दूसरे शुक्रवार में भी लोक मंजरी, और तीसरे शुक्रवार में भी लोक मंजरी फरमाइशी लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे, और दूसरे शुक्रवार की बात करें तो कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान पा सकेंगे भैया बहन, और तीसरे शुक्रवार में भी कृषि संघ का समाधान, समस्या व उनसे जुड़े समाधान हमारे भैया बहन पा सकेंगे। तो भैया बहनों, ये तो ही जो हमारे कार्यक्रम में बदलाव करेगा उसकी जानकारी, लेकिन इसकी समस्या हेतु समाधान पाने के लिए भैया फ़ोन नंबर भी तो बता दो।
2: तो साथियों, लिखें आप हमारा फ़ोन नंबर 0595 कोड है और 2324326 मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपनी जो समस्या है कृषि व पशुपालन से संबंधित वो आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ तो लोक मंजरी कार्यक्रम भी आप इसी के माध्यम से हमसे सुन सकते हैं। साथियों, इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप या फिर SMS के माध्यम से हमसे मिलना चाह रहे हैं तो आप 9410087876 यानी 9487786 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।
3: इसके अलावा ईमेल पर पत्र मिला AIR@gmail.com पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया, और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आकाशवाणी रामपुर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और पत्राचार हेतु पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर उत्तर प्रदेश, पिन 244901।
2: साथियों देखो, हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमें पत्रों के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से आप हमसे ज़रूर जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया हमें बता में हमें आप कोई सुझाव भी भेजना चाहें तो भी आप हमें बताएं साथियों। जब आप हमें अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारे कार्यक्रम में कोई कमी रही हो या फिर हमारा कार्यक्रम अच्छा रहो। तो साथियों आप हमें पत्र जरूर भेजें या फिर फोन जरूर करें।
3: बिल्कुल हेमपाल भैया, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कृषि संकेत की। तो आज कृषि संकेत में हम बात कर रहे हैं कृषि रसायनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करें जिससे कि खेती की उर्वरा क्षमता जो है वह बरकरार रहे और उससे अधिक आय की प्राप्ति होए।
2: बिल्कुल ममता बहन, देखो आजकल जो खेती है वो दवाओं पर आधारित ही गई है, लेकिन मजबूरी भी है कि दवाएं ना लगाएंगे तो हम फसल से कोई भी फसल हो उससे अच्छा उत्पादन ना ले पाएंगे। लेकिन अब हमारे किसान साथी धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी साथियों जो रसायन है उनको प्रयोग फिर भी करने पड़ रहे हो तो उनके प्रयोग में कोई सावधानी बरतें। जैसे सबसे पहले तो जरूरी है आप उसकी एक्सपायरी डेट देख लें, और इसके अलावा साथियों आप जब उसको प्रयोग खेत में करें तो पूरी तरह से मुंह पर कुछ बांध लें या कोई डाटू बांध लें, कंगोचा वगैरह बांध लें या फिर मास्क लगा लें और हाथन से कोई भी दवा को ना घोलें।
3: और इसके बाद हिमपाल भैया सबसे मुख्य बात वह सही मात्रा की, जो हमारे कृषि विशेषज्ञ या पैकेट पर लिखे माप हैं प्रति एकड़ या प्रति एकड़ उसी लीटर के हिसाब से उसको पालन करें, उसी हिसाब से छिड़काव करें, क्योंकि अधिक छिड़काव भी हमारी फसल को नुकसान देते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं।
2: बिल्कुल बहन, देखो हम कार्यक्रम के शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं कि खेत बचाओ भूमि बचाओ के अंतर्गत भी इसी बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी रसायन को प्रयोग अंधाधुंध न करें, चाहे जो कीटनाशक हैं फफूंदनाशक हैं उनको या फिर कोई उर्वरक हैं उनको। और इसके अलावा साथी देखो एक बात को आप ध्यान और रखें कि आप जो भी रसायन को आप आपस में मिलावें तो उनको थोड़ा सा पहले मिला कर देख लें, अगर वो कोई रिएक्शन कर रहे हो कोई फट रहे हो तो आप उसे बिल्कुल ना मिलावें, क्योंकि अगर आपने विपरीत कोई रसायन मिला दो तो उससे लाभ की जगह फसल को नुकसान ही जाए, अगर नुकसान ना हो तो उससे लाभ भी ना मिले तो हमारा पैसा बर्बाद ही जाए। तो इसलिए साथियों इस बात को भी आप ध्यान रखें।
3: और एक बात और है भैया कि दवा को जो घोल है उसे हमेशा डंडा या लकड़ी से हिलावें, हाथ से कतई ना चलावें, क्योंकि हाथ से इस्तेमाल करने से भैया उसी हाथ से हम अपने नाक मुँह हाथ सब छूते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरीके का जो रसायन होते हैं वे जहर होते हैं तो वो स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचा होते हैं।
2: इसके अलावा किसान साथियों हम आपको एक बात और जरूरी बता दें इसी से संबंधित कि हमारे बहुत से किसान साथी क्या कर रहे हैं इस समय कि घर से दवाइयों को घोल कर ले जाते हैं और क्या होता है कभी कभी और कभी कभी का आए दिन अखबारों में मिल रही है सुनने के लिए कि घर से उन्होंने दवाई घोल बनाओ किसी बच्चा वगैरह ने उसको थोड़ा बहुत चाट लो तो उससे दुर्घटना ही रही। तो साथियों आप घर से बिल्कुल भी कोई भी दवा को घोल कर या बना कर तैयार करके ना ले जाएं, उन्हें खेत पर ही बना कर तैयार करके ले जाएं और वहीं पर उसको जो डिब्बा हो और उनके जो भी बर्तन हैं उसे वहीं पर निस्तारण कर दें।
3: तो इसलिए भैया बहनों रसायनों को कभी भी खाने पीने की चीज़ें और चारे या बीज के साथ ना रखें और ना ही एक साथ लाद कर इन्हें ले जाएं।
2: तो साथियों इस तरह से आप रसायनों के प्रयोग में सावधानी रखें। अब साथियों हमारो कार्यक्रम बिल्कुल समय ना कह रहे हो कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ावें, तो ममता बहन अपने भैया बहन से ले लो इजाजत।
3: हाँ भैया बहनों अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी, अब अपनी बहन ममता
2: और हेमपाल भैया को दो अनुमति।
3: राम राम, राम, राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता। विषय है आज की युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी, संस्कृति का संरक्षण। प्रस्तुति कायनात मिर्जा की है।
1: संस्कृति किसी भी देश की पहचान होती है। हमारी भाषा, पहनावा, रीति रिवाज, त्योहार, कला, संगीत और संस्कार मिलकर हमारी संस्कृति बनाते हैं। भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन और महान मानी जाती है। आज के आधुनिक समय में नई पीढ़ी पर अपनी संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। संस्कृति हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। ये हमें अच्छे संस्कार, सम्मान, प्रेम और एकता का पाठ पढ़ाती है। संस्कृति के कारण ही हम अपनी पहचान बना पाते हैं। यदि कोई समाज अपनी संस्कृति

जाए तो उसकी पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। आजकल की पीढ़ी की क्या भूमिका होनी चाहिए? आज के युवा देश का भविष्य है। यदि युवा अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी उसे अपनाएंगी। युवाओं को चाहिए कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, भारतीय त्योहारों को खुशी से मनाएं और अपने बड़ों की परंपराओं को समझें। भारतीय त्योहारों का संरक्षण कैसे करें अब युवा? दिवाली, होली, ईद, रक्षाबंधन और अन्य त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है। आज की पीढ़ी को इन त्योहारों को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि उनके महत्व को समझकर मनाना चाहिए। इससे हमारी परंपराएं जीवित रहेंगी। अपनी भाषा हमारी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। युवाओं को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। महान लेखकों और कवियों की रचनाएं पढ़कर हमें अपने इतिहास को संस्कृति की जानकारी मिलती है। आधुनिक बनना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना गलत है। हमें कई तकनीक और आधुनिक शिक्षा को अपनाते हुए अपनी परंपराओं और संस्कारों को भी योग्य बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची प्रगति है। अब इसमें परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए? परिवार बच्चों को संस्कार सिखाने का पहला स्थान होता है। माता-पिता और दादा-दादी से हमें अपनी संस्कृति के बारे में सीखने को मिलता है। आज की पीढ़ी को अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए और उनसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए। इसमें विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए? विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि ये बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का भी केंद्र है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा, प्रार्थना, राष्ट्रगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। शिक्षकों को बच्चों को भारतीय इतिहास, महापुरुषों और परंपराओं के बारे में बताना चाहिए। इसमें मीडिया और तकनीक का क्या प्रभाव पड़ रहा है? आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का युवाओं पर बहुत प्रभाव है। ये अच्छी और बुरी दोनों तरह से काम कर सकता है। यदि तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो हम अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। जैसे भारतीय संगीत, योग, नृत्य और त्योहारों की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से फैल सकती है। युवाओं को सोच समझकर तकनीक का उपयोग करना चाहिए। आधुनिक बनना समय की आवश्यकता है। नई शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को अपनाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी बनाए रखना चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें आधुनिक सोच भी हो और भारतीय संस्कार भी। यही सच्ची प्रगति है। संस्कृति संरक्षण में युवाओं की अब क्या भूमिका होनी चाहिए? युवा देश का भविष्य होते हैं। यदि युवा अपनी संस्कृति का सम्मान करेंगे तभी देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी। युवाओं की कुछ मुख्य जिम्मेदारियां ऐसी होनी चाहिए, जैसे अपनी भाषा का सम्मान करें। कैसे करें? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हमारी पहचान है। युवाओं को अपनी मातृभाषा बोलने और लिखने में गर्व महसूस होना चाहिए। त्योहारों को सही तरीके से मनाना। त्योहार केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक है। युवाओं को त्योहारों का महत्व समझना चाहिए। भारतीय पहनावे और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय कपड़े और परंपराएं हमारी संस्कृति की पहचान है। विशेष अवसरों पर भारतीय पहनावा अपनाना चाहिए। बड़ों का आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में बड़ों का सम्मान सबसे बड़ा संस्कार

0: प्रेम, भाईचारा, सहनशीलता और एकता का संदेश देती है। हमारी संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की भावना सिखाती है, जिसका अर्थ है पूरी दुनिया एक परिवार है। यदि कोई समाज अपनी संस्कृति को भूल जाता है तो उसकी पहचान धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। इसलिए संस्कृति का संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। आज का युवा आधुनिक जीवन शैली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। फैशन, सोशल मीडिया और विदेशी संस्कृति का प्रभाव युवाओं पर अधिक दिखाई देता है। कई बार युवा अपनी भाषा, परंपराओं और संस्कारों को पुराना समझने लगते हैं। इसके कारण धीरे धीरे हमारी सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में हमारी परंपराएं समाप्त हो सकती हैं। इसलिए आज की पीढ़ी को समझना होगा कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना गलत है। संस्कृति संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अपनी मातृभाषा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। भारतीय त्योहारों को उत्साह से मनाना चाहिए। बच्चों को भारतीय इतिहास और संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए। योग और ध्यान को अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भारतीय संस्कृति से जुड़े अच्छे बातें साझा करते रहना चाहिए। बड़ों का सम्मान और अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। आज की पीढ़ी यदि अपनी संस्कृति को अपनाएगी तो आने वाली पीढ़ियां भी अपनी पहचान नहीं भूलेगी। हमें आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं और संस्कारों को भी महत्व देना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में संस्कृति का संरक्षण होगा। आजकल की युवा ही नहीं, उम्र दराज लोग भी अपनी सभ्यता संस्कृति भूल रहे हैं। समाज और हम आप जैसा आचरण करेंगे वैसा ही हमारे युवाओं का भी चरित्र होगा। इंटरनेट के जमाने में कुछ भी युवाओं से छुपा नहीं सकते। आज के युवा हमारे जैसे लोगों से तुरंत बहुत आगे निकलना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आज के समय में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पालन करना ही किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। ऐसे में हम सभी को ये समझना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता को सहजता के साथ पिरोकर रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत होती है वही राष्ट्र हमेशा महान बना रहता है। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत वार्ता। विषय था आज की युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी, संस्कृति का संरक्षण। प्रस्तुति कायनाथ मिर्जा की थी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:10 होने को हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी सूचनाएं।

श्रोता ध्यान दें, आज व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल स्थगित कर दिया गया है। आज शाम 8 बजे श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर की सफलतापूर्ण होने पर इस उपलक्ष्य में हमारे दिल्ली केंद्र से एक विशेष कार्यक्रम भोर से पहले भोर के बाद। और अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।

अब से कुछ देर यानी 7:31 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गीत व भजन, कलाकार रीता शर्मा और उसामा खान के स्वरों में।

आपको एक बार फिर बता दें, आज शाम 8 बजे आप सुन सकेंगे आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम सबरस के अंतर्गत आप सुन सकेंगे लोकगीत कलाकार रमेश रावत के स्वरों में। आज रात्रि 10 बजे आप सभी श्रोताओं का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर आप सुनेंगे। 10 से 11 बजे के मध्य आप आकाशवाणी रामपुर में कॉल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपना पसंदीदा गीत। हमसे जुड़ने के लिए आपको डायल करना होगा 0595-2324-326। नंबर एक बार फिर सुन लें, 0595-2324-326। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ कार्यक्रमों की।

0: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
1: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
2: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी, रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
1: जल है तो कल है,
2: यही चिंतन पल पल है।
3: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: और अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल यानी 9 जून के कुछ कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर श्रोता सुन सकेंगे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम आज का चिंतन के अंतर्गत आप सुनेंगे संत बीनाराम के विचार 6:30 पर। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश आप तक पहुंचाएंगे 6:35 पर। श्री रामचरित मानस गान का समय होगा प्रातः 6:45। प्रातः 7 आप सुन सकेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कल प्रातः 7:31 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे। गौरव भारत देश के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाएंगे प्रातः 9:25। श्रोता 9:30 पर कल सुन सकेंगे उर्दू प्रोग्राम जिसमें आप सुनेंगे अफसाना यतीमों का संगम जनाब मोहम्मद यामीन बरकती को। नौ बजकर 50 मिनट पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत ख्याल गायन कलाकार होंगे अवधेश कुमार गोस्वामी राग होगा भैरवी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT श्रोता सुन सकेंगे कल प्रातः 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।
1: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। संध्या के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई

0: आशंकाओं का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
4: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर

0: प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
3: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
3: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
1: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,

0: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
2: खाता हुआ एक्टिव।
0: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर या
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम में हम सुनेंगे कलाकार रीता शर्मा और उसामा खान के स्वरों में कुछ गीत व भजन। आइए सुनते हैं कलाकार रीता शर्मा के स्वरों में ये गीत।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कलाकार रीता शर्मा के सुरों में कुछ गीत, और आइए अब हम सुनते हैं उसामा खान के सुरों में कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत कलाकार रीता शर्मा और उसामा खान को। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बजने को हैं। प्रस्तुत है आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष वार्तालाप आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी दिल्ली है। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूं।
3: नमस्कार। यहां आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूं, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है, शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना

0: देश के अलग देशों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख रहे हैं तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है। इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचुपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र है और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर्स क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लू तो सुशील दोषी, मेलिल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसे होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे

0: की युवा पीढ़ी पर बड़ा मनोरंजन का साधन। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलियान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
0: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने एफएम रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपके आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंडोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
0: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म
1: जी।
0: तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजी ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूं आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहां तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था, उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने एफएम चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है, तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूँ और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में जो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम की है वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
2: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा। और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज वो स्टूडियो है
2: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए थे
1: जी।
2: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें, वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये

0: कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भरत सिंह के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो, तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती है उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनो।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पर डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों को, पंत जी, सबने, महादेवी
2: वर्मा, सबने, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबाइकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया, वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी

0: के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका का कार्यक्रम करता रहा। मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था। उस समय बड़ा मुश्किल था, आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैट्रिक रिकॉर्ड हो जाता था, वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए, वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को, किस रूप में देखते हैं आप आज?
1: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना
0: जी कीजिए,
1: क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था, जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे, और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया, जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम है जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर, सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर, तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए, अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है, और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेते बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, ये आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रहे हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
0: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर

0: हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने से पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंजन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी है ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है,
1: बिल्कुल,
4: और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन रंडल साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हूँ इस बात के जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद रेडियो वाला ही है और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ।
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है
5: सर। ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैं तालमेल किया जाए।
4: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
6: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
6: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
4: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कर रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब, कि आप वाजपेयी जी के मीडिया

इनके कल्चर में उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कहा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो

0: कई बार मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति और खासकर समाचारों के प्रति,
1: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
0: बिल्कुल।
1: और जितने लोग भी कार से सफर,
0: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है
1: वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
0: बिल्कुल।
2: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
0: अच्छा।
2: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
0: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
3: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
4: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से। आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
0: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
4: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पे अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
5: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
6: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
7: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी।
8: संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इजराइल और ईरान

0: पाकिस्तान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया कि लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा

0: नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आकाशवाणी रामपुर से आप सुन रहे हैं कलाकार रमेश रावत के सुरों में कुछ लोकगीत। आपको बता दें कि अभी रात्रि 10 बजे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम, जो कि जिसमें फोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ते हैं, हेलो रामपुर, इस कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीतों को शामिल करने के लिए आपको फोन उठाना है और नंबर डायल करना है 0595-232-4326। नंबर एक बार फिर सुन ले, 0595-232-4326। हमें आपकी कॉल का रहेगा इंतजार। आइए सुनते हैं रमेश रावत के स्वरों में उनका अगला गीत।

0: भेदे ना दे।
1: अरे कहा कंस को डर तू दिखाई,
0: कंस में का करेगा?
1: अरे सखी तू कंस के डरे का?

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है आप सभी श्रोताओं का मन पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो रामपुर। कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए अभी कॉल करें 0595-2324-326 पर। हमें आपकी कॉल का रहेगा इंतजार।

0: कार्यक्रम हेलो रामपुर सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हेलो रामपुर में। भाई बहुत खुशनुमा समय है, आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो एक उत्सव का माहौल है। पूरे भारत में जितने भी लोग आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं, आप सभी श्रोता, ऐसे तमाम लोग और जो चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा रिश्ता आपस में जुड़ा रहे, हम इसी प्रकार से आपस में मिलते रहें, और आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और देखते हैं कि हमारे पहले कॉलर जो हमसे जुड़ चुके हैं कौन है। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर जी। सर नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर मैं पक्का से बोले पम्मी।
0: पक्के बाग से आप पम्मी बात कर रहे हैं जी?
1: मैं आपके बहुत प्रोग्राम सुनता हूँ सुबह शाम तक।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा। तो यानी कि आप हमारे जो हैं वो बहुत पुराने श्रोता लग रहे हैं मुझे।
1: जी जी सर, मुझे कम से कम 30 साल हो सुनते गाने आपके प्रोग्राम।
0: क्या बात है, तो आप ही सुनते हैं, परिवार के और लोग भी हैं जो सुनते हैं आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम?
1: सुनते हैं भाई, ये सुनते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बीवी भी सुनती हैं।
0: चलिए बड़ा अच्छा लगा। और
1: मेरी बात बात हो रही है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप अम्मी जी?
1: हम सर हम पेंट का काम भी करते हैं, मिस्त्री काम भी करते हैं।
0: बहुत बढ़िया। और आपके बच्चे क्या करते हैं?
1: आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? तीनों
0: बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी तीन बच्चे हैं आपके। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। और आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: वो शादी मुझे लोगों का मंगा दे रहे सैया दीवाने, शराबी फिल्म गाए।
0: अच्छा, तो आप किन किन लोगों के लिए इस गीत को चाहते हैं, कि किन किन को आप डेडिकेट करना चाहते हैं इस गीत को? कुछ
1: ये गांधी शादी, हाजी गप्पार जी वहाँ पुराने साहब हैं, और साहब परवीन ककड़ुआ से, और नब्बुआ पान वाले पक्का से, ब्राह्मण हारी वाले, जाइट भाई चा वाले, फारूक भाई डाल मिल पे से, हमारे जिया नरेश हनुमान मूर्ति भाई, भगवती बहन।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आपके लिए और आपके सभी मित्रों के लिए फिल्म शराबी से ये
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो रामपुर में। भाई, एक जश्न का माहौल है। आकाशवाणी परिवार के जितने भी सदस्य जो जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से ही करसे से, बहुत खुश हैं इस उपलब्धि पे कि 90 वर्ष हमने साथ में पूरे किए, और सब आकांक्षा रखते हैं, सबकी अभिलाषा है कि आगे भी इसी प्रकार से हमारा साथ एक दूसरे के साथ बना रहे। आइए देखते हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ गए हैं। हेलो रामपुर।
1: हेलो रामपुर, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ।
0: सतीश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कानपुर से।
0: कानपुर से, कैसे हैं सतीश जी?
1: मैं बढ़िया हूँ। आकाशवाणी ने आज के दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो आकाशवाणी ने पूरे 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बहुत खुशी है, और ये जान के हमें खुशी हो रही है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को। और बताएं, कब से जुड़े हैं आप आकाशवाणी से?
1: आकाशवाणी में जुड़ा हूँ 2008
0: से जुड़े हैं। काफी समय हो गया। कौन कौन से कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं आप हमारे सतीश जी?
1: देखो, अब तो मोबाइल पे आ गया, पहले 2008 से जुड़ा था, तब तो जो वालो वालो फरमाश वाला
0: जी,
1: पहले तो लाइव चल रहा था, पहले रिपोर्टिंग वाला चल रहा था फोन
0: जी,
1: हम आपको
0: जी जी जी जी
1: हाँ, वाड़ी चल रहा था, किसान वाड़ी चल रहा था
0: जी,
1: और काफी जो प्रचार वगैरह आते थे उनके, तो बहुत चलते थे, वो पे चलते थे काफी जो यार आते
0: जी,
1: तो कुल बदलाव हो गया सब से आकाशवाणी से
0: जी, समय के साथ जो है कुछ कुछ बदलाव हुए हैं।
1: अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं था पहले, लेकिन सुनते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। पहले चार रेडियो चलते थे, अब तो रेडियो आदमी ने मोबाइल दौर आ गया, रेडियो हो गया।
0: तकनीकी का दौर है जी, बिल्कुल तकनीकी का दौर है, और इसमें और आसानी से सब तक आकाशवाणी पहुंच पाया है हमारे न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से।
1: बंदे जुड़े होंगे जो सुनने वाले, तो मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर लिए तो उन्हें सुनने
0: जी,
1: और आकाशवाणी ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत अच्छा लगा, मनोरंजन सीखा, और आकाशवाणी फेक न्यूज कैसी फेक न्यूज नहीं है, आकाशवाणी क्लियर न्यूज देता है
0: जी जी जी,
1: और उसके बाद आपका जो सर जी, पहले रेडियो साफ पकड़ता था मेरे रामपुर जी, रामपुर के अंदर
0: जी,
1: लेकिन रात को तो पकड़ता ही नहीं है रामपुर, पता ना क्या रेंज आपने कम कर दी इनके आगन से, रेंज कम हो गई है बहुत, तो बरेली भी पकड़ती थी, बरेली भी नहीं पकड़ती, और रामपुर भी नहीं पकड़ती, रामपुर दिन में पकड़ता है
0: 12 बजे
1: का, रात को नहीं पकड़ता रामपुर।
0: आप इंटरनेट के माध्यम से हमारे गूगल पे भी AIR रामपुर अगर आप सर्च करते हैं और उससे भी सुन सकते हैं।
1: मोबाइल पे रेडियो सुनने में वो कुछ ही आनंद लगता है, मोबाइल पे सुन लो,
0: इसमें कोई दोराय नहीं, इसमें कोई दोराय नहीं है, जो मजा रेडियो पे सुनने से है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा बचपन हमें याद है, आज भी मैं उस वक्त को याद करता हूँ कि सुबह सुबह हमारे माता पिता जब रेडियो ऑन करते थे और जो आवाज हमारे कानों में पड़ती थी, आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, और इतना खूबसूरत मुझे लगता था, दिन की शुरुआत होती थी रामचरितमानस गान और वंदना के जो श्लोक होते थे, वो सभी जो थे वो गूंजते रहते थे पूरे दिन। तो आज
1: रेडियो के सर जी, रेडियो को जैसा है, रेडियो ऐसा है, रेडियो की गाना में ग्वालियर क्वालिटी, जैसे आप लोग बात करते हैं एकदम क्लियर सुनाई देती थी, बहुत
0: जी जी जी जी जी जी,
1: मोबाइल पे सुन लो, छोटा स्पीकर वो पिनपिनाता रहता है, अच्छा
0: बिल्कुल अच्छा। आज आज सतीश जी क्या क्या सुनना चाहेंगे?
1: हाँ सर जी, मुझे गाना प्ले कर दीजिए, और आकाशवाणी 90 वर्ष की ढेर शुभकामना देना है
0: आपको भी। कौन सा किस फिल्म से गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज राधा का संगम का गाना है, इसी उपलक्ष्य में गाना अच्छा सुना है, उसमें गाना दो बोल कह के हम तुम्हारे हैं।

0: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत
1: है। और जो बोल कहते हैं आपसे
0: जी,
1: और आप
0: जी
1: भी कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम चाहेंगे, ईश्वर से कामना करते हैं इसी प्रकार से आपका और हमारे यानी आकाशवाणी का रिश्ता बना रहे और ये बढ़ता रहे।
1: रामपुर आकाशवाणी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो आपके लिए और आपके अपनों के लिए और आकाशवाणी परिवार के लिए आपकी ओर से आइए सुनते हैं गीत फिल्म राधा का संगम से।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम हेलो रामपुर। भाई, किसी भी कार्यक्रम की वास्तविक शक्ति उसके श्रोता होते हैं, और आकाशवाणी के श्रोता इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आइए बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से जो हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो रामपुर। आदाब जी, कौन बात कर रहे हैं
2: जी? मेरा नाम नहीं है मलिक है, मैं सेंटर का।
1: अच्छा, नईम जी कश्मीर से बात कर रहे हैं?
2: बिल्कुल सर।
1: और कैसे हैं नईम जी आप?
2: अल्लाह ताला का फजल करम होने से आपकी दुआ में बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दूर दूर से श्रोता आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हैं, ये बहुत गौरव की बात है हमारे लिए भी। तो नईम जी, क्या करते हैं आप?
2: बिजनेस करता हूँ सर, टाइल मार्बल सीमेंट सीपी और जो पेंट वे दीवारों पे लगाते हैं
1: जी,
2: वही दो चार शॉप है हमारे पास, वही काम करता हूँ सर। और अल्लाह ताला की फजल करम से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा
1: चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा है। हम तो ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपका बिजनेस जो है वो दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। और आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रमों को सुनना पसंद करते हैं
2: जी? ज्यादा टाइम नहीं मिलता है तो फोन इन प्रोग्राम सुनता हूँ,
1: फोन इन कार्यक्रमों को सुनता
2: हूँ। रात के टाइम आते हैं तो
1: जी जी जी जी। नईम जी, आज कौन सा गीत सुनने की आकांक्षा रखते हैं?
2: लता मंगेशकर की आवाज में नगमे की फिल्म का नाम है आंखें मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
1: अच्छा, फिल्म आंखें से आप सुनना चाहते हैं गीत को। ठीक है, तो आपको और आपके समस्त परिवार जनों को, क्योंकि बहुत खूबसूरत समय चल रहा है, जैसा कि हम लोग शुरुआत से कार्यक्रम की शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं, आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे किए हैं, हर जगह इसी बात की चर्चा है।
2: जी, आकाशवाणी ने हर वक्त काम किया
1: जी,
2: रेडियो के जरिए जो रेडियो की प्रोग्राम आती है, रेडियो की जो काम किया, बहुत हर घर की आवाज थी रेडियो
1: जी जी जी।
2: पहले जमाने में जो सोशल मीडिया नहीं होते तब भी रेडियो ने काम किया।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। सोशल मीडिया आज के दौर पे है, लेकिन उस वक्त में जब सोशल मीडिया कहीं मतलब था ही नहीं, उस समय रेडियो जो था वो घर घर में था, और आकाशवाणी जो था वो हर व्यक्ति तक जो था वो पहुंचता था।
2: सबसे
1: ज्यादा लोग
2: पसंद
1: जी
2: जी, एक महीने से ट्राई करो कि आकाशवाणी रामपुर पे मेरी कॉल लग जाएगी, एक महीने से ये नंबर बिजी आ रहा है, इसका मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा
1: जी बिल्कुल आकाशवाणी को मतलब ऊपर वाले का बहुत करम है, मैं कहूंगा कि बहुत प्यार करते हैं आकाशवाणी रामपुर से लोग, और लगातार जो है श्रोता जुड़ना चाहते हैं हमसे, और बहुत खुशी होती है इस बात से। ठीक है, तो नईम जी, आपकी फरमाइश फिल्म आंखें से लता मंगेशकर के सुरों में आपको सुनाते हैं गीत।
2: थैंक यू सर, गुड नाइट।
1: गुड नाइट सर।

0: मत कभी कभी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रामपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रामपुर। हमसे हमारे अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, ये बात करते हैं कौन है। हेलो रामपुर।
2: हेलो रामपुर, सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिर अफ्तार खान बोल रहा हूँ, और आकाशवाणी के 90 साल आज पूरे हुए हैं, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद
1: आपको भी
2: और तमाम श्रोताओं को भी।
1: शुक्रिया गफ्फार साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वो इसीलिए भी क्योंकि आप बहुत पुराने लिसनर हैं हमारे, बहुत वक्त से आप हमसे जुड़े हैं। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम है आकाशवाणी रामपुर से जो जाता है आप सुनते ना हो या आप जिसका हिस्सा ना बनते हो। और कैसे हैं आप ये बताएं।
2: प्रोग्राम सुनता
1: हूं जी, जी।
2: और आज रेलवे में भी बताया था, और बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई, बहुत पुराने पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ नए दोस्तों से मुलाकात हुई।
1: जी जी जी,
2: बड़ा एहसान है दोस्तों का मेरे
1: ऊपर आकाशवाणी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आकाशवाणी रामपुर आज एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं देख रहा था आपको, मैंने देखा था आप भी उसमें शिरकत आपने करी, और परिवार के भी आपके लोग उसमें शिरकत कर रहे थे। कैसा लगा आज आपको उसमें शामिल होके?
2: बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया।
1: चलिए बहुत अच्छा,
2: बहुत इज्जत मिली।
1: जी जी जी भाई, बड़ों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद छोटों को मिलता रहता है, तो एक ना एक ऊर्जा मिलती है ना। इसी प्रकार से आप जैसे श्रोताओं का हमसे जुड़ाव जो है हमारे लिए किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वरदान से कम नहीं है। गफ्फार साहब, आज क्या सुनना चाहेंगे?
2: जब दोस्तों को याद किया।
1: जी जी,
2: रफी साहब की आवाज है और गाने के बोल है, एहसान तेरे दिल पे तुम्हारा है, दोस्तों के दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है, दोस्तों को सुनने वालों के नाम है।
1: जी बिल्कुल है।
2: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, नवाब हुसैन भाई, इकराम अली प्रेमी, मसूद हुसैन, शबनम अब्बासी, शानूर अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, गुलफशा इदरीसी, अनीसुर रहमान, आकाश रस्तोगी, पम्मी पट्टर बाग से
1: जी,
2: और नासिर भाई रिक्शा वाले, यही सब सुनना चाहेंगे।
1: क्या बात है, बहुत खूब। और मुझे पूरी मुझे पूरा विश्वास है कि आज सुबह जब आप वॉकथॉन में आए होंगे तो इनमें से बहुत सारे लोगों से आप रूबरू हुए होंगे, आपकी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि बहुत से हमारे पुराने
2: लिस्नर्स सुन रहा हूं, बहुत दोस्तों से मुलाकात हुई।
1: चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: इज्जत मिली।
1: जी जी जी, चलिए तो आपके लिए और आपके सभी दोस्तों के लिए फिल्म गबन से मोहम्मद रफी के सुरमई गीत।
2: शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो रामपुर।
1: हाँ हेलो रामपुर सर, सबसे पहले आपको मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नाम सोता मोहम्मद इसरत, आप साथ करो। सर कैसे हो आप?
0: मैं एकदम ठीक हूँ इसरत, में आप बताइए आप कैसे हैं?
1: सर बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो जाती है और भी अच्छा हो जाते हैं। सर आप प्रोग्राम काफी अच्छा पेश कर रहे हो, सभी को पसंद आ रहा है सर आज का प्रोग्राम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसरत, में आप ये बताएं घर पे सब लोग कैसे हैं?
1: सर सब लोग अच्छे हैं, आपको याद करते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आपके केंद्र के प्रोग्राम सर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी, घर वालों को भी।
0: चलिए बहुत अच्छा, तो आज का ये जो हेलो रामपुर है सिर्फ आप ही सुन रहे हैं या परिवार के और लोग भी आपके साथ जो सुन रहे हैं?
1: सर सारे लोग सुन रहे हैं।
0: अरे वाह बहुत अच्छा लगा ये जान के। और
1: जितने मेरे यार दोस्त है सर वो भी सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत खूब बहुत खूब, क्या करते हैं सरतनी आप?
1: सर मैं घर की जिम्मेदारी संभालता हूँ, मतलब चार भाई हैं, तीन भाई रहते हैं, घर पे रहता हूँ।
0: अच्छा तो कुछ काम करते हैं आप या पढ़ाई कर रहे हैं?
1: सर पढ़ाई मैंने छोड़ रखी है, बाकी जो अपनी खेती किसानी है और 8-9 जानवर उन्हें पाल लेता हूँ और साथ में केंद्र के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं सतनिया?
1: सर आज के हेलो रामपुर में मूवी का नाम है साथी,
0: फिल्म साथी से कौन सा गीत?
1: वही आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। सर आज के शो में यार सॉन्ग प्ले कर देने को सुनने वाले हैं
0: जी।
1: और सबसे पहले ये हैं ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई और स्वार्थ से विजय राठौर, साथ में आप और हम
0: जी,
1: ये सुनना चाहते हैं सर।
0: चलिए बहुत अच्छा, तो इस जी आपके लिए और आपके साथियों के लिए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत अनुराधा पौडवाल की सरों में फिल्म साथी से।
1: थैंक यू, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी।

0: श्रोता है तो स्वर में जान है, श्रोता है तो कार्यक्रम की शान है। आपके स्नेह और विश्वास से ही आकाशवाणी की अलग पहचान है। बिल्कुल, श्रोता है तो सब कुछ है। और आकाशवाणी रामपुर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने इतना प्रेम, इतना स्नेह और सहभागिता दी है और आकाशवाणी को एक परिवार का रूप दिया है। ऐसे ही एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो रामपुर।
1: हाँ जी, हेलो रामपुर,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: जिला अमरोहा नई जनाब।
0: बहारुल हसन सिद्दीकी जी, कैसे हैं आप?
1: बस भाई साहब बहुत अच्छे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप

0: क्विज है जिसमें आपने बूट ज्वाइन करिए, आपको सुनना है तो अच्छा लग रहा है।
1: चलिए बहुत अच्छा। और क्या करते हैं बहारुल जी आप?
0: वो अपने चांदी के वर्क का काम है, उस घर पर रहना ज्यादातर होता है तो उसी काम घर पर रहकर काम करना होता है।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके बहारुल जी?
0: देखिए मैं सब लोग हैं, भाई हैं चार और मेरे सभी फैमिली हैं।
1: अच्छा, पूरा परिवार है तो सभी लोग सुनते हैं?
0: हाँ बिल्कुल सुनते हैं सर, लोग भी लगाते हैं, लोग भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं।
1: किस कार्यक्रम को सुनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बहारुल जी?
0: देखिए जहाँ तक पसंद का सवाल आपने बताया, देखिए फरमाइश तो होते ही होते हैं
1: जी,
0: लेकिन जो भेदभाव जो होती है पेश की जाती है युवाणी में
1: जी
0: और पुराण में और नारी जगत पुराण में जो होती है मैं
1: जी
0: वो सभी पुराण सुने जाते हैं। वो पुराण में आप लाओ पाओ
1: जी,
0: सभी पुराण अच्छे होते हैं आकाशवाणी के, और जो परिवर्तन जगह है वो भी पुराण अच्छे लग रहे हैं।
1: तो यानी कि लगभग लगभग सभी प्रोग्राम जिनसे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है वो सभी आप सुनना पसंद करते हैं?
0: सीखने को मिलता है और आप लोगों को बोलने का अंदाज है, हम भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत बोलने।
1: नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए सीखना तो कहते हैं कि किसी ने बखूबी इस चीज़ को कहा है कि जीवन जो है वो सीखने का नाम है ना। तो जीवन भर सीखते रहें, मुझे लगता है जीवन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं। और आकाशवाणी से तो जैसे आप जैसे श्रोताओं से जब बात होती है तो उनका फीडबैक यही होता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई हम एज एन अनाउंसर मैं आपको बताऊँ, आज भी आकाशवाणी से हमें गर्व का अनुभव होता है कि हम आकाशवाणी परिवार का सदस्य हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी चीजें करते करते सीखते हैं, कभी आप लोगों से सीख जाते हैं, कभी अपने बड़ों से सीखते हैं, साथ वालों से सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताइए बहारुल जी, आज कौन सा गीत सुनने की इच्छा रखते हैं आप?
0: हाँ जहाँ तक पसंद का सवाल है, फिल्म का नाम रहेगा जंगल है, तो गाने के बोल लेंगे कोयलिया गाती है सदा की, अपनी गाने के बोल में और घर के कुछ नाम पे
1: जी।
0: हमने पहले तो चमकीन मोहल्ले से हैं इरफान खान
1: जी
0: और इकराम प्रेमी सागर चमकीन मोहल्ले से ही
1: जी,
0: और भाई घर के लोग हैं ये, जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, प्रति अलीसा सिद्दीकी, इरफान सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिन अंसारी और उसके भाई जवान अतीक तोफिक दानिश सिद्दीकी न्यूज के चैन से, भाई इकराम प्रेमी से नवाबुद्दीन भाई रामपुर से मुकेश कश्यप।
1: चलिए बहुत अच्छा। तो ठीक है बहारुल जी, आपके लिए और आपके सभी साथियों के लिए आइए सुनते हैं फिल्म जंगल लव से अनुराधा पौडवाल के सुरों में ये गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से। हेलो रामपुर। आकाशवाणी और श्रोताओं का रिश्ता आवाज और एहसास का रिश्ता है, जो वक्त के साथ और भी मजबूत हुआ है। देश के हर कोने से जुड़े श्रोताओं ने इस बात को सिद्ध किया है कि अच्छी बात और सच्ची आवाज की कोई सीमा नहीं होती। आप जैसे जागरूक और संवेदनशील श्रोता ही आकाशवाणी की पहचान और सम्मान है। ऐसे ही एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो रामपुर। हेलो रामपुर। हेलो रामपुर
1: जी, आदाब।
0: आदाब जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर ग्राम से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद कामिल जी, कैसे हैं मोहम्मद कामिल?
1: सर काफी अच्छे हैं हम, आप बताइए सर, आप कैसे हो? आप
0: बहुत तो अच्छे
1: हैं सर।
0: कैसा लग रहा है आपको आज का कार्यक्रम?
1: सर आप खूबसूरत आवाज प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, आप काफी अच्छे।
0: तो कामिल साहब, आप आपके अतिरिक्त कौन और लोग हैं परिवार के जो इस कार्यक्रम को सुनना पसंद करते हैं?
1: सर परिवार में मदर फादर प्रोग्राम सुनते हैं
0: आपके। बहुत अच्छा, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर एक मूवी का नाम है इंसाफ,
0: इंसाफ
1: और गाने को ले नजर का मिलाना मोहब्बत है। हाँ, इसी तरह के गाने से बोले फिर ये सॉन्ग सुनवा देना।
0: अच्छा, तो ये गीत आप ही सुनना चाहते हैं या कुछ और लोगों को भी सुनाना चाहते हैं?
1: सर और भी हैं,
0: नाम ले लीजिए।
1: जैसे मोहम्मद ताली परवेज, बंदी मकरम, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, अनीस रहमान, ये सब सुनना चाहेंगे सर।
0: चलिए बहुत अच्छा, तो मोहम्मद कामिल
1: जी
0: आइए सुनते हैं आपके और आपके साथियों की पसंद का ये गीत, जो की है फिल्म इंसाफ से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के स्वरों में।

0: तरंगों पर चलती रही विश्वास की ये कहानी जन जन के मन में बसती है अपनी आकाशवाणी। 90 वर्षों का ये सफर गौरव का सम्मान है, भारत की संस्कृति, भाषा और आत्मा की पहचान है। आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि भारत की आवाज है जो 90 वर्षों से दिलों को जोड़ रही है और आगे भी जोड़ती रहेगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए अपने रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती को कार्यक्रम हेलो रामपुर संपन्न करने की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुरप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और एफएम पर एक साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि।